मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 8 मई सन 2026। इस समय भोर के 5:56 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है इस मंगल ध्वनि के साथ।

आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। भोर के 6 बजने को हैं और पहले हिंदी में समाचार और 6:05 में समाचार अंग्रेजी में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से लिखे जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि कम आवक के बावजूद इस साल गेहूं की खरीद पिछले साल से बेहतर है। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन खबरों के जवाब में दिया है जिनमें दावा किया गया था कि मंडियों में गेहूं की अधिकता जैसी स्थिति है। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब में अब तक लगभग 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए आवश्यक अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलक वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। इस बीच केरल में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस

0: डिप्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरों मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में ही संपन्न होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग ले सकेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। Union Home Minister Amit Shah will arrive in Kolkata today. He is scheduled to attend a meeting with the newly elected BJP MLAs, during which the party's legislative leader will be selected. The new Chief Minister of the State and the Council of Ministers will be sworn in tomorrow on the birth anniversary of Kavi Guru Rabindranath Tagore. Meanwhile, preparations are underway for the swearing-in ceremony at the Brigade Parade Ground in Kolkata. Necessary administrative meetings are being held and tight security arrangements are being put in place for the occasion. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, senior BJP leaders and chief ministers from other states are expected to attend the oath-taking ceremony. President of Vietnam Tho Lam has emphasized that India and Vietnam together have a significant opportunity to play a pivotal role in the global supply chain in today's changing world order. Addressing the India-Vietnam Business Forum in Mumbai, Mr. Lam highlighted that the current global scenario is indeed a challenge, but also an opportunity to elevate cooperation between India and Vietnam to a new level. Speaking on the occasion, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis asserted that entrepreneurs, investors and professionals from the technology and manufacturing sectors in countries like India and Vietnam will shape the future of Asia. India and Vietnam have discussed to deepen cooperation in emerging technologies, innovation, research and startup ecosystems. Minister of State for Science and Technology, Jitendra Singh, held bilateral talks with his Vietnamese counterpart, Dr. Vu Hai Hoa, in New Delhi yesterday. During the discussions, both sides exchanged views on cooperation in artificial intelligence missions, cybersecurity frameworks, innovation ecosystems and technology transfer initiatives. The meeting also reviewed ongoing academic and institutional engagements between the two countries, including collaborations involving research institutions, innovation hubs and technology incubation platforms. Addressing the meeting, Dr. Singh said that the comprehensive strategic partnership between the two countries has gained new momentum over the last decade. He said that around 10 researchers from Vietnam have availed fellowships under the India-ASEAN Research and Training Fellowship Program. Foreign Secretary Vikram Misri took part in a trilateral meeting between India, France and United Arab Emirates in Abu Dhabi yesterday, along with Reem Al Hashmi, Minister of State and Special Envoy for India, and Martin Bryans, Secretary General of the Ministry for Europe and Foreign Affairs of France. The Ministry of External Affairs said the three countries agreed to strengthen their partnership and work on a roadmap with clear timelines. During the visit,

ये भक्ति रचना है आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। हमारे मीटर्स हैं मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स, डीआरएम 909 किलोहर्ट्स, एफएम 100.1 किलो मेगाहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी आप हमारे प्रसारण सुन पा रहे हैं।

0: अभी आप हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आइए सुनते हैं आज का चिंतन। विषय है सकारात्मकता। वाचक स्वर चैतन्य गुरु का।
1: सकारात्मक सोच का मतलब सिर्फ हम बातों में ऊपर के लिए करने का नहीं है, जो हमारे अंतरतम गहराइयों में जो एटीट्यूड है, जो दृष्टिकोण है, उसके अंदर में बदलाव लाना। आज हम जो कुछ भी हैं, चाहे हमारा व्यवहार, चाहे हमारा रिश्ते, जो कुछ भी हमारा साथ में जो कुछ भी चल रहा है, उसका मुख्य रूप से कारण हम खुद स्वयं हैं, क्योंकि हमारा एटीट्यूड। ये एटीट्यूड को अगर हमको समझना है, तो जब हम मौन में रहते हैं, शांत रहते हैं, तब हमारे अंदर में जो विचारों का श्रृंखला चलता है, विचारों का श्रृंखला किस आधार पर है, इनको हम बोल रहे हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। ये किसी दूसरे को बताने के लिए और दूसरे के साथ में व्यवहार करने के लिए बात नहीं कर रहे हैं, ये तो एक आर्टिफिशियल हो गया। नहीं, हमारा जो विचारों का श्रृंखला है, किस तरह चलता है हम अकेले में, उस स्तर पर जहाँ पर विचार शुरू हो रहे हैं और वो विचार किस किस्म के हैं, इनको हमें पहचानना होगा। इस तरह पहचान करके अगर हम हमारा नेगेटिव एटीट्यूड है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं हर कोई शक शक शक नज़र से दूसरे को देखता है और कुछ खो दे रहा हूँ ऐसा सोचता है, और हमेशा दूसरे से पाने के लिए और कुछ भी दूसरे को ना देने का एक व्यवहार बहुत बड़ा नकारात्मक सोच बन गया। और मोर देन 50-60% जो घरेलू महिलाएं हैं और उनके अंदर में डिप्रेशन पाया जा रहा है, इन सब का कारण नकारात्मक सोच है। क्या होगा, कल क्या होगा, अब क्या होगा, इस तरह की हमारा सोच ऐसा नेगेटिव अप्रोच में बढ़ता जा रहा है। अगले पल में क्या होगा, कल क्या होगा, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, अगर हम सोचते हैं तो ऐसा ही होगा, तो ऐसा ना हो ऐसा नहीं, जो चाहिए वो हमको चाहत उस पे प्रति बढ़ाना होगा। उदाहरण के लिए, मैं लेट दफ्तर नहीं पहुंचूं, इसका मतलब डेफिनेटली मैं दफ्तर लेट ही पहुंचूंगा। फिर हमको कैसा बदलना होगा इसको, मैं दफ्तर टाइम पे पहुंच गया, मैं दफ्तर में पहुंच गया और मैं अपना काम कर रहा हूँ, इस तरह सकारात्मक सोच बदले। तो ये मुख्य रूप से ध्यान के माध्यम से संभव है। इस तरह हम अपना मेंटल एटीट्यूड को हमारे प्रति और परिवार के प्रति, समाज के प्रति, जो हमारा देश के राष्ट्र के प्रति ये जो सोच है, हर कोई व्यक्ति दूसरे को दोष देने में लगा हुआ है, सिस्टम ठीक नहीं है।

बच्चे बिगड़ गए, माहौल बिगड़ गया, ये सब दूसरे को दोष ठहराना बहुत आम बात हो गई। लेकिन हकीकत में बिगड़ा हुआ कोई दूसरा नहीं है, हमारे अंदर में ही है। ये कब पहचानत में आएगा? जब मैं अपने आप को देखूंगा और मेरा विचारधारा को। इसके लिए मौन बहुत ज़रूरत पड़ता है। इसीलिए हम कुछ देर के लिए, 24 घंटे में 5 मिनट के लिए ही सही, आप जो ध्यान का प्रक्रिया करते हैं, कुछ भी करते हैं, उस समय में अपना विचार श्रृंखला को आप देखें और उसके बारे में सोचें।

जी हाँ, यह है आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़। कार्यक्रम विवरण में सुनिए हमारी आज की तीनों सभाओं में प्रसारित मुख्य मुख्य कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। खेतिहर आवास्ते कार्यक्रम में 7:10 पर आप सुनेंगे अनाज भंडारण में सावधानी विषय पर जानकारी। खेत खलिहान कार्यक्रम होगा 12:50 पर। संध्या 7 चौपाल कार्यक्रम में गीतानो गजरो बाजार भाव और मौसम की जानकारी ग्रामीण श्रोता सुनेंगे। मानसगान आप सुना करते हैं 7:20 पर। आज सुनिएगा भाग संख्या 237, मुख्य स्वर सुरेश वाडकर का होगा। बरुमंगल कार्यक्रम में 9:10 पर हमारे आज के कलाकार रहेंगे तानाराम मेहरडा। प्रोग्राम सुप्रभात 7:30 पर होगा। चंद युगल फिल्मी गीत आप सुनेंगे 9:30 पर। दिन में 10 कार्यक्रम होगा गा मेरे मन गा। दिन में 11 आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतमाला। दोपहर 12:05 पर कार्यक्रम होगा सैनिकों के लिए। चंदौर फिल्मी गीतों का लुत्फ आप ले सकते हैं दोपहर बाद 2:30। प्रोग्राम एक ही फिल्म से होगा रात 8:00। फिल्म संगीत आप 7:45 पर और देर रात 10:30 पर सुन सकते हैं। हमारा साप्ताहिक पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी की खुशबू आप सुनेंगे रात 9:30 पर। पेशकश जसवीर सिंह की होगी। झोंक माहिती प्रोग्राम सराय की होगा संध्या 6:05 पर।

संध्या 5 बजे युवावाणी में युवा श्रोता सुनेंगे मेक इन इंडिया, अहिंसा परमो धर्म, समय प्रबंधन का महत्व, सकारात्मक सोच और टुडे हिस्ट्री विषय पर जानकारी। दोपहर 1:05 पर कार्यक्रम होगा घर आंगन, प्रस्तुति रहेगी किरण शर्मा की। चर्चा का विषय रहेगा विश्व रेड क्रॉस दिवस, बच्चों की पढ़ाई में AI का उपयोग, रहना है फिट तो खाएं सो समझकर, राजस्थानी भोजन लापसी विषय पर बहने सुनेंगी जानकारी। सुगम संगीत आप सुना करते हैं 8:45 पर, दोपहर 12:30 पर और रात 9:15 पर। रात 8:30 पर कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। जिले की चिट्ठी आप सुना करते हैं संध्या 6:40 पर, जिसे हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे।

अभी आप सुन रहे थे हमारी आज की तीनों सभाओं में प्रसारित मुख्य मुख्य कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। 6:55 होने को हैं। अब संस्कृत में समाचार, 7 बजे हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। समाचारों की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों का हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। इसमें 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलगा वित्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवी के पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल आबूधाबी में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुई त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। बैठक में संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रीम अल हाशमी और फ्रांस के विदेश कार्य महासचिव मार्टिन ब्रायंस शामिल हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया कि तीनों देशों ने स्पष्ट समय सीमा में भागीदारी मजबूत करने की कार्ययोजना पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लैम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में

0: batting for three in 19 overs. Multiple rain interruptions reduced the match to 19-over-a-side affair, setting Bengaluru a DLS target of 213. Mitchell March scored dazzling 111 of 56 for Lucknow, while Rajat Patidar contributed 61 of 31 for Bengaluru. Mitchell March was adjudged player of the match. Today, Delhi Capitals will take on Kolkata Knight Riders at the Arun Jaitley Stadium in Delhi at 7:30 p.m. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Kerala, Mahe, South Interior, Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal today and tomorrow. The Met Department said the thunderstorms accompanied with lightning and gusty winds are very likely to prevail over Uttar Pradesh, East Rajasthan, Coastal Karnataka and Rayalaseema today. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। खेती हर वास्ते कार्यक्रम में लीजिए सुनी जानकारी। नवजात बछड़ों की देखभाल।
2: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों खेती पाती के सागे सागे आपा पशुपालन भी करा हा और पशुओं को आपा ने विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए बंगा खान पान गो बंगा रहन सहन गो या फिर और कोई रोग गो प्रकोप हो तो बिंगो भी अपन के टेमो टेम पशुओं को उपचार आपा ने करा देना चाहिए और इतने जिका नवजात बछड़ा है बंगो भी आपा ने जन्म छु आपा ने ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जिका नवजात बछड़ा है बंगे आपा ने थोड़ी सी ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत हो तो जिये जन्म हुए तो बिहु बाद में बछड़े ने साफ सुथरो रखा और बिना सुको भी रखना चाहिए और बिंगे सागे सागे बिंगो जो को नाक है और मुंह जो है बिने भी आप साफ कर दें और बिने अपने गा के कन्ने ही बिने रखना चाहिए जिस कि गा बिने चाटती रहे और गा अगर चाटन में असमर्थ हुए कई बार आप देखा कि गा बछड़े ने जन्म देने बाद में खड़ी को नहीं हो सके या फिर और कोई कारण हो चाट ना सके बिने तो बिंग स्थिति में अपन किए बछड़े ने जो है सूखे कपड़े छू बिने अच्छी तरह पूछ देना चाहिए और जन्म गए तुरंत बाद ही बछड़े ने खींच देना बहुत जरूरी है जिको पहलो जिको दूध हो वो थोड़ो गाढ़ो हो और हल्का पीलो रंगो भी हो तो बिना आपने बछड़े ने दे देना चाहिए बीस कि बछड़े की जिकी रोगों से लड़ने की जिकी क्षमता हुए वह ज्यादा हो जाए क्योंकि बिंग अंदर बहुत सारा विटामिन और बहुत सारा प्रोटीन जिका हुआ है तो वो अपन बछड़े ने जरूर दे दें जिको कि बिंग विकास खातर भी जिका आवश्यक पोषक तत्व है वह भी खींच बिने मिले और क्यों बाद में बछड़े ने सुरक्षित और आरामदायक जगह पर आपने रखना चाहिए और वो बाड़ो जिका में आप रखा वो साफ सुथरो और एकदम सूखो होना चाहिए और बिना आप धूप छू बारिश बचाना चाहिए और जो ठंड का दिन हो तो ठंड छू भी बिना बचाना चाहिए। पोषण की बात करा किसान भाइयों तो नियमित रूप से आपा के बिना दूध या फिर दूध का जिका भी और पदार्थ है भी आपा ने बिना नियमित रूप से देना चाहिए और दिन में कई बार आपन के थोड़ो थोड़ो करके बिना दूध पियाना चाहिए और भी धीरे धीरे जिया जिया टाइम टपे तो थोड़ा टाइम बाद बिना आपा बाकी का भी कोई घास है या कोई और जिको भी चारो है वो बिना आपा देश कहा पर भी मैं भी आपा एक विशेष बात को ध्यान रखा कि आपा इसो आहार ना देवा जिको की पचन में ओख हो तो ही करके सरल जिको पचन वाला खाना है वो ही अपन के देना चाहिए। स्वच्छता को किसान भाइयों विशेष करके अपन ध्यान रखना चाहिए जिसू कि कोई रोग को प्रकोप ना आवे और कोई संक्रमण भी ना आवे और नियमित रूप से अपन के बिंग निगरानी करनी चाहिए और बिंग वजन को भी आपा विशेष कर ध्यान रखा और कोई भी अपन वजन कम होना या रोग कोई संकेत दिखे तो तुरतो फुरता अपन पशुओं का डाक दर्जी बांसों संपर्क करना चाहिए और बने बुला के जिको है और जिको जरूरी उपचार हो वो अपन करवाना चाहिए और जिको नाड़ू हो वो जन्म बाद में के बिना अपन सुखा लिया और 2 इंच दूरी के ऊपर कोई धागो बांध दिया और बिहू बाद में जिको बच्चड़ो नाले बिना साफ कैंची से आप काट दें और बिहू बाद में बिंग ऊपर बिंग दवाई लगा दें आप और आप जो आप खुद ना काट सका बिना तो पशुओं का डाक दर्जी बुला के और बांसू आप इन्हें कटवा देना चाहिए और 3-4 सप्ताह बाद में बछड़ा ने जिकी कृमिनाशक दवा भी दे देनी चाहिए और नियमित अंतराल पर दवा जिकी अपन बारी बारी दे देनी चाहिए जिसू कि कोई भी जिका कोई कीड़ा है बंगो प्रकोप ना हो। टीकाकरण भी जिको है वो टेमो टेम अपन करवाना देना चाहिए इं करके जिका भी अपना पशुओं का जिका डाक दर्जी है बना बुला गया और बिंग सलाह ले लिया और जब भी जिका भी टीका को टाइम हो तो वो भी अपन टेमो टेम करवा देना चाहिए। इसके अलावा बछड़े ने अपना भरपूर मात्रा में पानी जिको देता रहे और इंगे सागे सागे बिंग जिको है वजन को और विकास को भी नियमित रूप से ध्यान रखा और स्वास्थ्य को विशेष करके ध्यान रखा कि कोई भी अपन रोग गो या कोई कीट लागेड़ा हुआ है तो आप जिका डाक दर्जी है बना बुला गए और बिने दिखा गए और बिंगो उपचार आप करवा दें। इसके अलावा आप बछड़े ने जिका बाड़ा में रखा तो अपन पहला जिको है बिने थोड़ा दिन बिने दूसरे पशुओं से नियरो रखना चाहिए और बिहू बाद में थोड़ो मोटो हो जाए तो फिर बिहू बाद में एक पान बिने पशुओं को जिको बाड़ो आप दूसरे पशुओं से आगे भी बिने रख सका जिसू कह के बिंगो विकास जिको है वो अच्छो हो। तो किसान भाइयों सगली बातों को आपने जिको नवजात बछड़े के प्रति आपने ध्यान रखनी चाहिए जिसू की बिंगो विकास जिको है वो अच्छो हो। अब चला राम राम साह राम राम।
1: खेती हरा वास्ते कार्यक्रम में अभी

ग्राम श्रोता सुन रहे थे जानकारी नवजात बछड़ों की देखभाल, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आइए सुनते हैं भजनी मानसिंह की आवाज में ये लोक भजन।

ओम नाम भज प्यारा मनवा। ओ तेरो खर्चो तो लागे नहीं पूंजी दाम को बिना भजन।

भजनी मान सिंह की आवाज में अभी आपने ये लोक भजन सुना। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। हमारे मीटर्स हैं मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स, DRM 909 किलो हर्ट्स, FM 100.1 किलो मेगा हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी आप हमारे प्रसारण इस समय सुन पा रहे हैं। 7:20 होने को हैं। कार्यक्रम सुनिए मानस गान। आज सुनिए भाग संख्या 237, मुख्य स्वर सुरेश वाडकर का।

अयोध्या वासियों सहित राजा जनक के चित्रकूट से प्रस्थान करने की वेला आ पहुंची है। भरत के भक्ति तथा समर्पण भरे वचन सुनकर श्री राम गदगद हो गए। विदा करते हुए वो भरत को पांवरी देना चाहते हैं, किंतु संकोच होता है। क्षणिक सोच विचार के पश्चात गुरुजन तथा बड़ों की उपस्थिति का संकोच त्याग कर उन्होंने भरत को अपनी चरण पादुका दे दी। भरत ने खड़ाओं की जोड़ी को सिर पर धारण किया।

मानस गाना भी आपने सुना। मुख्य स्वर था सुरेश वाडकर का। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। कार्यक्रम सुनिए सुप्रभात। बातचीत करेंगे पहले नारी शिक्षा के महत्व पर। दोस्तों, आज के युग में हम सब जानते हैं कि शिक्षा जीवन जीने का एक जरूरी हिस्सा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। दोस्तों, नारी यानी महिलाओं के अधिकारों में शिक्षा काफी बड़ी भूमिका अदा करती है। वैसे तो अपने अधिकारों को जानने और समझने और देश के उज्जवल कल के लिए शिक्षा सभी के लिए जरूरी है, लेकिन आज हम विशेष तौर पर महिलाओं के शिक्षा के महत्व के बारे में बात आपसे साझा करेंगे। यह हम सभी जानते हैं कि हमारे समाज में महिलाओं को शिक्षित करके हम भेदभाव को मिटाने में मदद कर सकते हैं। शिक्षा महिलाओं को जीवन के मार्ग को चुनने, उन्हें अपने अधिकार देने का पहला कदम है जिस पर वो आगे बढ़ती हैं। एक शिक्षित महिला में कौशल, सूचना, प्रतिभा और आत्मविश्वास होता है। यही उसे एक बेहतर मां, कर्मचारी और बेहतर देश का निवासी बनाती है। दोस्तों, महिलाएं हमारी देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा है। महिलाओं और पुरुषों दोनों को देश के विकास में योगदान करने के समान अवसर की जरूरत है। शिक्षा महिलाओं के सोच के दायरे को बढ़ाती है, जिससे उन्हें अपने बच्चों को अच्छी परवरिश और अच्छे संस्कार देने का मौका मिलता है। अपने और अपने परिवार के अच्छे बुरे का बेहतर सोच सकती है एक शिक्षित महिला। शिक्षा एक लड़की को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने में मदद करती है, जिससे वो अपने अधिकारों और महिलाओं के सशक्तिकरण को पहचान सके। साथियों, किसी भी राष्ट्र को सुधार और उसकी उन्नति इस बात पर निर्भर करती है कि उस राष्ट्र के सारे वर्ग शिक्षित हों। महिलाएं अपने साथ अनेकों को शिक्षित करती हैं, परिवार और राष्ट्र को आगे लेकर जाती हैं। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम बेटी पढ़ाएं और बेटी बचाएं।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त हरप्रीत। इस गीत से पहले हमने चर्चा की थी नारी शिक्षा के महत्व पर, और अब हम एक और विषय पर चर्चा कर रहे हैं, वह है परिवहन में रेल का महत्व। दोस्तों अंग्रेजी हुकूमत की वजह से भारत में अनगिनत बदलाव आए। इसमें एक बदलाव हमें ब्रितानी लोग दे गए, जो आज सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, वह है रेल परिवहन। रेल परिवहन को देश में माल और यात्रा के लिए सबसे जरूरी संसाधन समझा जाता है। यह देश के अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ने का काम करता है। स्वतंत्रता के समय भारत में 37 रेलों की व्यवस्था थी। भारत सरकार ने सभी रेलों के सुधार के लिए इसे 17 क्षेत्रों में बांट दिया।

जिससे सभी क्षेत्रों का सुधार समय से हो सके। रेल हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम तो करती ही है, इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में सामान ढोने में, आपातकालीन समय में खाद्य सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में, गांव से शहरों में काम करने वाले व्यक्तियों को दूर दराज के इलाकों में पहुंचाने में रेल का बहुत बड़ा योगदान है। श्रोताओं, दुनिया का सबसे बड़ा और विख्यात रेलवे नेटवर्क हमारे देश भारत में ही है। रेलवे की वजह से पूरा भारत देश एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हर वर्ग, जाति, समुदाय, क्षेत्र के लोगों को रेल परिवहन लाभान्वित कर रहा है। तो अब जब आपको रेलवे की इतनी जानकारी मिल गई है, तो रेल में सफर करते समय रेल परिवहन का शुक्रिया, धन्यवाद जरूर करें रेल में सफाई रखकर। आशा की आवाज फिल्म का नाम मोम की गुड़िया, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। सुप्रभात, कार्यक्रम सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त हरप्रीत।

ओ दिल वाले मत वाले तेरे दिल के स्टेशन पे गाड़ी गई रुक रुक।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश के कुल निर्यात व्यापार में कृषि उत्पादित वस्तुओं का प्रतिशत काफी ज्यादा है। भारत देश में आवश्यक खाद्यान्नों को लगभग सभी की पूर्ति कृषि के माध्यम से ही की जाती है। वर्तमान समय में भी एक बहुत बड़ी आबादी को कृषि के माध्यम से ही रोजगार मिलता है। भारतीय कृषि को देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, क्योंकि यही वो उपाय है जो देश को खुशहाल बनाता है। दोस्तों, कृषि उद्योग भारत की ज्यादातर जनता को रोजगार प्रदान करता है। भारत देश की लगभग 52% आबादी प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। कृषि उत्पादों को कच्चे माल के रूप में अनेक उद्योगों में इस्तेमाल करके लाखों व्यक्तियों को रोजगार मिलता है। इसके अलावा परिवहन कंपनियों को कृषि पदार्थ एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में काफी मुनाफा होता है। इस तरह से भारतीय कृषि देश के निवासियों के लिए जीवन निर्वाह का काफी महत्वपूर्ण साधन है। भारतीय खाद्यान्न की जरूरत लगभग 100% पूर्ति भारत कृषि द्वारा ही की जाती है। विश्व की सबसे बड़ी कृषि संबंधी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है भारत। भारत के कुल निर्यात व्यापार में कृषि वस्तुओं का प्रतिशत काफी रहता है। श्रोताओं, भारतीय किसानों की मेहनत की वजह से ही भारतीय कृषि ने इतनी सफलता प्राप्त की है। दहलीज फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं आशा और महेंद्र कपूर की आवाज में। कार्यक्रम सुप्रभात आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं।

दोस्तों राह में मुश्किल होगी हजार, तुम दो कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। मुश्किल है पर इतनी भी नहीं कि तू कर ना सके, दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तू पा ना सके, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, तुम्हारा भी सत्कार होगा, तुम कुछ लिखो तो सही, तुम कुछ आगे बढ़ो तो सही, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। सपनों के सागर में कब तक गोते लगाते रहोगे, तुम एक राह चुनो तो सही, तुम उठो तो सही, तुम कुछ करो तो सही, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। किशोर की आवाज, फिल्म का नाम आन मिलो सजना।

गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं, मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है। सीख रहा हूं मैं भी मनुष्यों को पढ़ने का हुनर, सुना है चेहरे पे किताबों से ज्यादा लिखा होता है।

अभी आप सुप्रभात कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। भोर के 8 बजने को हैं। अब समाचार प्रभात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज और 8:30 पर खबरनामा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी। सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसी के सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुइस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीपन दास गुप्ता, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वेत्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव ए अनबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में प्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन के चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग

0: तीन गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया AI और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
4: इंडिया एंड वियतनाम ऑफर समथिंग इम्पोर्टेंट।
5: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
4: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टूगेदर।
3: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
6: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन

0: अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। यह देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमेक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा चुनाव में। तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा, आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का ये बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है, देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात, अमर उजाला में है। कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
1: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। और सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का

0: runs using DLS method at the Ikana Stadium. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मगरबी बंगाल के लिए बीजेपी के मरकजी मुशाहिद अमित शाह कोलकाता में नए मुंतखब पार्टी अरकाने असेंबली के साथ मीटिंग करेंगे ताकि कानून साज पार्टी के लीडर का इंतखाब किया जा सके। तमिलनाडु में सरकार की तश्कील के मामले पर तातुल बरकरार है। वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के अरकानी असेंबली हिमायत देने या न देने के मामले पर आज मीटिंग करेंगे। वियतनाम के सदर तोलैम ने मुंबई में एक कारोबारी फोरम के दौरान आलमी सप्लाई निजाम में भारत वियतनाम रोल पर जोर दिया है। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने आलमी ज़रई मंजरनामे में भारत की पोजिशन को मुस्तहकम बनाने से मुतालिक इकदाम का जायजा लिया। सऊदी अरब ने अपने फौजी अड्डों और फजाई हदूद तक अमरीकी फौज की रिसाई को मुअत्तल कर दिया है। और आईपीएल क्रिकेट में इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डीएलएस साबते के तहत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल के लिए बीजेपी के मरकजी मुशाहिद वजीर दाखिला अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वो बीजेपी के 9 मुंतखब एमएलएस के साथ मीटिंग करेंगे जिसमें पार्टी के लेजिस्लेटिव रहनुमा का इंतखाब किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मगरबी बंगाल में शानदार जीत के बाद बीजेपी हलफबरदारी की तकरीब को कौमी अहमियत की सियासी तकरीब में तब्दील करने की तैयारी कर रही है। मगरबी बंगाल में पहली मरतबा बीजेपी की हुकूमत के लिए हलफ बरदारी की तकरीब हफ्ते के रोज 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनक्किद होगी। ये बैशाख की 25 तारीख होगी। मस्कूरा मकाम पर स्टेज और सिक्योरिटी इंतजामात की तैयारियां बुध के रोज से ही शुरू हो गईं। बीजेपी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, बीजेपी सदर नितिन नबीन और मुतअद्दिद दीगर आला रहनुमाओं के तकरीब में शामिल होने का इम्कान है। बीजेपी और एनडीए की हुकूमत वाली रियासतों के वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला को भी तकरीब के लिए मदु किया जा रहा है। आज न्यू टाउन में बिस्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर के मकाम पर बीजेपी के 9 मुंतखब एमएलएस की मीटिंग होगी जिसमें लेजिस्लेटिव पार्टी के रहनुमा का इंतखाब किया जाएगा। इस दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह मरकजी मुशाहिद के तौर पर मौजूद रहेंगे। हलफबरदारी की तकरीब के लिए सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इम्कान है कि इस दौरान तकरीबन 4000 पुलिस एहलकार तैनात रहेंगे क्योंकि ये तकरीब रविंद्र जयंती के मौके पर मुनक्किद हो रही है, इसलिए सकाफती प्रोग्रामों को खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: तमिलनाडु में नई सरकार की तश्कील में ताखीर हो रही है। अक्सरियत के लिए दरकार 118 अरकाने असेंबली की हिमायत हासिल करने की खातिर बातचीत का सिलसिला जारी है। इधर डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के नए मुंतखब अरकाने असेंबली की लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंगें हुई। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इडप्पडी पलनीस्वामी को पुदुचेरी में लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है। इधर आज वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के नए मुंतखब अरकान की अहम मीटिंग होने वाली है जिसमें वाहिद सबसे बड़ी पार्टी तमिलका वेट्री कड़गम टीवीके को हिमायत देने या ना देने के मामले पर गौर किया जाएगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: तमिलनाडु में कल डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के अरकान असेंबली की मीटिंग के साथ ही सूरत हाल ने दिलचस्प सियासी रुख इख्तियार कर लिया है। इन दोनों पार्टी ने अक्सरियत साबित करने के मामले पर गवर्नर के फैसले को सराहा है। डीएमके पार्टी के तर्जुमान टीकेएस एरनगोवन ने कहा है कि वाहिद सबसे बड़ी पार्टी का ये फर्ज है कि वो अपनी अक्सरियत साबित करे। उन्होंने ये भी कहा कि डीएमके सरबराह एम के स्टालिन ये नहीं चाहते कि किसी तरह का कोई आईनी बोहरान पैदा हो। इधर पुदुचेरी के लिए ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के सेक्रेटरी ए अंबड़गन ने अरकाने असेंबली की मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि फैसला करने का इख्तियार पार्टी के जनरल सेक्रेटरी को दिया गया है। उन्होंने अक्सरियत साबित करने के मामले पर रियासत के गवर्नर के फैसले की सताइश की और कहा कि मौजूदा सियासी गैर यकीनी के हालात में गैर मुतवक्को फैसले भी सामने आ सकते हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं

0: इरफान।
1: आकाशवाणी ने आज अपने कयाम को 90 साल मुकम्मल होने के मौके पर कौमी राजधानी में एक मैराथन का एहतमाम किया। तकरीबन 3.5 किलोमीटर की ये मैराथन आकाशवाणी भवन से शुरू हुई और कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक की इमारत के रास्ते से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर इख्तिताम पजीर हुई। इसमें आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती के मुलाजिमीन के साथ साथ उनके अरकान खानदान ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जैन भी मौजूद थे। वियतनाम के सदर तो लैम ने इस बात पर जोर दिया है कि आज के बदलते हुए आलमी निजाम में भारत और वियतनाम के पास आलमी सप्लाई चेन के शोबे में कलीदी किरदार निभाने का बड़ा मौका है। मुंबई में भारत वियतनाम कारोबारी फोरम से खिताब करते हुए जनाब लैम ने उजागर किया कि मौजूदा आलमी मंजरनामा एक चैलेंज जरूर है, लेकिन साथ ही ये भारत और वियतनाम के दरमियान तआवुन और इश्तराक को नई बुलंदी पर पहुंचाने का एक मौका भी है। इस मौके पर खिताब करते हुए महाराष्ट्र के वजीरे आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम जैसे मुल्कों के सनतकार, सरमायाकार और पेशेवराना अफराद जो टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग शोबों से वाबस्ता हैं, एशिया के मुस्तकबिल की तश्कील करेंगे। वियतनाम के सदर और कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी तो लैम कल रात श्रीलंका के दो रोजा सरकारी दौरे पर वहां पहुंचे हैं, जिसका मकसद बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम करना और तिजारत और सरमायाकारी को फरोग देना है। सदर तो लैम भारत का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद मुंबई से परवाज के जरिए बंदर नाइक के बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचे। उनके हमराह 209 अरकान पर मुश्तमिल एक वफ्द भी है। सदर तो लैम श्रीलंका का दौरा सदर अनुरा कुमारा दिसा नाइके की दावत पर कर रहे हैं और ये दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 55 बरस मुकम्मल होने के मौके पर हो रहा है। वियतनाम के सदर श्रीलंका की क़यादत के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे, पार्लियामेंट से खिताब करेंगे और कोलंबो में श्रीलंका वियतनाम तिजारत, सरमायाकारी और सियाहत से मुतालिक फोरम में शिरकत करेंगे। भारत और वियतनाम ने उभरती हुई टेक्नोलॉजी, इख्तिरा, तहकीक और स्टार्टअप इको निज़ाम में तआवुन और इश्तराक को गहरा करने से मुतालिक मुज़ाकरात किए हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के वज़ीर मुमलिकत जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में वियतनाम के अपने हम मनसब डॉक्टर वू हाई क्वान के साथ दो तरफा मुज़ाकरात किए। बातचीत के दौरान फरीकैन ने मसनूई जहानत, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, इख्तराई इको निज़ाम और टेक्नोलॉजी की मुंतकली से मुतालिक पहल कदमियों में तआवुन और इश्तराक पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग में तहकीकी इदारों और इख्तराई मराकज से मुतालिक तआवुन समेत दोनों ममालिक के दरमियान जारी तालीमी और इदारा जाती इश्तराक का भी जायजा लिया गया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने खुराक और ज़राअत की भारतीय चैम्बर के चेयरपर्सन डॉक्टर MJ खान के साथ एक मीटिंग की सदारत की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में इन मालूमात को शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे किसानों के मेयारे ज़िंदगी को बेहतर बनाने, आलमी ज़राई मंजरनामे में भारत की पोजीशन को मुस्तहकम करने, अफ्रीकी खित्ते में ज़्यादा इश्तराक और इस शोबे में भारत की महारत को शेयर करने जैसे इकदामात पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने तवील मुद्दती खुराक की यकीनी फराहमी के लिए ज़रई इश्तराक बढ़ाने के नए तौर तरीकों पर भी बातचीत की। जनाब गोयल ने डिलीवरी के को फाउंडर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सूरज सहारन के साथ एक मीटिंग की भी सदारत की। उन्होंने कहा कि उन्होंने कंपनी के इख्तराई सफ़र और टेक्नोलॉजी पर मबनी कारोबारी मॉडल और इदारे की पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल किया। उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि कंपनी भारतीय लॉजिस्टिक्स को ज़्यादा शफाफ, मुअस्सर और मुस्तकबिल के लिए तैयार बना रही है। खारिजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कल अबू जहबी में भारत, फ्रांस और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान एक सह फरीकी मीटिंग में शिरकत की। इसमें भारत के लिए वजीर मुमलिकत और खसूसी एलची रीम अल हाशमी और फ्रांस की यूरोपी और खारिजी उमूर की वजारत में सेक्रेटरी जनरल मार्टिन ब्रेन्स शामिल थे। वजारत खारिजा ने कहा है कि तीनों ममालिक ने अपनी शराकत दारी मुस्तहकम करने और आइंदा के लाइहा अमल के लिए काम करने से इत्तेफाक किया है। سعودی عرب نے اپنے فوجی اڈوں اور فضائی حدود تک امریکی فوج کی رسائی کو معطل کر دیا ہے۔ اس کی وجہ سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو آبنائے ہرمز سے بحری جہازوں کو

0: बाहिफाजत निकालने के अपने मंसूबे को बीच में ही तर्क करना पड़ा है। अमेरिका के दो अहदेदारान ने इस बात की तस्दीक की है। सऊदी अरब का ये कदम खलीज के खित्ते से मुतालिक अमेरिका की हिकमत अमली के लिए एक बड़ा धचका माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका के एक कलीदी इलाकाई इत्तेहादी ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के शुरू होने से पहले ही इस कार्रवाई में रुकावट डाल दी है। उधर सदर ट्रंप ने अपनी तवज्जो सिफारतकारी की जानिब मरकूज कर दी है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: ईरान जंग के खात्मे के लिए अब 14 निकात पर मुश्तमिल अमरीका की तजवीज़ का जायजा ले रहा है। उधर ईरान के वजीर खारजा अब्बास राखची ने मुजाकरात और सिफारतकारी की जरूरत पर जोर दिया है। मुजवजा फ्रेमवर्क में लड़ाई रोकने और हतमी मुजाकरात के लिए 30 दिन की मुद्दत की बात कही गई है, जबकि ईरान के एटमी प्रोग्राम समेत बुनियादी मामला पर बाद में बातचीत की जाएगी। सिफारती मंजरनामा अब भी गैर वाजह है, क्योंकि ईरान ने किसी भी तरह की शराइत कबूल करने की तस्दीक नहीं की है और ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने भी इस बारे में कुछ मीडिया इत्तलात को फर्जी करार देकर इन्हें मुस्तरद कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: रूस ने यूक्रेन के साथ लड़ाई में आज से जंग बंदी का ऐलान किया है, जो दूसरी आलमी जंग में साबिका सोवियत यूनियन की फतह के 81 साल पूरे होने के जश्न के दौरान 10 मई तक जारी रहेगी। सदर व्लादिमिर पुतिन के फैसले के तनाजुर में रूस की वजारत दिफा ने ये ऐलान किया है। इससे कबल यूक्रेन के सदर जेलेंस्की ने येरेवन में एक सरबराह मीटिंग में ये कहा था कि हो सकता है कि रूस मॉस्को के रेड स्क्वायर पर मुमकिन ड्रोन हमलों के अंदेशे से 9 मई की यौमे फतह परेड के दौरान फौजी साजो सामान की नुमाइश करने से गुरेज करे। अमरीका की तजारती उमूर से मुतालिक एक वफाकी अदालत ने यह फैसला सुनाया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के नए 10% आलमी महसूलात गैर कानूनी हैं। न्यूयॉर्क में बैनुल अक्वामी तजारत से मुतालिक अदालत के 3 जजों के पैनल ने यह फैसला सुनाया कि सदर ट्रंप ने तजारत से मुतालिक कानून के तहत सदर को दिए गए कांग्रेस के इख्तियारात से तजावुज़ करके इकदामात किए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने केरलम, माहे, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने कहा है कि उत्तर प्रदेश, मशरकी राजस्थान, साहिली कर्नाटक और रायलसीमा में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। IPL क्रिकेट में कल रात लखनऊ के ईकाना स्टेडियम में बारिश से मुतासिरा मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने DLS तरीक़ाकार के तहत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। रॉयल चैलेंजर्स को जीत के लिए 213 रन का निशाना मिला था और उसने 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन बनाए। आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान।
2: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी अखबारों ने मगरबी बंगाल असेंबली तहलील होने से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की इस हवाले से सुर्खी है, ममता बनर्जी हुकूमत का 15 साल दौर खत्म, गवर्नर RN रवि ने आईनी अख्तियारात इस्तेमाल किए। बिहार काबीना में तौसी से मुतालिक खबर भी सभी अखबारों में नुमाया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, सम्राट काबीना की तौसी, 32 वज़रा को गवर्नर ने ओहदे का हलफ दिलाया। ऑपरेशन सिंदूर का एक साल मुकम्मल होने की खबर को भी सभी अखबारों ने अहमियत के साथ सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोजनामा प्रताप ने वजीर आजम के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि ऑपरेशन सिंदूर दहशत गर्दी के खिलाफ भारत का सख्त रद्द अमल और आवाम की यकजहती की अलामत।
0: और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मगरबी बंगाल के लिए BJP के मरकजी मुशाहिद अमित शाह कोलकाता में नए मुंतखब पार्टी अरकान असेंबली के साथ मीटिंग करेंगे, ताकि कानून साज पार्टी के लीडर का इंतखाब किया जा सके। तमिलनाडु में सरकार की तश्कील के मामले पर तातुल बरकरार है। VCK, CPI और CPIM के अरकान असेंबली हिमायत देने या न देने के मामले पर आज मीटिंग करेंगे। वियतनाम के सदर तोलेम ने मुंबई में एक कारोबारी फोरम के दौरान आलमी सप्लाई निज़ाम में भारत वियतनाम रोल पर जोर दिया है। सऊदी अरब ने अपने फौजी अड्डों और फजाई हदूद तक अमरीकी फौज की रसाई को मुअत्तल कर दिया है। और IPL क्रिकेट में ईकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स ने DLS साबते के तहत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से

0: का। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए भाई गुरतेज सिंह को।

0: अभी आप सुगम संगीत सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। हिंदी में प्रादेशिक समाचार जयपुर से होंगे।
1: मुख्य समाचार। जयपुर में चल रहे संयुक्त कमांडर सम्मेलन में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भविष्य की युद्ध रणनीतियों और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। कृषि और एग्रीटेक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ग्राम 2026 के तहत आज हैदराबाद में चौथी इन्वेस्टर मीट का आयोजन। देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हुआ, ये बफर स्टॉक की जरूरत से लगभग 3 गुना अधिक है। और राज्य के उत्तरी पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियां जारी, वहीं पश्चिमी राजस्थान हीट वेव की चपेट में।

0: समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। जयपुर में कल से शुरू हुए दो दिन के संयुक्त कमांडर सम्मेलन में नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता पर विचार विमर्श किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आयोजित इस सम्मेलन में भाग लिया। जयपुर सैन्य स्टेशन में हो रहे इस सम्मेलन में रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म जारी की। इस फिल्म में आतंकवाद को राज्य नीति के रूप में इस्तेमाल किए जाने की पाकिस्तान की नीति को उजागर किया गया है। वहीं 26/11 मुंबई हमलों और पहलगाम आतंकी हमलों की घटनाओं को दिखाया गया है। सम्मेलन के पहले दिन भविष्य की युद्ध अवधारणाओं पर नए सिद्धांत भी जारी किए गए। वहीं आज रक्षा मंत्री सीडीएस अनिल चौहान की मौजूदगी में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें भविष्य की युद्ध रणनीतियों और तीनों सेनाओं की संयुक्तता तथा तालमेल को बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। साथ ही रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए स्वदेशीकरण और नागरिक सैन्य सहयोग पर विमर्श किया जाएगा। इसमें थिएटर कमान के गठन की भी समीक्षा की जा सकती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में उन्होंने कहा कि देश में अवैध रूप से रह रहे किसी भी विदेशी नागरिक को देश के कानूनों, प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के अनुसार वापस भेजा जाना चाहिए।
1: जो लोग अवैध ढंग से हमारे यहाँ रह रहे हैं, इसमें हमको बांग्लादेश की सहयोग चाहिए ताकि वो उनको रिपैट्रिएट किया जाए अपने देश। पिछले कुछ सालों में 2860 से ऊपर ऐसे मसले हैं जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय सत्यापन के लिए बांग्लादेश को खबर किया है और ये सभी मामले उनके यहाँ लंबित हैं। हमारा ये नीति है कि जो भी विदेशी नागरिक हमारे यहाँ अवैध रूप से रह रहा है वो उनको अपने देश जाना पड़ेगा।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल सीकर जिले के खंडेला में ग्राम विकास चौपाल लगाई। जाजोद गांव में लगी इस चौपाल को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से ही देश और प्रदेश मजबूत बनेगा। राजीविका से जुड़ी महिलाओं के साथ संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने उनके जीवन में आए सकारात्मक बदलावों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने किसानों से फलों की खेती और नवाचार करने के बारे में भी चर्चा की।
2: हमको फलों की खेती भी करनी चाहिए क्योंकि अनुभव होता है फलों की, जब खेती हम करते हैं तो एक प्रफुल्लता भी आती है मन में। आपने आम का पेड़ लगाया है, आम फल दे रहा है, तो आप कहीं भी रिश्तेदारी में भेजोगे तो कहोगे ये मेरा खेत का आम है। तो आपको 10-20-50 पेड़ हर किसान को अपने फलों के लगाने चाहिए जिससे कि वो ये महसूस करे कि ये फल तो मेरे घर का है, तो ये भी मैं आपसे, तो पर्यावरण भी बचेगा और हमारा फल भी पैदा होगा। हमको पर्यावरण का ध्यान रखते हुए फलदार, फूलदार, छायादार वृक्ष भी हमें लगाना चाहिए।
0: राजस्थान को कृषि नवाचार और खेती की आधुनिक तकनीक का केंद्र बनाने के लिए जयपुर में 23 मई से ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले एग्री बिजनेस, कोल्ड स्टोरेज और लॉजिस्टिक में निवेश के लिए कृषि विभाग की ओर से देश के विभिन्न शहरों में इन्वेस्टर मीट और रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हैदराबाद में ये मीट रखी गई है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा और कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल तथा पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत का भी इसमें भाग लेने का कार्यक्रम है। ग्राम 2026 से किसानों को जोड़ने के लिए प्रदेश भर में ग्राम रथ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई ने सांचौर के चितलवाना में कहा कि इस अभियान में सरकारी योजनाओं की जानकारी के साथ ही पात्र लोगों को इनसे जोड़ा जा रहा है।
3: अपने विकास के कार्यों को और कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, किस तरीके से जमीन तक जागरूकता और बढ़ाई जाए ताकि आने वाले समय में निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार की योजनाएं चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं उनको और प्रभावी रूप से नीचे तक पहुंचा सके।
0: हनुमानगढ़ जिले के पल्लू क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कथित फर्जी बीमा क्लेम का मामला सामने आया है। कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने कल SBI पल्लू शाखा में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने 162 फर्जी किसानों के नाम पर बीमा करने का खुलासा किया। गौरतलब है कि कृषि मंत्री के हस्तक्षेप से करोड़ों रुपए की बीमा क्लेम राशि जारी होने से पहले ही रोक दी गई। मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि 9 करोड़ रुपए की बीमा भुगतान राशि को

0: समय रहते ही रोक दिया गया।
1: जमाबंदी नहीं है तो कैसे, जमीन की जमाबंदी नहीं है तो प्रीमियम कैसे काट लिया और क्लेम कैसे बना दिया? बिना जमाबंदी बिना जमीन के इन्होंने प्रीमियम जमा करा के क्लेम पास कर दिया। ये जाने वाला था उससे पहले हमारी जानकारी में आ गया। इस चक्र में कोई भूमि नहीं है, जितने भी नाम है ना 162 किसानों के, इनकी कोई जमीन यहाँ पर नहीं है। ये है बजरू तेजपुरा गजनेर तहसील।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग तीन गुना अधिक है। श्री जोशी ने कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। भारी खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से देश में खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी आने के साथ ही गर्मी के तेवर फिर से तीखे हो गए हैं। हालांकि कुछ हिस्सों में दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ली। सवाई माधोपुर, वनस्थली, जालौर और दौसा सहित कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बरसात हुई। टोंक, करौली और कोटपुतली बहरोड में ओले भी गिरे। बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली, किंतु अधिकतर स्थानों पर तेज धूप और उमस से लोग परेशान रहे। भरतपुर में आज भी बादल छाए हुए हैं और सुबह से ठंडी हवाओं के साथ रुक रुक कर हल्की बरसात हो रही है। वहीं सवाई माधोपुर में देर शाम धूल भरी हवाएं चलने से यातायात प्रभावित हुआ। पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर और बाड़मेर में फिर से प्रचंड गर्मी का असर शुरू हो गया है। जैसलमेर में कल दिन का तापमान 45 डिग्री को पार कर गया, वहीं 15 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में आंधी बारिश की गतिविधियों में अब कमी होने की संभावना है। इससे अगले 3-4 दिन में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं सीमावर्ती जिलों में हीट वेव का नया दौर शुरू होने का अनुमान है। उत्तर पूर्वी राजस्थान में आज और कल कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। राज्य के पुलिस बेड़े में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 84 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के तबादले और नई नियुक्तियां की गई है। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार कई जिलों, पुलिस आयुक्तालय, एसीबी, सीआईडीसीबी, ट्रैफिक और महिला अपराध अनुसंधान सेल में अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जयपुर में चल रहे संयुक्त कमांडर सम्मेलन में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भविष्य की युद्ध रणनीतियों और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। कृषि और एग्रीटेक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ग्राम 2026 के तहत आज हैदराबाद में चौथी इन्वेस्टर मीट का आयोजन। देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हुआ, ये बफर स्टॉक की जरूरत से लगभग तीन गुना अधिक है। और राज्य के उत्तरी पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियां जारी, वहीं पश्चिमी राजस्थान हीट वेव की चपेट में। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मुरुमंगल कार्यक्रम में लीजिए सुनिए तानाराम मेहरडा को।

0: एलर्जी, अस्थमा, बांझपन और पेट संबंधी बीमारियों के आयुर्वेदिक इलाज हेतु मिले सेवानिवृत्त आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर लीलाधर शर्मा BAMS। आप आयुर्वेदिक चिकित्सा में 55 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। संपर्क करें कीर्ति मेडिकल क्लिनिक, मैन बाजार, बींजवायला, तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर। मोबाइल नंबर 94144-67186।
1: मरुमंगल कार्यक्रम में आप तानाराम मेहरड़ा को सुन रहे हैं।

मुरमंगल कार्यक्रम में आज आप तानाराम मेहरड़ा को सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आइए सुनते हैं कुछ युगल फिल्मी गीत। आइए पहले सुने किशोर कुमार और आरती मुखर्जी की आवाजों में तपस्या फिल्म का ये एक दो गाना।

0: बरसों बाद ऊँट में निकली हूँ। ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
1: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
0: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
1: एक काम करें, जब तक तुम यहाँ हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ है?
0: भूल गई। ना ना,
1: तुम नहीं बदलोगी। लो।
2: आंधी फिल्म में आप लता मंगेशकर और किशोर को सुन रहे हैं। गुलजार का गीत, संगीत राहुल देव वर्मन का।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

जब जब फूल खिले, लीजिए इस फिल्म में मोहम्मद रफी और नंदा को सुनिए। गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। ये युगल फिल्मी गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त हरप्रीत।

जलते वतन फिल्म से आप सुन रहे हैं इस समय लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को, गीत माया गोविंद का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। यह है प्रोग्राम की आखिरी पेशकश।

जलते बदन फिल्म से भी आपने मोहम्मद रफ़ी और लता को सुना। युगल फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। दिन के 10 बजे हैं। कार्यक्रम सुनिए, गा मेरे मन गा।

नया एक फसाना के आंगन में मेरे सवेरे सवेरे।

ये रात फिर ना आएगी। लीजिए इस फिल्म में आशा और मोहम्मद रफ़ी को सुने। गीत SH बिहारी का, संगीत OP नैयर का।

0: अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: मोहम्मद रफी और आशा की आवाजों में कश्मीर की कली फिल्म का एक दो गाना सुनिए। गीत है सच विहारी का, संगीत ओपी नैयर का।

ये आवाजें हैं सुरेश वाडकर और अनुपमा देशपांडे की, गीत आनंद बख्शी का, संगीत शिवहरी का, फिल्म का नाम चांदनी।

हीरा फिल्म में अभी आपने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को सुना। प्रोग्राम की अगली पेशकश दो कलियां फिल्म से लता और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, गीत साहिर लुधियानवी का, संगीत रवि का।

मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्स पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। ये आकाशवाणी का कार्टन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 11 बजे हैं, प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम गीतमाला।

स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम गीतमाला में। हमें आपकी याद आई है और आपको हमारी याद आई है और हम आ गए हैं आपके खूबसूरत संदेशों, आपके ख़तों और आपके प्यारे प्यारे गीतों के साथ। पहला गाना हम आपको सुनवाते हैं, फरमाइश करते हैं। श्री गंगानगर से ख़त हमें मिले हैं, ये बजरंग लाल शर्मा, जगमोहन सिंह अरनेजा, दिनेश कुमार शर्मा, नरेश कुमार शर्मा, अनारकली बाज़ार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी गव्या और भाई सुच्चा सिंह पाठक, दौलतपुरा श्री गंगानगर से शिवलाल जी बेनीवाल, शांति बेनीवाल, मंजू मोहित, हेमंत और अंजू बेनीवाल की तरफ से ख़त मिला है। मंडी डबवाली से जेके बकोलिया, सुनीता बकोलिया, संजय अनिल और मीनू बकोलिया, मसीता डबवाली से दर्शन लोट, सरगुन, इंद्रजीत, कमलजीत, मीनाक्षी, सागर और हनी लोट की तरफ से ख़त मिला है। मक्खू से बिल्ला बजाज, हैप्पी कपूर, फिरोजपुरी और मुनीश बजाज, परमिलागंज आलोट से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा, मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंदर सिंह संधू, महावीर संधू, गुरचरण गरोवर और रमेश पिगलानी, गांधी चौक रोपड़ से हरदेव, मीका बलविंदर विक, जयतेग बिरक और मीका बिरक, और आपके संदेश भी हमें लगातार मिल रहे हैं। अब पढ़ते हैं आपके संदेश। सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से गजानंद येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, यशोक येले, बीरमगाम गुजरात से अजीत भावसार, परमिला भावसार, भावेश सनी भावसार, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, संदीप सिंह सोनगरा, प्राची सोनगरा, सोमल सोनगरा, कार्तिक सोनगरा, आप लिखते हैं चुरू से, और आप हैं बड़िंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती और इनके बहुत से साथी, नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, घमंडिया से जगदीश ढूकिया, प्रमिला ढूकिया, ज्योति सरिता, तमन्ना सचिन विष्णु, शिवराम ढूकिया, जैसलमेर से विकास जाखड़, तेज प्रताप जाखड़, कमल बावल, अमित शर्मा, खोखरामवाली से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास बारासा, रोशनी बारासा और सगुन बारासा, नाईवाला हनुमानगढ़ से वेद मिड्ढा, अलका मिड्ढा, और आप हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, आपने लिखा है हकीकतपुरा मऊ से, और ये संदेश हमें मिला है हांडी खेड़ा सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा, हनुमानगढ़ से लिखते हैं कलाना भादरा से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, युद्धव कड़वासरा, कुंदन जाखड़, लीलाधर स्वामी, कृष्ण मायल, कीड़ूराम जोया, हनुमान सारण और सुनील पाईवाल शर्मा, और आप हैं रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी की तरफ से हमें ये संदेश मिले हैं। आप सभी साथियों को हम सुनवाते हैं चरस फिल्म का गाना। ये आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, और दोस्तों आपकी याद के साथ और आपके लिए खूबसूरत गीत के साथ चंद अल्फाज हैं कि पलट कर देख लेना जब सदा दिल की सुनाई दे, पलट कर देख लेना जब सदा दिल की सुनाई दे, और मेरी आवाज़ में शायद मेरा चेहरा दिखाई दे, खनक उठे न पलकों पर कहीं जलते हुए आंसू, तुम इतना भी याद मत आओ कि सन्नाटा दुहाई दे।

दोस्तों आप सुन रहे थे चर्च फिल्म का ये दो गाना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। अगले गाने की फरमाइश के लिए हमें खत मिले हैं मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से विनोद पुरी, वीपी रंजू, अशोक पुरी, सुशील पुरी, नीलम पुरी, बीके पुरी, कैलाश पुरी, रमापुरी, आरएस पुरी और पूरा पुरी परिवार। मलोट पंजाब से राजकुमार इंदौरा, बिमला इंदौरा, गैरी इंदौरा और इनके साथ हैं विकास इंदौरा, प्रियंका इंदौरा, रमन इंदौरा, रितु इंदौरा, भविष्य खन्ना, मिशेल खन्ना, किंसुक खन्ना और बेबी दीपांशी इंदौरा। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रेयांश ठाकुर। ये खत मिला है मुक्सर से बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान और रमनीत और निशु। और आपके संदेश हैं, आप हैं, आपने लिखा है संदेश, सीतामऊ रोड नाटाराम मंदसौर से दशरथ सेन और श्रीमती रानू सेन। आप हैं चुरू से संदीप सोनग्रा, प्राची सोनग्रा।

सोमल सोनग्रा, कार्तिक सोनग्रा, और ये संदेश मिला है रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, आपके साथ हैं प्रियंका, मन्नत और गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल। आपने लिखा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से, हीरामवाली फाजिलका से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, सरवण रिणवा, हंसराज भाटिया, मनीराम, रणजीत राम किरोड़ीवाल। और यह संदेश मिला है दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा की तरफ से, पीपर लोड सरगाम छत्तीसगढ़ से आपने लिखा है, सादुल शहर से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ और पूरा रेवाड़ परिवार। लखुवाली से हमें संदेश भेजते हैं मास्टर भंवर लाल, कृष्णा, विशाल, सौरभ, ममता, राजवाला, नव्या, लक्षिता, मोहम्मद रफीक संगरिया और मुकना राम साथ में हैं, महावीर लोहरा, बागपत उत्तर प्रदेश से लिखते हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया और इनके बहुत से साथी। आप हैं विद्या विद्यालय सागर, मध्य प्रदेश से लिखते हैं आप, चंद्रेश गोहर, श्रीमती वंदना गोहर, मयंक गोहर, तन्वी गोहर और जयपाल यादव। और ये संदेश है बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ एमपी से हमें लिखते हैं ब्रिजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा। यही गाना हम आपको भी सुनवाना चाहते हैं। आप हैं नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी का संदेश मिला है। बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अकरम अंसारी और अल्ताफ अंसारी। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोमन अदीबा और वसीम अंसारी। और आपके साथ हैं सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी, आफ्ताब अंसारी, महताब अंसारी, मेराज अंसारी, कल्लू और मल्लू अंसारी। और आप लिखते हैं 5 MD पतरोड़ा से मंगल जनागल राही, श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदु जनागल, सुनील जनागल और आपके बहुत से साथी। फ्रांसी से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, सौरभ कुमार डूडी और इनके बहुत से साथी। और यह संदेश हमें मिला है शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से, आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी की तरफ से। और आप हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिवार और इनके बहुत से साथी। और आप हैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। आप सभी साथियों को हम सुनवाना चाहते हैं आपकी पसंद का ये गाना, आइए सुनते हैं। दोस्तों ये आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी और सुलक्षणा पंडित की और ये खूबसूरत गाना है फांसी फिल्म से, आइए सुनें।

दोस्तों, आपने फांसी फिल्म का ये गाना सुना मोहम्मद रफ़ी और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ में। गाने में कहा कि लिखे तो होंगे खत मुझको पर, लेकिन आपने जो खत डाक में डाले हैं वो हम तक पहुंच चुके हैं। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू निहारिका और वंश बत्ता, गोलवाला से ब्रजलाल चौहान और नीरज कुमार चौहान की तरफ से खत मिला है। फाजिल्का रोड मलोट पंजाब से कुलवंत गिल, जसवंत गिल, रमनदीप गिल, बलजीत गिल, दिशा मौला और जगतार जग्गा। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक और शोभा नायक। बठिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग की तरफ से खत मिला है। आपके संदेश भी लगातार मिले हैं। आपको अगला गाना हम सुनवाते हैं। संदेश है आपका। बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, सक्रांति चौहान, रितेश कुमारी, रितेश कुमार, राजेश्वरी, उत्कर्ष चौहान। और ये संदेश मिला है पटेल नगर मलोड से डॉक्टर रमेश कुमार जाजूरिया, गीता रानी जाजूरिया, गगनदीप जाजूरिया, आरजू जाजूरिया और गुड्डू की तरफ से। बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित और तानिया नारंग। आप लिखते हैं बांडीवाला फाजिलका से ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया की तरफ से संदेश है। ये संदेश मिला है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। आपके साथ हैं दुबिहा नेबादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। और ये संदेश मिला है छत्तीसगढ़ सरगांव बाजार से नसीब मोहम्मद, हबीब मोहम्मद और इरफान मोहम्मद की तरफ से। नाभा पटियाला से सोमदत्त, केरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर। और आप हैं जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो। आपने लिखा है जनकपुरी सहारनपुर से। और ये संदेश मिला है हमें पवन कटारिया, शालू कटारिया।

या समीर कटारिया, आप सबकी तरफ से आपने लिखा है करणपुर से। चक चौथ है पीएसबी से कुलदीप सिंह, राजविंदर कौर, संदीप सिंह, जसकरण सिंह, हरदीप सिंह, मनराज विरक और आपके बहुत से साथी। धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से, निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू और आप लिखते हैं सांगली के जत शहर से, अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, गिरत हुजरे, रेहान शेख, आप हैं हिपर सोगा, औसा जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो शेख, बाबा शेख, सिमर शेख और करिश्मा शेख। और ये संदेश हमें मिल चुका है अहमदगढ़ मंडी पंजाब से, आप लिखते हैं मोहम्मद अनवर साबरी, मोहम्मद अनवर अंसारी। आपसे निवेदन है कि आप हिंदी में अगर संदेश लिखेंगे तो आपके नाम के उच्चारण में हमें आसानी होगी। मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना, आफिया, सना, समा, हिना, शकीला, जैस्मीन, रजिया सुल्तान और अख्तर अंसारी, सुराज, मोहम्मद जावेद अंसारी। और ये संदेश हमें प्राप्त हुआ है अगले गाने के लिए, समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता, श्रीमती अंकु राघव गुप्ता की तरफ से। आप हैं 15 PS से सरबजीत सिंह जोशन, सरबजीत कौर जोशन, गुरमन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से, आदर्श पाल सिंह जोशन और वैंकूवर कनाडा से रोबिन सिंह जोशन की तरफ से संदेश मिला है। गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासिन हाशमी, शमसुल कमर राही की तरफ से संदेश मिला है। और ये संदेश है पद्मा टॉकीज नेपा नगर से, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह और कुशल शाह की तरफ से, नीति शाह, सुरभि शाह और अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र शाह साथ में हैं। आपने पद्मा टॉकीज नेपा नगर से लिखा है ये संदेश। और बेहरवाला खुर्द सिरसा से बलवंत जाखड़, ममता जाखड़, प्रिया नैना जाखड़, हिमानी जाखड़, शिवम जाखड़ और ये संदेश है। मानपुर साबित मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान, शेख हबीबुर रहमान की तरफ से। और ये एक खत भी मिला है हमें आदर्श नगर मलोट से, राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शायना शर्मा और निवान शर्मा की तरफ से। आप सभी साथियों को हम सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत गाना, आइए सुने। ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में। ये फिल्म है परदेसी।

दोस्तों, आप सुन रहे थे परदेसी फिल्म का दो गाना, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में। अगले गाने की फरमाइश करने वाले हमारे साथियों के ख़त मिले हैं। गिद्दड़बाहा पंजाब से मनजीत तनेजा, परवीन तनेजा, पायल और बेबी हिनासा, और अलीका डब्बाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार सुनीता और कुलदीप गांधी, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप सिंह, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिटा बजाज और साहिल बजाज की तरफ से ये ख़त मिला है और संदेश आपके मिले हैं। अगला गाना हम आपको भी सुनवाना चाहेंगे, आप हैं हमारे साथी। ये संदेश है गांव कल्याण से, बठिंडा से, अमृतपाल सिंह रामगढ़िया, परमिंदर सचनूर और इनके साथियों की तरफ से। ये संदेश मिला है जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्वनी और विपुल कांबड़े की तरफ से। आप हैं विजय पाटिल, आपने लिखा है जालना महाराष्ट्र से, और आसाम से लिखते हैं हितेंद्र दास। आप हैं मनोज नामदेव, मयंक नामदेव, खुशबू नामदेव, साक्षी नामदेव, आपने ये संदेश हमें भेजा है शिवपुरी मध्य प्रदेश से। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल की तरफ से संदेश मिला है। नोहर हनुमानगढ़ से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु सुथार, पवन सुथार, शंकर बिहारी, शिव कुमार, सोनू मिस्त्री और महेंद्र सुथार, कालू मिस्त्री। फैफाना नोहर से जय सिंह धामू, धर्मेंद्र सुथार और मदन सुथार। बिरकाली से राम कुमार सुथार, दिलीप कामड़, बेगराज सियाग, कालू खान, नज़ाकत अली, गुट्टे खान, छगन सिंह तंवर और कालू मिस्त्री। और आप हैं पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे, भाविक ढींगरा और इनके बहुत से साथी, प्रेम जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वीरेंद्र, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन और अभिजीत। आपने लिखा है करणवीर हाउस, बुच्चो केंचिया, बठिंडा से। ये संदेश हमें मिला है आलोक कुमार खरे, अरुण कुमार खरे, अनिल कुमार खरे, आप लिखते हैं मंसूर नगर, शाहबाद, पिहानी, हरदोई से। और ये संदेश हमें मिला है खारिया ढाणी, जिला सिरसा से, सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू बिजारनिया और नव्या बिजारनिया की तरफ से। और ये संदेश है कासम कनोली कॉलोनी सनावत से, यूनुस खत्री,

फी खत्री, इद्रीश खत्री, नूरु मीना और इरफान मीना, काशिम मीना की तरफ से। यही गाना हम आपको भी सुनवाना चाहते हैं। आपने लिखा है बरसिंगी बुलढाणा महाराष्ट्र से, अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, शलोक दीपाली और इनके बहुत से साथी हैं। बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से हैं सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमेध दामोदर और आपके बहुत से साथी। ये संदेश मिला है रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा का, बुरज हनुमानगढ़। फाजिलका से आपका संदेश हमें मिला है। ये संदेश मिला है बहलोल नगर से हरी शहरी, जगतार जहरी, सुशील डेलू और राकेश चाहर की तरफ से। और ये संदेश मिला है आपको, हम अगला गाना सुनवाते हैं। आप हैं नोहर हनुमानगढ़ से, श्रीमती मधुलता पुरोहित, डॉक्टर राकेश शर्मा और डॉक्टर प्रांजल शर्मा। आप सभी साथी सुने आपकी पसंद का ये खूबसूरत दो गाना आपके लिए।

दोस्तों, आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में ये खूबसूरत दो गाना, और ये फिल्म थी टैक्सी ड्राइवर। अगले गाने की फरमाइश के लिए हमें ख़त मिले हैं। आप हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से, द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झवेंद्र कुमार वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से, रोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रेयांश ठाकुर। और आपने ये लिखा है फाजिल्का रोड मलोट पंजाब से, कुलवंत गिल, जसवंत गिल, रमनदीप गिल, बलजीत गिल, दिशा मोला और जगतार जग्गा की तरफ से ख़त मिला है। और आपके संदेश भी हमें लगातार मिल रहे हैं। आप हैं कवाई सालपुरा 12 से, सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव। और आपने लिखा है लोकू कॉलोनी लोहारू से, बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार चिंडालिया, बरखा, योगेश कुमार, योगेंद्र कुमार चिंडालिया, नरेंद्र कुमार चिंडालिया। और आपके बहुत से साथी हैं, और ये संदेश हमें मिले हैं आपके। आप हैं संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मनत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगा वाला चौक गोराया से आपने संदेश किया है। और महाराष्ट्र से है महेंद्र मोदी और मोहम्मद नईम अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार। आपने लिखा है ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से। और आप हैं हमारे साथी जैन मंदिर वाली गली कुरावली से, राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। और आप हैं नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, श्रीमती पिंकी साहनी, डॉक्टर अफजल मलिक और संदीप मक्कड़, रामगढ़ कैंट झारखंड से निप्पी साहनी, श्रीमती सुनीता साहनी। यह संदेश हमें मिला है अमरगढ़ सादुल शहर से, कुलवंत मान, लखविंदर कौर मान, खुशप्रीत कौर मान, गुरनूर मान, हरविंदर मान, कुलविंदर कौर मान की तरफ से। और आप हमारे साथी हैं रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, आपका नाम हमने पहले ले लिया है, आपका भी बहुत स्वागत है आपके इस प्रोग्राम में। आप हैं नलोई तहसील सिवानी मंडी जिला हिसार से, सज्जन कुमार जांगड़ा, राजबाला, नवदीप, नवीन, मनदीप, प्रियंका, सपना, नीतू और वेदांश जांगड़ा है। और आप हैं सालर पहलगाम कश्मीर से, पीरजादा मिराज, पीरजादा मिराजुद्दीन, नाजम नाजमुद्दीन और केशरुद्दीन। आपसे निवेदन है हिंदी में अगर आप नाम लिखेंगे तो आपका उच्चारण हम सही कर पाएंगे। और ये हमारे साथी हैं मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा। आपने लिखा है पदमपुर श्रीगंगानगर से, और रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू। और ये संदेश मिला है मुंगेर भागलपुर बिहार से, कुमार रामदेव पटेल, सुनीता देवी पटेल, कुमार अमित पटेल, पुष्पा देवी पटेल और आप सब की तरफ से। और ये संदेश है, अगला गाना हम आपको भी सुनवाना चाहते हैं, पायला कला बालोतरा से, मोहनलाल प्रजापत, माणक उषा, बाला देवी प्रजापत। आप सभी साथियों को हम सुनवाते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में आपके लिए निशान फिल्म का ये खूबसूरत दो गाना, आइए सुनें।

दोस्तों आप सुन रहे थे निशान फिल्म का दुगाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। अगले गाने की फरमाइश के लिए हमें संदेश मिले हैं, आप हमारे साथी हैं बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव, शौर्य नामदेव। आप हैं जाखोद से शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा खटक। न्योला रामपुरा से सुरेंद्र डीडन, शकीला डीडन, संदीप अनवर, अक्कू बावरा। और आप हैं सुनील डाल, सोहन लाल जांगीड, परवीन जी सरावगी, नरसी सिंवर। आपने लिखा है रायसिंह नगर से और ये संदेश हमें मिला है प्रेम सहारण मोनिका और मनीष सहारण की तरफ से। और खारिया जिला सिरसा से प्रताप जनागल, इंदिरा, मुकेश, दिनेश, अंशु, बलदेव कटारिया और आपके बहुत से साथी। कबीर रेडियो श्रोता संघ, डांडी लोहारा, बालोद छत्तीसगढ़ से देव शंकर तामूरिया, अजय देव तामूरिया और मास्टर अल कबीर। आप लिखते हैं केसरी सिंहपुर से बिल्लू सूद, सुनीता सूद, विश्वजीत, आशीष और आपके परिवार के लोग। आप हैं आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शायना शर्मा, निवान शर्मा। ये संदेश हमें मिला है मुरादगढ़ करनाल से रमेश कंबोज, पिंकी वंश और भुवेश कुमार कंबोज की तरफ से। गंज डुंडवारा से शमशुल कमर राही, शाहीन और फातिमा।

यही गाना हम आपको भी सुनवाना चाहते हैं, फाजिल का पंजाब से, भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा, वाणी खेड़ा, आरबी खेड़ा, जीवन सिंह बूक और खेड़ा परिवार। और आप हमारे साथी हैं, संगरिया से लिखते हैं गोवर्धन दास, बद्राक्षना देवी, योगेश, मनीष, कन्हैया लाल समरानी, पंडित गुलाब शर्मा और पूरे परिवार के लोग साथ में, सुरेंद्र कुमार नंदा, सूरज कुमार नंदा और अंजनी नंदा। और ये संदेश हमें मिला है मोती नगर नई दिल्ली से, आपने लिखा है गौरव मानसी और अनिल अरोड़ा। ये संदेश है दतरंगी भाटापारा से, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा की तरफ से, गांव अरायण से बनवारीलाल जयपाल, बिमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम जयपाल और इनके परिवार के लोग। और ये संदेश हमें मिला है हनुमानगढ़ टाउन से, सुल्तान सिंह तरड़, कृष्ण मुकेश रामचंद्र, कपिल देव तरड़ और कांता चौधरी और इनके परिवार के लोग। आप सभी साथी सुने अपनी पसंद का ये खूबसूरत गाना, आइए सुनते हैं।

आप सुन रहे थे रफ्तार फिल्म का ये दो गाना, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में। और अब कार्यक्रम के आखिर में हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत दो गाना सुनवाना चाहते हैं, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में। हमें ख़त मिले हैं 8S ढाणी से, बाबूलाल सुभाष जाजड़िया, बाबा मंगलनाथ, बाबा लालचंद, कृष्ण कुमार चांवरिया। और आपने लिखा है केसरी सिंहपुर से, राजकुमार ठठई, कमल ठठई, मगनलाल सोमानी, दौलत राम वर्मा, बिंदा टेलर, बिल्लू सूद, सुभाष कुक्कड़, हीरालाल गजरा, तेज भान कुक्कड़, सुरेश कुक्कड़, ओम प्रकाश आहूजा, अवतार फूल, अशोक मित्तल और ताराचंद दायमा की तरफ से। 17F केसरी सिंहपुर से, पृथ्वी राम, जसनदीप, नंदराम, ताराचंद, तीरथ सिंह, जगमेल सिंह और मटीली राठान से हमें लिखते हैं जीत सिंह, दिलबाग सिंह, 2V धनूर से ठाकर, रघुवीर सिंह, अजय पाल सिंह, शक्ति सिंह, गुरदीप शेरगिल, चंद सिंह सरा और धनूर से पुरुषोत्तम खन्ना। आप हैं बलवंत राम, हंसनाथ, भालू राम, मदन काठफाल, धर्मपाल चोपड़ा, विद्या देवी चोपड़ा और रुद्र बाबा। आपने लिखा है 7S कीकर वाली ढाणी से, और सन्नी शिषपाल और रोशनी देवी आप हैं 32BB से। और हमें संदेश और भी मिले हैं, कोशिश करते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के नाम शामिल कर पाएँ आखिरी गाने के साथ। और ये संदेश हमें मिला है इसी गाने के लिए, हम आपको भी शामिल करते हैं। आप हैं कालका से, शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, आपका खत भी आया था। TD मल्होत्रा चंडीगढ़ से, आपका खत हमने शामिल कर लिया। और ये संदेश हमें मिला है जलालाबाद वेस्ट से, सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा की तरफ से। मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नशरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कोसर। आपने मोहल्ला हलवायान शेरकोट बिजनौर से लिखा है। ये संदेश हमें मिला है बुंदेलखंड यूपी महोबा से, जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागनी, रिया, रेनू, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव, चंद्रेश गोवर और सुनील पाठक की तरफ से। आप हैं गोवर्धन कॉलोनी, शाहदरा दिल्ली से, तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, चंडीगढ़ से आपके साथ हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु और रिधान खुराना। ये संदेश मिला है गांधी चौक बाड़मेर से, बबलेश पंवार, डेनी पंवार, मनीष पंवार और आपके साथियों की तरफ से। रामदेवरा से लिखते हैं दिनेश चौहान, डांगरी से बाबू राम जयपाल और खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा की तरफ से संदेश मिला है। रावर करनाल से हमारे साथी हैं ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया और ये संदेश है जोरड़ा वाली ढाणी बहलोल नगर से, नरेंद्र झोरड़, भीमसेन झोरड़, लोकेश झोरड़, गौरव झोरड़, पुनीता झोरड़ और आरवी झोरड़ की तरफ से। और यवतमाल महाराष्ट्र से लिखते हैं लक्ष्मण राम लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, स्वप्निल लोखंडे और रक्षता लोखंडे की तरफ से खत मिला है, संदेश मिला है। और 7DBN भादुवाली से, टेक चंद चारण, संतोष देवी, सत्यप्रिय चारण, जय सिंह चारण, योगेश श्री और रणजीत सिंह सुथार, गुरुदेव सिंह भगाणिया, हरनेक सिंह भगाणिया, कृष्ण लाल राहड़, 63LNP से इनके साथ हैं। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराज जहां, आप लिखते हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। और

0: संदेश है हिंगोली महाराष्ट्र से मारुत राव पांचाल गजानंद नागरे की तरफ से। इसी गाने को पसंद करते हैं हमारे साथी मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गुहानकर, राही श्रीमती सरिता गुहानकर, प्रिंस एकांश गुहानकर, परणीता गुहानकर, सिद्धांत गुहानकर, अर्जुन गुहानकर और इनके साथ है टुक टुक। और भादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गुहानकर, सुमित गुहानकर, कुमारी ध्वनि गुहानकर, परी। और यह संदेश जो है वो हमें मिला है कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव और आप हैं संचित कुमार, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख कुमार, सरवद देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख। और यह संदेश मिला है डॉक्टर सुरेश चौहान, उर्वशी चौहान और हर्ष चौहान और भाविनी चौहान की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हमें संदेश किया है आपने। बाटावाड़ा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर चावल जी, शिव कुमार शर्मा, लोकेश बेबी वेदवी, हसनिका और आपके बहुत से साथी। और आप हैं खेड़की बिजनौर से दिव्यांशु यादव और आशुतोष यादव, विनायक जी, कार्तिक जी, वसुंधरा नंदिनी, दिग्दर्शन गौड़, हर्षवर्धन यादव और बहुत से साथी। और ये संदेश हमें मिला है सूरतगढ़ से भूपेंद्र मिशन की तरफ से और बेबी जानविका और परवजीत कौर की तरफ से। आप सभी साथियों को सुनवाते हैं ये आखिरी गाना, आइए सुने। फिल्म है बाबुल की गलियां।
1: चीज मांगते हैं
2: क्या?

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतमाला। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 12 बज चुके हैं, सुनिए कार्यक्रम विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद आप सुनिएगा 12:05 पर कार्यक्रम सैनिकों के लिए चंद खूबसूरत गीतों के साथ। सुगम संगीत में 12:30 पर आप सुनिएगा गुलाम अली की गजलें। 12:50 पर खेत खलिहान में जानकारी का विषय होगा अनाज भंडारण में सावधानियां। और 1 बजे आप सुना करते हैं आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में समाचार। 1:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम घर आंगन। घर आंगन कार्यक्रम पेश करेंगी किरण शर्मा और जानकारी के विषय रहेंगे बच्चों की पढ़ाई में उपयोग, और साथ में जानकारी होगी रहना है फिट तो खाएं सोच समझ कर, और राजस्थानी भोजन लापसी के बारे में जानकारी दी जाएगी। 2 बजे आप सुना करते हैं मिड डे न्यूज़।

और 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 2:23 पर आप सुनिएगा फिल्म संगीत, और 3 बजे आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू सर्विस के कार्यक्रम रिले होंगे।

शाम 5 बजे आप सुनिएगा कार्यक्रम युवा वाणी। जानकारी के विषय रहेंगे मेक इन इंडिया, अहिंसा, प्रमो धर्म, समय प्रबंधन का महत्व, सकारात्मक सोच और साथ ही आज के इतिहास के बारे में जानकारी के साथ चंद खूबसूरत गाने आप सुनेंगे। 6 बजे होगा कार्यक्रम विवरण और 6:05 पर आप सुना करते हैं सराइकी। 6:30 पर हिंदी में समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी, 6:45 पर राजस्थानी में समाचार हम अपने जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। सात बजे आप सुनिएगा कार्यक्रम चौपाल में आपकी फरमाइश के लोकगीत और भजन गीतारों गजरों के तहत, साथ ही बाजार भाव और मौसम की जानकारी दी जाएगी। 7:45 पर कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत। 8 बजे फिल्म संगीत का ही कार्यक्रम होगा, एक ही फिल्म से जानकारी और गीतों के साथ। 8:30 पर स्पोर्ट्स कैन, 8:45 पर समाचार संध्या और 9 बजे न्यूज़ 8:09 आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

9:15 पर आप सुनिएगा सुगम संगीत का कार्यक्रम चंद खूबसूरत गजलों के साथ, और 9:30 पर कार्यक्रम होगा मिट्टी दी खुशबू। यह पंजाबी साप्ताहिक कार्यक्रम पेश करेंगे जसवीर सिंह। 10:30 पर आप सुनिएगा फिल्म संगीत, और 11 बजे हिंदी में समाचार, 11:05 पर न्यूज़ इन इंग्लिश आकाशवाणी दिल्ली से, और 11:10 पर सभा समाप्ति उद्घोषणा होगी। कार्यक्रम विवरण अब संपन्न हुआ।

सैनिकों के लिए कार्यक्रम सुनने वाले सभी फौजी भाइयों और सभी दोस्तों को नमस्कार। नरेश वर्मा की तरफ से आपको सुनवाते हैं 80 और 90 के दशक के खूबसूरत गाने।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे यादों का मौसम फिल्म का ये गाना अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। इस गाने को लिखा सलाउद्दीन परवेज ने और संगीत था आनंद मिलिंद का। और ये है कार्यक्रम की अगली पेशकश। साथी फिल्म का ये गाना सुनिए, आवाज़ एक बार फिर से अनुराधा पौडवाल की। नवाब आरजू के बोल हैं, संगीत नदीम श्रवण का।

श्रोताओं, आपने साथी फिल्म का ये गाना सुना, अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। सैनिकों के लिए कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं 80-90 दशक के खूबसूरत गाने फीमेल आवाज़ों में। और अगला गाना हम आपको सुनवाना चाहते हैं अलका याग्निक की आवाज़ में। ये फिल्म है सूर्या, आइए सुनते हैं। ये गाना संतोष आनंद ने लिखा है, ये संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, सुनिए।

श्रोताओं, आपने सूर्या फिल्म का ये गाना सुना अलका याग्निक की आवाज़ में, और अगला गाना आप सुने साधना सरगम की आवाज़ में। आइए सुनते हैं। ये फिल्म है धर्म युद्ध। कुलवंत जानी के बोल हैं और ये संगीत राजेश रोशन का।

आप सुन रहे हैं नगीना फिल्म का ये गाना, आनंद बख्शी ने गाना लिखा है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और आवाज़ कविता कृष्ण मूर्ति की है। आप सुनते रहिए ये गाना और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 12:30 हो चुके हैं। कार्यक्रम सुने सुगम संगीत।

सुगम संगीत में हमारे आज के फनकार हैं गायक गुलाम अली। गज़ल सुनिए आप, आगा बिस्मिल की लिखी हुई। कलाम यूं है कि महफिल में बार बार किसी पर नज़र गई, महफिल में बार बार किसी पर नज़र गई, हमने लाख बचाई मगर उधर गई।

0: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 12:50 हो चुके हैं। कार्यक्रम सुने खेत खलिहान। खेत खलिहान में आज की जानकारी का विषय है अनाज भंडारण में सावधानियां। आइए सुनते हैं खेत खलिहान।
1: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों बात करें आप आज खेती पाती का सागे सागे, क्योंकि जी अब आप हाड़ी की जगह फसल है वह सामी है दानिया जो कहे भी आप निकाल लिया और खलिहान शू आप घरे ले आ गए भी नाक लिया। लेकिन बी टाइम क्या है कि आप थोड़ा सो जल्दबाजी गमा किया है आप जो दाना हा या फिर आप जो अनाज हो जो आप खलिहान छूँ खेत छूँ सीधो लिया गए साधारण रूप से घर गमा या फिर कोई साड़ गमा या फिर आंगना गमा आप ढेरी करती। लेकिन अब मौके पर अपन ई बात को भी ध्यान रखना है कि लारले दिना से भी आप देखियो यो कि छंटा छिड़को भी हो मौसम का नमी जकी है वह भी देखने मिली। तो ई चूंकि है का आप जो अनाज है वो खराब हो सके बिगो जो भंडारण है वो अपन अच्छी तरीका से करना जरूरी है, क्योंकि एक दो दिन की बात है कौन नहीं अपन पूरे साल भर के लिए खेती जकी है और जो अनाज है वो अपन ने संभाल के रखना है और इनके अलावा जो को खाद्यान्न है वो तो आप संभाला ही संभाला। जका किसान भाई लोग है बीज के लिए जो को अनाज रखेगा तो बने भी ई मौका भंडारित जो को अनाज है बिंग जकी जानकारियां हैं भी अब रखनी जरूरी है। और सबसे पहले तो आई है कि अपन जो को अनाज घरे ले आगे नाख्यो है चाहे वो डिगली गमा पड़ियो है या फिर कोई और कोई बर्तन में घर रखे है तो जरूरी बात है कि बिंग वहाँ जकी नमी है वह अपन ने जाँच परख करनी जरूरी है, क्योंकि शुरू शुरू में आप ले गए आवा अनाज और वो थोड़ा सा कच्चो पिल्लो हरियो हुए और वो जागे अगर सीधो तौर पर आप बिना टंकी गमा बोरी गमा भरते हो तो भी वहाँ इलियाँ है खपरियो जो को है वो भी पड़ने की संभावना रहे। तो इन वास्ते अनाज भंडारित करने से पहले आप बिंगो जो को अच्छी तरीके से जाँच परख करके बिंग भंडारण जो को है वो आप बढ़िया तरीके से करा। अब भंडारण के लिए अपन के बात करनी है जहाँ के काम करना है तो सबसे पहले तो आ है कि बिंग में नमी जकी है बा चेक करनी है 10-12 सैकड़ा तक नमी जकी है बा आपने होनी चाहिए बिया। तो विशेषज्ञ जो कहे भी आ बात बताया कि 10-12 सैकड़ा अगर नमी है तो वो अनाज जो है वो साल भर के लिए आप बिना सुरक्षित तरीके से रख सकें। और इनको जो जाँच पर करने को तरीको वो है कि आप दो चार एक दाना जो कहे भी झाड़ के नीचे ले गए हर बाना फोड़ के देख लें कटके की आवाज़ आवे तो यह समझियो कि अनाज जो है वो अपनों सुक्कू है भंडारित के लायक है। जी यह लगे कि कटके की आवाज़ की अब ना ला रही है तो अपने एक बार भी अनाज ने धूप लगानी बिन सुकाना जरूरी है और जट्ठे भी आप सुखावा नहीं तो बस

ने सुरक्षित तरीके से राख का और इंगो जो को जांच पर करने को तरीको वो है कि आप दो चार एक दाना जो कहे भी झाड़ के नीचे ले गए हरबाना फोड़ के देख ले कटके की आवाज आवे तो यह समझे यू का अनाज को है वो अपनो सुक्कू है भंडारित के लायक है। जी ये लगे कि कटके की आवाज की है बन ना ला रही है तो अपने एक बार भी अनाज ने धूप लगानी बिन सुकानो जरूरी है और जट्ठे भी आप सुखावा नहीं तो बस जगह जकी है साफ सुथरी होनी जरूरी है। कई बार यहाँ हुआ है कि जट्ठा पानी पुनी ढुलेड़ो हुआ है या आसा पास कोई घड़िया प्रिंट हो जो है या फिर टूंटी वाली कोई आसा पास जगह है भट्ठा पा अनाज जो है वो छिदो पतलो करके नाक देवा पदर कर देवा तो भी सुखिया का नमी भी आज का और बाद में फिर दिमक है या फिर कोई खपरी है या फिर कोई और है बे पड़ने की संभावना रहे तो अपन है बोरिया में अगर अनाज भंडारित करना है तो बोरियां ना पा उपचारित करनी जरूरी है। आप बात ये भी जानो कि बोरियां जकी है बे पिछला साल की पड़ी है तो बने अब अच्छी तरह से धोनी जरूरी है फिर बने धूमित करनी जरूरी है और बढ़िया तरीके से धूमित करके और ब्यू बाद बने सुखा देवा और सुखाने के बाद में बढ़िया तकड़ी धूप लगा देवा तो बगवा कोई छोटी मोटी इली है कोई कीटाणु विषाणु जो कह नष्ट हो जाएगा और ब्यू बाद में जब अनाज को आप सुखा रखे है भी अनाज ना पा भराई बोरियां गां कर सका। लेकिन जको अनाज आप बारह सुखाए है तो बिना एकदम ही आप बोरिया में कौन नाखनो नहीं कौन भरनो नहीं क्योंकि तातो जो को अनाज है वो भी खराब हो सके तो वो एक बार थोड़ा सा ठंड हो जाए भी बाद में अपन बोरी गमा भी भर सका। और जका भाई लोग बोरिया में भर चुके हैं या फिर भरन ला रहे हैं बनाई बात कैसे का जट्ठा बोरी जचान ला रहे हो जका गोदाम गमा जकी साल गमा जचान ला रहे हो तो बाद जकी ढांग आप लगा ला रहे हैं बस जमीन से कोई दो एक डेढ़ एक फुट ऊपर होनी जरूरी है ना नीचे कोई बल बत्ता जगह है कोई फिर ईंट आंट लगा गया ऊंचो रखना जरूरी है कई बार हो जाए कि पानी धानी जो है वो बोरियां नीचे उड़ जाए फिर एक बोरी अगर निचली खराब हुई तो ऊपरली जकी बोरियां हैं बेस्वाभाविक सी बात है कि अनाज जो है वो खराब हो तो जट्ठा भंडारित करा बट्ठे आपने जकी भूमि है बीच ऊंची रखा और जका साल गमा जका कमरा गमा जट्ठा भंडार ग्रह में आप कर ला रहे हैं तो बिन्ने भी आप उपचारित करना जरूरी है और बढ़िया तरीके से उपचारित करके फिर ही आप बीज गंगा माँ देख लें कोई चूहेगी अगर कोई बिल है तो वो भी आप बंद करना जरूरी है या फिर कोई बारह कोई खिड़की है मोरो है या फिर कोई सुराख है कई बार राखेड़ हुए टूट फूट है तो बन आप सुधार करना जरूरी है बिंगू जो को बढ़िया तरीके से लिपाई लुपाई करके यार फिर आप बैठे बीज जगह में अनाज जो है वो भंडारित करा। और अगर भाई लोग कच्चे कमरा गमा साल गमा अगर भंडारित कर ला रहे हैं तो बिना अच्छे तरीके से गारा से नीप गए और भी वहाँ चूना कली कर गए जिसकी आप कड़ी करता पेल पोत या फिर आप धोड़क भी करता धोलती माटी ले आ गए तो बा कर गए दो चार दिन बाद गमा आप बीज जगह पर अनाज को वो भंडारित कर सका। लेकिन आजकल की यह है कि आधुनिक टाइम है और जमानों जो को है वो चालना ला रहे हैं कि ज़्यादा खेचल कौन करे नहीं कि बोरियां जो की है वे धोनी पड़े या फिर बने सुकानी पड़े बने धूमित करनी पड़े तो आजकल क्या है कि आज बे लो वाली जो की टंकियां हैं बे लिया रखी है ना कई सालों से उबा में भंडारित कर दे 8-10 जो को कुंटल अनाज है वो घर भर ताऊ जो को है वो रख ले है। लेकिन जका भाई लोग अपने टंकियां का माँ कोई अपने कोई भांडो अलग से है बिंग अगर भंडारित कर ला रहे हैं तो बन है भी आप बढ़िया तरीके से साफ करना जरूरी है। देखे करो नीचे कई बार वो जो को कड़ीचन सो जमजे है प्राणी जी की कणक है प्राणों जो को अनाज है या फिर बाजरो है चना जक है जो है बे नीचे जमजे तो बिना अच्छी तरह खुर्च गए और बिना अच्छी तरह से धोगे और साफ सुथरो कर गए और बिना भी आप कई देर तक धूप में रखा ताकि बिंगमा भी इली है खपरियो है या फिर कोई और कोई विषाणु कीटाणु जक है बे है तो बे खत्म हो जाए। और इंग सगे सगे अपने एक बात को ध्यान और रखना है कि जको अनाज आप खाद्यान्न के रूप में खाण खातर रख रखे है भी अनाज गमा कि एक आप नीम का जका पत्ता है नीमगी जकी निमोलियाँ है बेबी नाक्स का क्योंकि कोई टाइम गमा तो दूसरा जगह रासायनिक तरीका अभी अपनाता लेकिन अब की है कि अपना जगह विशेषज्ञ है जाने जान जगह लोग है बे आबाद के वह है रासायनिक जगह तरीका अपना से तो भी शुक्रिया का अनाज को है वो दूषित हो जाएगा और कई तरीके की बीमारियाँ हैं बेबी लागने की संभावना रहे तो आप नीमगी जकी पत्तियाँ हैं बेबी आप रेड्स का निमोलियाँ जकी है बेबी आप रेड्स का। और इनके अलावा एक तरीको और भी है अपन यह लगे है कि मौसम नमी है मौसम गमा या फिर कोई मौसम जो को है वो बरसात को है या फिर छोटे मोटे कोई छांटा छिड़को हुए है तो जी दो चार दिन बाद में या फिर एक दो दिन बाद में धूप निकले साफ सुथरी तो बढ़िया तरीके से जिगियाँ भर गए और एक बार आप अनाज ने बारह निकाल गए और बिने सुखा लेवा और बी बाद में फिर भी अनाज ने आप ठंडो करके और फिर भंडारित कर देवा। और सागे सागे अपन ध्यान रखनो है कि जब के आप सालगा में भंडारित कर ला रहे हाँ तो बिंग आगे बारनो होना जरूरी है कई बार देखे कर छोटा मोटा जो टबरिया है बे जागे पानी पूनी ढोल देवे या फिर बोरियां जकी है बे या फिर कोई पशु जो को है वो आपनों जागे बोरियां मुँह मार देवे तो बेसू क्या है कि अनाज जो अब नीचे खिंडनों शुरू हो जाए तो वो भी अपने नुकसान ही है तो इन बात को भी ध्यान रखना है जट्ठे भी आप भंडारित करा तो बिंग जकी सुराख है मोरियां

0: कि अबे एक बार बंद कर देवा, लेकिन दिन में आप एक दो बार भी खोल देवा ताकि हवा ला जाए, हवा को जो आदान प्रदान जो है वो होन तो रहे। तो बीच के अगर नमी अगर आपने कणगमा अपनी जी की साड़ है, बिंगे जी की कंधा है, दीवारें हैं, बंग अंदर है, तो थोड़ी बहुत हवा ला जाए तो बा नमी जी की है बा खत्म हो जाए, अपना जो अनाज है वो सुरक्षित तरीके से भंडारित हो जाए। और जब भी आप अनाज जो है वो बाहर निकाला या फिर कोई जो पिसाण खातर ले गया बाहर लेके जाना है, चक्की पर लेके जाना है, तो बिने आपा एक बार अच्छी तरीके से छांटा छिड़को कर गए और फिर बिना साफ सुथरों कर गए और फिर आप बिन पिसा सका बिंगो खाद्यान्न रूप में आप बिंगो प्रयोग कर सका। लेकिन सगे सगे बात को इन बात को भी ध्यान रखना है कि जक्का भाई लोग बीज के लिए खाद्यान्न रख रखे है, अपने अनाज रख रखे है, तो बिने भी उपचारित करना जरूरी है, बिना पर रासायनिक तरीके से भी उपचारित कर सका, या फिर जक्का अपने कल्चर है आपां बीशु भी उपचारित कर सकां। तो कल्चर से अगर आप उपचारित करांगे तो बीशु की है कि आपने जो को बीज है कोई भी फसल को बीज आप आग रखे है, चाहे बाजरी को है, चाहे अनाज दूसरों जियाँ कणक है या फिर छोला है, चना जका है, तो बिना भी आप उपचारित करके बढ़िया तरीके से धूमित करके और आप बोरियां अंदर या फिर भंडारित आप कर लेवा ताकि अगला साल आपने बढ़िया तरीके से जो को बीज है वो मिल जाए। लेकिन भंडारित करने से पहला जो को बीज है फिर साफ सुथरों करनो राखनो जरूरी है, सा बीमा कंकड़ जका है, बीमा कचरों जो को है बे निकाल गए और फिर आप भंडारित करा। तो आप बताऊँ पूरा ध्यान रखना है सा बना भू खेत का नहीं चलूँ। राम राम सा, राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेत खलिहान। आज के खेत खलिहान का विषय था अनाज भंडारण में सावधानियां। कार्यक्रम पेश किया रमेश चावरिया ने। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 1 बजने वाला है अब जयपुर से समाचार होंगे।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के तहत हैदराबाद में आज चौथी इन्वेस्टर मीट आयोजित की जा रही है। राज्य में कृषि, बागवानी और एग्री बिजनेस के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए ये मीट रखी गई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का इसमें भाग लेने का कार्यक्रम है। 23 मई से जयपुर में होने वाली ग्राम 2026 के लिए दिल्ली, बेंगलुरु और अहमदाबाद के बाद ये चौथी प्रमुख इन्वेस्टर मीट है। इसमें राजस्थान को एग्री हब बनाने और खेती के लिए नई तकनीक लाने सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जयपुर सहित प्रदेश के अस्पतालों में पर्याप्त अग्निशमन सुरक्षा के बारे में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। कार्यवाहक सीजी संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस विपिन गुप्ता की खंडपीठ ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए। अदालत ने कहा है कि अगर किसी अस्पताल में समुचित अग्निशमन प्रणाली नहीं पाई जाती है तो संबंधित सीएमएचओ की ओर से तय टाइमलाइन के साथ उस अस्पताल को नोटिस जारी किया जाए। अदालत ने कहा कि प्रदेश के हर अस्पताल में नियमित रूप से फायर ड्रिल आयोजित की जानी चाहिए। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने की प्रक्रिया इस साल अगस्त महीने में शुरू हो जाएगी। नई दिल्ली में कल एक समीक्षा बैठक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 40 साल पुरानी यात्री आरक्षण प्रणाली को नई प्रणाली में बदलने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस दौरान यात्रियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2002 में इंटरनेट आधारित टिकट सेवा शुरू होने के बाद से लगातार डिजिटल परिवर्तन को अपनाया है। इसके तहत पिछले साल जुलाई में रेल वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। रेल वन ऐप में अब AI आधारित कन्फर्मेशन की संभावना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। ये नई सुविधा इस साल की शुरुआत से ही लागू की गई है। इसे लोगों ने काफी पसंद किया है। इस पर वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के अनुमान की सटीकता पहले के 53% से बढ़कर अब 94% तक हो गई है। इंडिया AI और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए एक समझौता किया है। नई दिल्ली में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इलेक्ट्रॉनिकी और

0: सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी एआई के जिम्मेदार और व्यापक प्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा बेहतर बनाने के लिए की गई है। मंत्रालय ने कहा कि इस सहयोग के तहत दोनों संस्थान एआई समाधान के लिए अपनी क्षमताओं के साथ साथ परिषद की चिकित्सा अनुसंधान विशेषज्ञता का लाभ लेंगे। केंद्र सरकार ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के एक वीडियो को फर्जी बताया है। इस वीडियो में उन्हें ये कहते हुए दिखाया गया है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ संघर्ष में 4 राफेल विमान खो दिए। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक यूनिट ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो एआई से बनाया गया एक डीप फेक है और इसे पाकिस्तान समर्थित सोशल मीडिया अकाउंट की ओर से गलत सूचना फैलाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। सरकार ने नागरिकों से इस तरह की सामग्री पर विश्वास नहीं करने और हमेशा सरकारी स्रोतों से इसकी पुष्टि करने का आग्रह किया है। इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत कल लगाई जाएगी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सभी अदालतों, उपभोक्ता मंचों और राजस्व न्यायालयों में लोक अदालत लगेगी। इनमें आपसी सहमति से ट्रैफिक चालान, मोटरयान दुर्घटना, चेक बाउंस, बैंक ऋण और घरेलू विवादों सहित अन्य राजीनामा योग्य मामलों का निपटारा किया जाएगा। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले जागरूकता कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है। इसके लिए प्रदेश में भी योग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोटपुतली बहरोड जिले के पावटा के उच्च माध्यमिक विद्यालय में योग शिविर रखा गया। इसमें विद्यार्थियों को विभिन्न आसनों का अभ्यास करवाया गया, साथ ही उन्हें दिनचर्या में नियमित रूप से योग को शामिल करने के लिए प्रेरित किया गया। आज विश्व रेड क्रॉस दिवस है। इस साल की थीम मानवता में एकता रखी गई है। रेड क्रॉस एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो युद्ध और हर आपदा के समय लोगों की मदद के लिए तैयार रहती है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्स पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। दोपहर के 1:05 हो चुके हैं। कार्यक्रम सुने घर आंगन। आज का कार्यक्रम पेश कर रही हैं किरण शर्मा। आइए सुनते हैं।

बिरुआ रोपो छावरा, कै बिरुआ रोपो छावरा, रूख करो तैयार, नीतर मिलसी जगत ने किया सुखत ब्यार। कै बिरुओ दादो रोपसी, पूत बैठ सी छाव, मीठा फल पोता चखे, सुर्ग बने लागाम, सुर्ग बने लागाम। बहनो आ लाइना साग गई थार सबको घर आंगन प्रोग्राम में स्वागत है और थाने सब ने भाई किरना गा हिवड़ेस यूँ मोकड़ा मोकड़ा राम राम है। तो बहनो देखो जिके रुखा की बात होने लाग रही है, ये रुख आजकल के है कि थोड़ा ही बच्चे है नी ई कहानी। तो देखो अब की बार गर्मी कितनी हुई है, अब देखो थोड़ा बहुत छांटा छिड़को सोयो भी कारण थोड़ी बहुत ठंड तो है, पर बाहर जावा जन वो भीतो ही तपतो लग गए, बस रात ने नी सोए बाद थोड़ा सो झांझर काल स्टेम भी टेम थोड़ा सो पालो उस रहे नी पालो लागन लाग जाए। बाकी तो देखो अब गर्मी तो दिनों दिन पड़ी सी क्योंकि देखो जेठ गुमिनो चलन लाग रहा है नी। तो देखो अब के है कि आप सारा ने एक पढ़ लेनो चाहिए इन गर्मी देखता, क्योंकि देखो आ धरती अपनी है और आप धरती पर रहा तो आपनों फर्ज बने कि आप तो आपनों जीवन सुखी अच्छी तरह बिता लियो, पर जिका अपनी आने वाली पीढ़ियाँ है, अपना जिका टाबरिया है नी, जिका अपना पोता पड़पोता उसी

बे के है, बे भी अपने दाई के है, पेड़ पौधा देख पावे। जे इन त्रे रहे हो तो काल ने देखो जिका ये पेड़ है ये किताबां में माई या फिर फोना माई वीडियो माई आम ही दिखण ने मिल सी, नहीं तो ये पेड़ धरती पर देखण ने कौन मिलेगा। तो आपा सारा ने वो पढ़ लेना चाहिए कि भी आपा जिको भी कोई जिया टाबर को जन्मदिन हुए, कोई विशेष दिन हुए अपने जीवन में, तो 20 दिन पर आपा की है कि एक पेड़ जरूर लगावा। और देखो अब तो आगे ने कि ऐसा होना जी तो भीमा पेड़ पूड़ लगाएड़ा घड़ा ही चोखा फड़ा है नी, तो आपा सगड़ा ने चाहिए कि एक एक पेड़ तो अपने हाथ से जरूर लगाना चाहिए। भले बुकिंग है नाम कोई हो, और जन पेड़ा की बात चालन लाग रही है देखो, नहीं तो ये पेड़ कट जी तो आपा की है कि नी जिका पेड़ा की छाया ने तरस चंगा है नी, तो इन पेड़ की छाया पर आपा के है क्या वो एक चोखो सो गीत सुना। तो आओ बहनों सुनाओ प्रोग्राम की शुरुआत में चोखो सो गीत।

बेनो, आज 8 मई है और आज के दिन न के है रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाई जाए। क्योंकि देखो बेनो, वो रेड क्रॉस है आ एक के है के सार्वजनिक और निजी संस्था है जिकी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में के है के रजिस्टर्ड है। देखो इनको काम है के जना भी दो देशों के बीच में के है महायुद्ध हो जाए, महामारी आ जाए कोई देश में ही, या फिर अंतर्राष्ट्रीय कोई आपातकाल में के है के इन संस्था की आप सेवा ले सका। और देखो इन दिन ने जिको हेनरी डुनट की जयंती के रूप में भी मनायो जावे। बा के है के इंसानियत और मानव सेवा रो लूठो संदेश इन संसार ने दियो, जिको आज भी दुनिया भर में लोग इन्हें अपनावे। इनको मुख्य उद्देश्य है बेनो वो है दुखी घायल और जरूरतमंद लोग हुए नी बांगी मदद करनो, चाहे युद्ध होवे, चाहे बाढ़ आवे, या फिर भूकंप हुए, या फिर कोई भी तरह की आफत हुए नी, तो ई संस्था बिना आके है आ संस्था बिना किसी भेदभाव के बैठे पहुँच जाए। अपने राजस्थान री बोली माई के वहाँ तो देखो बेनो कै जिको मन ममता और दया से भरियो हुए नी वो ही मिणक साचो मिणक कुआवे है। वो दिन आपा ने याद दिलावे कै मानवता सबसे बड़ी ताकत है। आपा ने चाहिए कै अपने गांव गुआड़ माई, स्कूलों माई, अस्पतालों माई, जितना भी जरूरतमंद लोग है नी बांगी आपा आगे यार मदद करा। जे आपा समर्थ हाँ तो आपा मदद करनी भी चाहिए, क्योंकि देखो बहुत सा ऐसा जरूरतमंद है जिका के है कई टाबरियां की बात करा तो बे के है कि अभाव के कारण पढ़ाई आपकी पूरी कौन कर पावे हैं। कई लोग इस है जिका के है कि पीसो नहीं होने के कारण इलाज कौन करवा पावे आपको, है नी। और कई जिया भी इशू है कि आप देखा मन भी क्यों बनो, आप जे देखो अपने गाँव वाड़ में देखा तो अनबोल जिका जी है बापड़ा बांगे प्रति भी आप ने की है कि मानवता दिखानी चाहिए नहीं। क्योंकि देखो कई बार आप देखा कि कोई तेज गति में कोई वाहन जानतो है, जो कोई ट्रैक्टर ट्राली कोई टिपतो है, तो मान लो कोई गली में कोई जानवर भी आग आ जाए तो भी बापड़ा बट पड़िया रहे, तो बांगी भी आपने की है मदद करनी चाहिए नहीं। एक इंसानियत के नाते आपने जीव पर दया दिखाण को अपनो धर्म बने तो आपने वह चीज़ जरूर करनी चाहिए। दया कह नहीं, दया धर्म को मूल है, धर्म को मूल ही दया है जिन्हें आपने इंदिया ना अपने स्वभाव में ही लानो चाहिए। और कोई भी आपने जरूरतमंद दिख है तो बिंगी मदद आपने करनी करनी चाहिए। और देखो अब तो गर्मी बहुत पड़े है तो जिया अणबोल जिया की आप बात करा तो आप के है कि जिका आजकल आवे सी मटका बनेड़ा या मोटा मोटा गमला सा बे आप पानी का बरगा अपने गेट का अगर रख सका, है नी। तो जी जिना और बापड़ा गणा ही हुए बे पानी पीण खातर इन्ने भी न भटके तो बे पानी पी सी तो बंगी आत्मा आपने आशीष देगी। और देखो आत्मा से देड़ी आशीष बहनों हमेशा लग ही लग गए है। तो देखो भी भगवान भी के है कि आत्मा की सुने ही है नी, इन वास्ते आपा ने के है कि जीवन की आशीष लेने खातर ऐसा अच्छा अच्छा काम करता रहना चाहिए, है नी। वो कोई दिन की मात तो आज कोनी हो दया हुआ बा आप कद भी कर सका, है नी। तो दया खातर की है कोई विशेष दिन ना देखो, कोई भी आजकल दिन तो सारा बने उड़ा ही है, पर आपने हमेशा की है कि ऐसी भावना रखनी चाहिए दूसरे रंग प्रति आपने दया की, ठीक है, मदद की, इन तरीके की भावना जो आपने मारे सी तो आपने की है कि संसार में जाने के बाद भी लोग आपने अपने कर्मा खातर याद करे। तो बहनों बात तो और भी करांगा, आओ सुना ओ एक भजन और थे बढ़िया रही हो मर सागे।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: बहनो, अभी आपां भजन सुनियो तो अब आपां बात करा अपनी राजस्थान की परंपरा के बारे में। तो देखो बहनो, राजस्थान की परंपरा है वह बहुत ही अनोखी रही है। तो जिको आपनो राजस्थानी पारंपरिक भोजन है बिंगी बात करा तो बिंग माई आव है लापसी। और देखो बहनो, लापसी तो देखो रसोई गो की है, कह कोई इसी भी इस चीज़ को नहीं, रसोई गो खास पकवान ही। कई जगह तो आज भी के है कि वो खास है, जियाँ कोई भी मान लो तीज त्यौहार हुए, जियाँ कोई पूजा हुए, कोई भी कहीं भी घर में कोई मांगलिक कार्य हुए नहीं, चाहे नामकरण हुए, मेहमान आने वाला हुए, तो बी जगह लापसी जरूरी बनाई जाए। जे घर में नहीं बीननी आवे नहीं तो भी खातर लापसी को देखो तैयार करी जाए। जियाँ रात जगह भी पहला लापसी तैयार कर गए और बीसी की है भगवान के भोग लग गए और की है लापसी ने बहुत ही अच्छा मान्यो जावे, शुभता को प्रतीक मान्यो जावे हैं। और देखो बहनो, वो एक अपनी रसोई को की है कि खास पकवान हो, तो आजकल तो देखो टाबर लापसी सार जाने ही कोनी। पहला की है कि लापसी खाता टाबर लड़ता एक दूसरे सागे भी लापसी बन जाती दलियो खींचड़ो है नी, ये चीज़ा तो चालती पहला जन्ने, तो देखो शरीर की साख नहीं रोग रहता है नी। तो देखो आज की लापसी है नी, आ जिको अपने कणक हुए, कणक को जिया मोटो दली हुए भी ना आप पीस के पहला कणक ने सुनी की है कि छड़ लेवा आप थोड़ी गिल्ली कर गए भी ना की है ऊंखड़ी माई छड़ लेवा मुसल सियूँ, फिर भी ने फटकारों मार के थोड़ी सुखा गए, फिर भी पीसा नहीं दो दाना गम्मा जिन इसी सोनी जिया तैयार हो जाए। और फिर बिंग माँ आप की है कि घी सियूँ थोड़ी बूंद गए भी ने हल्की आँच पर, और बिंग माँ फिर अपने गुड़ गो पानी जिया तैयार कर गए और वो बिंग माँ आप ना खानी, तो बिन की है कि इतनी सोहनी सुगंध उठे कि पूछो ही ना थे। और देखो इतनी सोहनी सुगंध उठे कि आसे पासे बिठा लाग जे भी लापसी बनन लाग रही है। और जिन बहांड की माई जे बनाई जे बा लापसी तो देखो सुनने पर सुहागाली बात हो जे। हांड की माई आप कोई भी चीज़ बनावा नहीं, लापसी क्यों मान लो कोई भी चीज़ है, दली हो रे खींचड़ो हो खींचड़ी हुई, तो बिंगो स्वाद है नहीं वो दुगुणो और आपने जिब्बा गए लग गए है नी। तो की है कि आप बात करा लापसी की, तो इन्हें की है कि बहुत ही प्रेम गो अपनायत गो और सुख समृद्धि को प्रतीक मानी जाए। इन कारण आपनो के है कि लापसी एक भोजन ही कौन बहनों, वो अपनी संस्कृति की पहचान भी है नी। तो आपने भी की है कि अपनी संस्कृति के तरफ अपने जी का टाबर ही है छोटा मोटा बहाने मोड़न खातर की है इसी चीज़ा घर में और ना तो हफ्तों एक कर तो आपने बना ही लेनी चाहिए है नी। क्योंकि देखो भी हर दिन खास ही हुआ अपने खातर तो है नी, भी वो अपने पर आपने जे अपने दिन ने खास बनाना है नी तो आपने मीत रंग सोच आपने रखनी उसी। तो एक हफ्ते में कहीं ना कहीं चीज़ जिया रे आप लाभ सी क्यों जिया मोठ बाजरी को खींचड़ो है, रब तो देखो गर्मी भी बेजा ही पड़े है नी, जे रात ने खींचड़ो या दलियो रांध के रखेड़ो है। दलिए की बात करा तो देखो कणक ने सुनी ईं तरह छड़ गए और सुनी आप कर गए और छोलांगी और मूंगांगी दाल आप भेगे कई देर रख देवा नी दो घंटा ताई, फिर सुनी बीज जाए तो बिंग आप सीज टाइम नाख दिया नी, तो बिंगी सुगंध सू इतो बढ़िया इतो स्वादिष्ट दलियो बने।

है नहीं, थे पूछो ही ना, टाबर के है खाता ही कोद आपेगा। टाबर क्यों बडेरा भी बहुत ही कोड भी चीज ने खावेगा। तो आपा ने चाहिए कि आपा पाछा अपने लार ले, जिया टेम में जावा, जिया अपनी माऊ दादी बनाती बीन तरीके से आपा भी की है कि कदी खींचड़ो है, दलियो है, ये चीजें बना के रात ने छोड़ दिया तो दिन गए की है कि खेत जान वाला जिका है नी बेबी हाली है जिका बेबी बापड़ा खा के उड़ जाए बंगो काल जो सारा दिन तर रेवे। और तो और देखो बेटा बरिया भी स्कूल जावे तो थोड़ थोड़ दिन गए नहीं, दही गमा रला गए या छा गमा रला गए, दलियो खींचड़ो वो आप खा लेवा नहीं, तो की है कि सारा दिन काया तृप्त रेवे और के है कि अपनी आत्मा बरेड़ी सी रेवे है नहीं। तो जिया खींचड़े की बात आई है तो आज वो आप सुना बेनो मिल गए ओ खींचड़े परी चोखो सो गीत।

सच्ची बात है बेनो, बाजरी को खींचड़ो तो बेजा ही स्वाद लगे, पण के है कि आपा ने थोड़ो बनाण गुयाल सरे वह नहीं भी, के है थोड़ी सी आपा ने मेहनत ही तो करनी है। आजकल तो देखो घर घर है मिक्सर हो रहा है नहीं, ये मिक्सियां चल रहा है, तो अंग में आपा के है कि थोड़ो सो बाजरी के छांटो देर पानी गो, और फिर के है कि बिना आपा दर दरो पीस गए आपा के है कद भी जी करे जन नहीं आपा बाजरी को खींचड़ो बना सका। पण जिको दादी आला माऊ आला जिको बा ऊखड़ गो कुटेड़ो खींचड़ो खाता बिसो स्वाद तो आपा ने के है कि को नहीं आवे गो, बी खातर तो आपा ने रज गए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी है नी। तो जे खींचड़ो खाणो ही है तो इन वास्ते थोड़ी मेहनत करी लियांगा है नी। और देखो ये खींचड़ो हो राबड़ी हुई ये चीज़ा अपने स्वास्थ्य खातर बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हुआ है। और देखो बहनों भी फिट रहने खातर जे आज आ गए जमाने में अपने शरीर ने फिट रखनो है नी, इंज में तंदुरुस्त रखनो है, तो इन वास्ते आपने खाण पीण को तो बहुत ही सोच समझ गई ई बात पर आपने के है करनो चाहिए मनन भी आप के चीज़ खान ला गया। देखो बहनों वो अपनी काया है नी, आ भगवान की देड़ी अमानत है जिका को ध्यान रखनो अपनों फर्ज बने। आजकल देखो कई बार स्वाद के चक्कर में आप ऐसी चीज़ा खा लिया जिसू की है कि शरीर ने फायदा कम और नुकसान ज़्यादा हुआ है। रोज़ रोज़ देखो बहुत ज़्यादा तेल मिर्च बाजार रोज की चीज़ें जियाँ कोई अपने आजकल ये देखो चाह रहे है पिज्जा बर्गर पता नहीं के चीज़ा टाबरियाँ तो बांगू ही कोड, क्योंकि देखो आपा की तो बांगी भी तो गलती को नहीं, आप शुरू में बन बई चीज़ा अपन सुराइत लग गए नहीं भी आप सुराइत देख लें भी टेम कौन लग गए बना, मैं टाबर खा गए राजी और आपन बनाणो कौन पड़े तो आप भी आ राजी। तो थोड़ी सी मेहनत कर गए अभी भी टेम है आपा के है थोड़ी मेहनत कर गए, और आपा ने भी खींचड़ो है राबड़ी है दलियो है ऐसी सी अच्छी अच्छी चीज़ें आपने की है कि बनाते रहना चाहिए। इन अलावा जी और भी बहुत सारी चीज़ें जी हरी सब्जियां है या कच्ची सब्जियां जी की आप खास का नहीं आप तो बह चीज़ों को आप सलाद बना रहे, या फिर देखो कई भी तरीकों आप टाबर बहो जी खास का जी दलियो बनाता वा नहीं सीधो दलियो नहीं बनते है, तो कई तरह की आजकल देखो सब्जियां भांत भांत गया हुआ है तो आप सब्जियां ने काट के चौखी सारी सब्जियां बिंगमा नाख देवा, तो बीस के एक बुदलियो या फिर खींचड़ी हुई बिंगमा जी आप बोली सारी सब्जियां नाख देंगे नहीं तो बहुत ही ज्यादा वह पौष्टिक भी हो जाएगी और बहुत सारा पौष्टिक गुण है बिंगमाई आ जाएगा। और जे बाई खिचड़ी आप हांडकी माई माटी हांडकी माई रांधांगा तो सुनने पर सुहागा वाली बात हो जाएगी और आपनों शरीर के है निरोग रहेगो। इन अलावा देखो देखो बहनों खाण पीण के अलावा भी जे आप ने अपने शरीर ने स्वस्थ रखनो है तो देखो थोड़ो आपने अपने शरीर पर ध्यान देना सी भी थोड़ो कसरत है व्यायाम हल्का फुल्का बे भी आपने तो रहना चाहिए। और देखो जी का अपना बडेरा माए ते बने की है थोड़ो या भी दिन गए कितनी ताजी हवा आती हुए नहीं, तो जे बडेरा माए ते या गरगा नौजवान पुरुष है या फिर टाबरी है तो बहने भी सागे लेके भी जा सके नहीं, तो टाबरिया ने भी अच्छी आदत देखो इन तरह आप गाल सका तो टाबर भी बंग सागे जावेगा। जे मान लो कई दूर घूम गया वे मान लो कोई मिंदर ताई जाणो है कोई अपने मान लो कोई जिग्ञा है बैठे खेत ताई जागे आणो, तो इन तरीके से की है कि आपां घुमाई करके भी आपने देखो शरीर ने आपां स्वस्थ रख सका। और टाबरिया ने खेलनो कूदनो वो भी चाहिए टाबरिया क्यों देखो आजकल तो जियां आपां घर गमाई खेल सका बिसा खेल भी आपां भी टाबरिया सागे रल के खेलांगा तो टाबरिया सागे देखो सागे तो टाबरिया सागे आपने टेम मिताण गो मौको मिलेगो और सागे टाबर के आपने सागे ज्यादा हिलमिल गए रहेगा आपां टाबरिया ने टेम देवांगा तो भी आपने सागे कि संपर्क में रहेगा और आपने ममता जियां के यानी भी वह चीज आ जाएगी आपनों एक जिको तकड़ो बूंड बन जाएगो। इन तरीके से क्योंकि है कि आप फिट रह सका ये छोटी छोटी आदत आपने अपनानी चाहिए जिसों जीवन निरोगी बन जावे। और बहनों ये सब सबसे जरूरी अब गर्मी बहुत पड़न लग रही है तो आपने की है कि पानी तो पीनतो ही रहना चाहिए, जे सीधो पानी नहीं बावे तो नींबू पानी हो गयो रे जीरो हो गयो रे या फिर दही को मठो हो गयो छा होगी राबड़ी होगी, और राबड़ी तो देखो बहुत ही कारगर रामबाणी है गर्मी ने दूर करने खातर है नी, लू ला चालती हुए तो बिंगमा जी आप राबड़ी पी के निकला तो लू अपने कनकरी कोपट कबले कितनी चालती रो, बिंगमा जी आप चोखा प्याज जिया काट के मां नाख देवा तो बीसू और जीरो बूंद के रेड़ दे सागा तो देखो अपने राबड़ी को स्वाद दुगुनो हो जाएगो और सागा अपनो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा गर्मी से अपने शरीर।

वाह जी वाह। कह किस किस का दुखड़ा दूर करूं, आ दुनिया दुखी फिरे रानी। देखो बहनों, हर कोई आप आप को अलग अलग दुख है। कोई छोटी सी बात से दुखी है, तो कोई मोटी सारी बात से दुखी है। कह सोचा जित तो ही वो दुख की है, कह बढ़ तो जावे है नी। तो दुख अर कई तो के है, कि दूसरे के सुख ने देख के भी आजकल दुखी है भी। ओ

0: कर लो तो सुखी की है। मान लो कोई कन्ने बैठे आदमी हंसन लाग रहे नी तो ये हंसन क्या लाग रहे, भी चीज ने ले गई दुखी हो जाए तो बताओ ई तरह जे दुख आपा लेर बैठ जा तो फिर आपा सुखी हो भी कौन सका, है नी। और देखो आजकल टाबरियां तो वो दुख है कि पढ़ाई आलो, कह चीजा आजकल की है कि औखी लागे बने जे पढ़ता हुआ कई बार बने कोई समझ को नहीं आवे तो वो ही बने दुख खावे कि मान तो आ चीज समझ को नहीं आन लाग रही। तो आजकल की है कहीं पढ़ाई ने आसान करण खातर एक अपने फोन में कंप्यूटर में एक तकनीक आई है जिकन एआई के वे, है नी। एआई को मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन उपयोग आपा की है कि टाबरां की पढ़ाई में वो बहुत ही मददगार है। जे आपा इंग उपयोग टाबरां खातर करा पढ़ाई खातर तो जे मान लो टाबरियन की आण कौन ला रहे, देखो बेनो सागे तो आज के है जमानो भी तकनीक गो है तो इन तकनीक के जमाने में ही आपनों की है कि पढ़ाई में बदलाव देखने मिले तो आपा इंगो आपा मदद लेगे और टाबरां की पढ़ाई आसान कर सका। कई बार की हुआ है कि टाबरां ने कोई गणित गो सवाल को नहीं आंतो है, बे सवाल में ही अटक जाए है और दोरो लग गए बने हैं। कई बार अपन तो आनो ही कि अपन कितना साल पहला छोड़ दी है नी, पर आपकी बात को नहीं कई तो आंता ही उला बापड़ा ने, है नी। बे बंगो दिमाग दिमाग की बात हो है। अब देखो ये आप दुनियादारी में फंस गया तो दुनियादारी याद रहे पढ़ाई रही कट है चेता है नी। तो बे सवाल कई बार टाबर अटक जाए, कोई विज्ञान गो पाठ है वो समझ को नहीं आन लाग रहे हो या कोई अंग्रेजी को अर्थ आपा ने पूछना हुआ टाबरिया ने, तो जिको एआई है नी वो बहुत ही मददगार साबित हो सके। ओके है कि जिको माँ बाता ने आसानियों से समझावे और उदाहरण भी देवे अन बार बार जे पूछे नी तो फिर और समझा दे अक्के को नी। अरे देखो मास्टर जी अपना आपने किन्नू पूछा आपा किन्नू भी अक जावा नी, वो बड़ी देर आपा किन्नी की सवाल को जवाब दे कौन सका। तो पण वो एआई है नी वो अक्के को नहीं, बल्कि कितनी बार पूछ लियो। जे कोई कछुआ चाल और टाबर है बिंगो दिमाग धीरे चालन लाग रियो है नी, बे टाबर दिमाग तो बहुत है पर कोई धीरे सीखे कोई तावड़ो सीखे है। तो जे कोई तावड़ो सीखने वालो है वो तो के है कि तावड़ो तावड़ो कर लिया अरे एक करी पूछ गया आपको दिमाग में बिठा लिया, और जे नहीं समझान लाग रियो है तो वो बार बार भी ने समझाण में ही मदद करे। और कोई भी मान लियो आपा भी अभ्यास कराणो है सवाल बनाना है या उत्तर जांचना है और भी कई प्रकार की नई तकनीकां देन खातर वो काम आवे है। पर जरूरी बात आ है कि पढ़ाई में जिको एआई है इरो मतलब ओ कोनी कि टाबर खुद सोचनो छोड़ ही देवे, भी टाबर कोशिश ही ना करे सवाल करने की, बस रे वो एआई पूछ लूँ मैं, है नी। भी सारा दिन फोन रखा है यूं मैं पूछ वो करूँ यूं कर वो करूँ तो दिमाग बिंगो चालन रह जाएगो, भी मदद लियो थोड़ी बहुत है नी, पर इया कोनी भी बिंग ऊपर ही निर्भर हो जाओ है। अगर जे आपा सीधा जिका सवाल है बे आपा नकल कर करके जे टाबरिया उतार ले सी तो बंगो ज्ञान के है कि बेनो अधूरो रे जी। सही उपयोग तो वही है कि पहला खुद समझने की कोशिश करो, फिर भी जो दिक्कत आन लाग रही नहीं तो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी को एआई ये भी सी मदद लियो। और देखो बेनो जिका अपना मास्टर जी है बंगो स्थान तो मसीना कदे ही कौन ले सके, क्योंकि गुरु दिशा बतावे संस्कार देवे और सोचने री ताकत भी बढ़ावे। एआई तो की है कि बस एक साधन है, असली ताकत तो मेहनत और लगन में ही है। तो मेहनत कर सी जिका टाबर बे के है कि ज्ञान को दीपक जगा सी, और एआई के सागे की है कि थोड़ी सी जिकी सीखण की राह है नी बा आसान बन जी, है नी। तो टाबरियां की बात चलन ही लाग रही है तो मैनू अपना टाबरियां ने सुना दें टाबरियां वाले चोखो सो गीत, आओ सुनाओ गीत।
1: मान्यापुर।

भाई रे कान्यो गयो रूस लारे कबूतर सूस, कान्यो गयो रूस लारे कबूतर सूस। ये जी मोर राम जी, ये जी मोर राम जी कर फैसलो, नानी तो कंजूस रे भाई। नानी बोली अर छोड़ दाल चर पर, नानी बोली अर छोड़ दाल चर पर।

कान्यो गयो भाग नानी का गई लाग, कान्यो गयो भाग नानी का गई लाग। ए जी कान्यो रोवे भाई नानी दौड़े।

है निश्चिंत रहें, तो क्योंकि बी टीम को की है कि वो टीम न्यारो ही हो। आजकल तो देखो टाबरियन बाहर ही कौन निकल दिया, क्योंकि देखो माहौल ही बदल गयो है, नहीं सारों की बदल गयो है। तो की है कि थोड़ो सो आप वो ध्यान रखो और टाबरियां को भी ध्यान रखो। तो अब जी की कार्यक्रम है वो पूरा होने पर है, तो अब भाई किरणा ने दो आज्ञा। राम राम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
1: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग डेढ़ दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी के लिए।
0: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरु थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण

0: या ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, वायुसेना, DCPP और उद्योग जगत को बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मान करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
3: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
4: इंडिया कंट्रीब्यूट्स।
3: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।

0: ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमेरिकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लागू करने का फैसला किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
1: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुँचाया जा रहा है।
2: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशंस हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
1: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
3: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुँचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
1: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6ठे युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट के साथ 24,173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज

0: हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब सुने कार्यक्रम फिल्म संगीत।

सभी दोस्तों को नमस्कार। नरेश वर्मा की तरफ से आपका स्वागत है फिल्म संगीत में। पहला गाना सुनिए शहंशाह फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। ये गाना आनंद बख्शी ने लिखा है और संगीत अमर उत्पल का है। आइए सुनें।

दोस्तों, आपने शहनशाह फिल्म का ये दो गाना सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में, और अब सुनिए।

त्रिदेव फिल्म का ये गाना सुनिए, आवाज़ें हैं अमित कुमार, सपना मुखर्जी और साथियों की। ये गाना लिखा है आनंद बख्शी ने। और ये संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। आइए सुनते हैं।

दोस्तों, अभी आपने त्रिदेव फिल्म का गाना सुना और अब हम आपको सुनवाते हैं तेजाब फिल्म का ये नगमा। ये आवाज़ें हैं अनुराधा पौडवाल और अमित कुमार की। गाना जावेद अख्तर ने लिखा है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। आइए सुनते हैं।

0: और अब सुनिए कानून अपना अपना फिल्म का ये गाना अमित कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में। गाना इंदिवर का है, संगीत बप्पी लहरी का। आइए सुने।
1: तू गोरी पतली पान, तेरी मीठी मुस्कान,

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप पर यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। अब से लेकर शाम 5 बजे तक मीडियम वेव पर हमारा प्रसारण रख रखाव के चलते बंद रहेगा। शाम 5 बजे मीडियम वेव पर भी आप कार्यक्रम युववाणी से हमारा प्रसारण सुन सकेंगे। एफएम और न्यूज़ ऑन एआईआर पर प्रसारण जारी है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे उर्दू सर्विस के प्रोग्राम, इंतज़ार करें।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सपहर के 3 बजे ही हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात का आगाज़ होता है।

सामीन आपको बता दें कि कुछ ही देर बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी। 3:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद, जिनमें 3:30 हम पेश करेंगे मारूफ मौसीकार जयदेव के साथ की गई गुफ्तगू की एक रिकॉर्डिंग। आपसे गुफ्तगू की थी ए जब्बार ने। 4 से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्मी नगमों का। फिल्मी नगमों का प्रोग्राम जारी रहेगा शाम 4:50 तक। 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 5 हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पज़ीर हो जाएंगी। तो सामने तक मुख्तसर तारुफ हमारे यहाँ से नशर होने वाले उन प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: मीडियम वेव 1171 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 बजाते हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप मोहम्मद कौनैन हैदर से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। आज कोलकाता में मगरबी बंगाल की बीजेपी कानून साज पार्टी अपना रहनुमा मुंतखब करने के लिए मीटिंग मुनाकिद करेगी। डीआरडीओ और भारतीय फजाइया ने मुल्क में ही तैयार किए गए तारा ग्लाइड हथियार की पहली आजमाइशी परवाज कामयाबी के साथ मुकम्मल की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत के इस्तेहकाम, इत्तेहाद और तहजीबी ताकत की एक लाजवाल अलामत करार दिया है। बैनुल अक्वामी तिजारत की अमरीकी अदालत ने ट्रंप इंतजामिया की तरफ से भारत से लेकर दीगर मुल्कों तक आयद किए गए 10% महसूल को गैर कानूनी करार दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका और यूरोपीय यूनियन इस बात की यकीन दहानी में मुत्तहिद हैं कि ईरान कभी न्यूक्लियाई हथियारों का हामिल न हो। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल बीजेपी कानून साज पार्टी आज अपना लीडर मुंतखब करने के लिए कोलकाता में मीटिंग करेगी। पार्टी के मरकजी मुशाहिद और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। बीजेपी ने रियासत के हालिया असेंबली इंतखाबात में तारीखी जीत दर्ज की है, जिसके बाद रियासत में टीएमसी का 15 साल दौरे हुकूमत खत्म हो गया। मगरबी बंगाल की पहली बीजेपी हुकूमत की हलफबरदारी तकरीब कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनाकिद होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी सदर नितिन नवीन और बीजेपी के जेर इक्तदार तमाम रियासतों के वजराए आला हलफबरदारी की इस तकरीब में शिरकत करेंगे। दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम डीआरडीओ और भारतीय फजाइया ने मजीद फासले तक मार करने वाले छोटे हथियार तारा की पहली आजमाइशी परवाज कामयाबी के साथ मुकम्मल की। यह तजुर्बा कल ओडिशा के साहिल से कुछ दूर किया गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस पहली आजमाइशी परवाज पर डीआरडीओ, भारतीय फजाइया, डीसीपीपी और सनत को मुबारकबाद दी है। उन्होंने इस कामयाबी को मुल्क में ही तैयार किए गए दिफाई हथियारों की तरक्की के मैदान में एक अहम पेशरफ्त करार दिया है। वजारत दिफा ने एक बयान में कहा कि मार करने की दूरी में इजाफे वाला ये हथियार तारा मुल्क में तैयार किया गया ऐसा पहला ग्लाइड हथियार निजाम है जो बगैर रहनुमाई वाले हथियार को बारीक निशाने वाले हथियार में बदल देता है। वजारत ने बताया कि तारा को हैदराबाद के तहकीकी मरकज इमारत प्लस और डीआरडीओ की दीगर लेबोरेटरीज ने मिलकर तैयार किया है। इसका मकसद कम कीमत वाले हथियार की बिल्कुल सही निशाने पर पहुंचकर दुश्मन को हलाक करने की सलाहियत में इजाफा करना है। यह हथियार तरक्की और उसके बड़े पैमाने पर तैयारी से मुतालिक शराकत दारों और दीगर भारतीय सनतों ने तैयार किया है और इसे बड़ी तादाद में तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 11 मई को गुजरात में सोमनाथ मंदिर जाएंगे। 1951 में मंदिर का एहिया किए जाने के बाद भारत के पहले सदर जमहूरिया राजेंद्र प्रसाद के हाथों इफ्तिताह किए जाने के बाद से 75 साल पूरे होने के मौके पर जनाब मोदी वहां जाएंगे। वजीर आजम ने आज एक कौमी रोजनामे में एक मजमून तहरीर किया है और इसमें ये जानकारी दी गई है। अपने मजमून में जनाब मोदी ने कहा कि उन्हें चंद माह के अंदर ही सोमनाथ से वाबस्ता दो अहम तकरीबात में शिरकत करने का शरफ हासिल हो रहा है। इससे कबल इस साल के शुरू में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शिरकत की थी, जिसका एहतमाम मंदिर पर पहले हमले को 1000 साल पूरे होने के सिलसिले में किया गया था। वजीर आजम ने सोमनाथ को भारत की तहजीबी कुव्वत और मजबूती की अलामत करार दिया।

जनाब मोदी ने कहा कि मंदिर के सफर से तबाही से लेकर तखलीक तक की एक तहरीक की अक्कासी होती है और इससे जाहिर होता है कि बार बार के हमलों और मुश्किलात के बाद भी किस तरह अकीदा और सकाफत बरकरार रह सकते हैं। वजीर आजम ने आजादी के बाद मंदिर की तामीर नौ में भारत के मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल के रोल को याद किया। जनाब मोदी ने कहा कि सरदार पटेल का यह मानना था कि सोमनाथ की तामीर नौ एक कौमी फर्ज है। वजीर आजम ने सोमनाथ की दास्तान को सरकार के विकास भी विरासत भी नजरिए के साथ मुंसलिक किया, जिसमें विरासत को महफूज रखते हुए तरक्की पर तवज्जो मरकूज की जाती है। जनाब मोदी ने कहा कि मंदिर की तारीख से वाबस्ता दिलेरी और कुर्बानी के एजाज के सिलसिले में अगले 1000 दिन के लिए सोमनाथ में खुसूसी पूजा अर्चना की जाएगी। जनाब मोदी ने हमवतनों पर भी जोर दिया कि वो सोमनाथ जाएं और बकौल उनके मुल्क की तहजीब के अटूट जज्बे को महसूस करें। आकाशवाणी ने आज अपने क्याम को 90 साल मुकम्मल होने के मौके पर कौमी राजधानी में एक मैराथन का एहतमाम किया। तकरीबन 3.5 किलोमीटर की ये मैराथन आकाशवाणी भवन से शुरू हुई और कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक की इमारत के रास्ते से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर इख्तिताम पजीर हुई। इसमें आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती के मुलाजमीन के साथ साथ उनके अरकान खानदान ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जैन भी मौजूद थे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमेरिका की तिजारती उमूर से मुतालिक एक वफाकी अदालत ने यह फैसला सुनाया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के नए 10% आलमी महसूलात गैर कानूनी हैं। न्यूयॉर्क में बैन अल-अक़वामी तिजारत से मुतालिक अदालत के 3 जजों के पैनल ने यह फैसला सुनाया कि सदर ट्रंप ने तिजारत से मुतालिक कानून के तहत सदर को दिए गए कांग्रेस के इख्तियारात से तजावुज करके इकदाम किए हैं। छोटे कारोबारी घरानों की जानिब से अदालत ने इन महसूलात को चैलेंज किए जाने के बाद यह फैसला सामने आया है। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पिछले साल नाफिज किए गए वसी तर आलमी महसूलात पर रोक लगाए जाने के बाद ये नए महसूल लगाए गए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका और यूरोपीय यूनियन इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुत्तहिद हैं कि ईरान कभी भी न्यूक्लियाई हथियार हासिल न कर पाए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फॉन डर लीन के साथ टेलीफोन पर हुई उनकी बातचीत बहुत अच्छी रही और उन्होंने मगरबी एशिया की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। सदर ट्रंप ने कहा कि तरफेन के दरमियान इस बात पर इत्तेफाक है कि एक ऐसे निजाम को लाखों लोगों की जानों को खतरे में डालने वाला हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती जो अपने ही लोगों की जान लेता हो। इस बातचीत में अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारती ताल्लुकात पर भी तवज्जो दी गई। सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने यूरोपीय यूनियन से जोर देकर कहा है कि वो स्कॉटलैंड के टर्नबेरी में हुए तिजारती मुआहदे के तहत टैरिफ में कमी के वादों को पूरा करे। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुआहदे पर अमल दरामद के लिए यूरोपीय यूनियन को अमरीका की आजादी की 250वीं सालगिरह तक की मोहलत दी गई है, बसूरत दिगर उस पर ज्यादा टैरिफ आयद किया जा सकता है। सऊदी अरब ने अपने फौजी अड्डों और फजाई हदूद तक अमरीकी फौज की रसाई को मुअत्तल कर दिया है। इसकी वजह से सदर डोनाल्ड ट्रंप को आबनाई हुरमुज से बहरी जहाजों को बहिफाजत निकालने के अपने मंसूबे को बीच में ही तर्क करना पड़ा है। अमरीका के 2 अहदेदारों ने इस बात की तस्दीक की है। सऊदी अरब का यह कदम खलीज के खित्ते से मुतालिक अमरीका की हिकमत अमली के लिए एक बड़ा धचका माना जा रहा है, क्योंकि अमरीका के कलीदी इलाकाई इत्तेहादी ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के शुरू होने से पहले ही इस कार्रवाई में रुकावट डाल दी है। उधर सदर ट्रंप ने अपनी तवज्जो सिफारतकारी की जानिब मरकूज कर दी है और ईरान के साथ हालिया बातचीत को यह कहते हुए बहुत खुशाइन करार दिया है कि मुस्तकिल समझौते का कवी इम्कान है। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात लखनऊ के एकाना स्टेडियम में बारिश से मुतासर मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीत के लिए 213 रन का निशाना मिला था और उसने 19 ओवर्स में 6 विकेट पर 203 रन बनाए। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर।

0: और शामिल लीजिए, सुनिए दाता फिल्म का नगमा महेंद्र कपूर, मनोहर दास, साधन सरगम की आवाजों में, जिसे मौसीकी सजाए कल्याण जी आनंद जी ने।
1: जयदेव साहब आज उर्दू सर्विस में

0: सुषमा श्रेष्ठा, पद्मनी कोल्हापुरे और साथियों को आप सुन रहे थे फिल्म थी द बर्निंग ट्रेन, नगमा निगाते साहिर मौसीकार आर डी बर्मन। इस नगमे के साथ ही आज का फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशे खिदमत है मारूफ मौसीकार जनाब जयदेव के साथ की गई एक गुफ्तगु की रिकॉर्डिंग। आपसे गुफ्तगु की थी ये जब्बार ने।
1: जयदेव साहब, आज उर्दू सर्विस में आपका इस्तकबाल करते हुए हमें कुछ ज्यादा ही खुशी का एहसास हो रहा है, इसलिए कि वो फिल्म अनकही के लिए बेहतरीन मौसीकी का एजाज दिया गया है। लिहाजा उर्दू सर्विस के सामईन और अराकीन की जानिब से हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं।
2: जवाहर साहब, मैं इस प्रोग्राम के लिए आपका मशकूर हूँ और इस प्रोग्राम को सुनने वालों को भी मैं बहुत मशकूर हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आज की इस नशिस्त में हम आपके कुछ नए गानों के बारे में बात करेंगे और कुछ गुफ्तगू होगी पुराने गीतों के बारे में, और गीतों के कुछ हिस्से भी अगर मुमकिन हो सका तो हम इस वक्त सुनेंगे और सुनने वालों को भी सुनवाएंगे। सबसे पहले मैं अनकही के बारे में आपसे बातचीत करना चाहूंगा कि इस फिल्म पर आपको ये नेशनल अवार्ड मिला है, इसके बारे में आप अपनी क्या प्रोफेशनल राय देते हैं? क्या इसमें खसूसियत थी आपके नुक्ता नजर से मौसीकार होने का?
2: जब सर, मेरी जिंदगी में मैंने बहुत सी फिल्मों में म्यूजिक दिया है
1: जी, यकीन।
2: चंद लोग ऐसे मिले हैं जो समझदार थे, जो म्यूजिक को भी समझते थे, अपनी कहानी को भी, इस मीडियम को भी
1: जी।
2: उनमें से एक अमोल पालेकर है
1: जी।
2: तो अमोल पालेकर जी के साथ मैंने एक फिल्म की थी घोंडा
1: जी।
2: मेरे घर में उसी वक्त उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो अपनी फिल्म का म्यूजिक नहीं देंगे
1: जी।
2: तो जब उन्होंने फिल्म शुरू की अनकही, तो मिस्टर मिसेज अमोल पालेकर दोनों मेरे पास आए। कहानी चूंकि खानोलकर जी की लिखी हुई एक फिल्म प्ले पर बेस थी।
1: अच्छा।
2: और जब उन्होंने कहानी सुनाई तो कुछ उन्होंने सिखा कि जयदेव जी को मौत के बारे में गाना बताइए।
1: अच्छा।
2: तो मैंने उनसे कहा कि आप लिखवाना चाहते हैं या लिखे हुए गाने जो है ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल। तो मैंने कबीर जी का बिजनेस सुनाया उन्हें, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो।
1: अच्छा।
2: आए जमराज पलंग चढ़ बैठे टोटल हो। एक्सेप्टेड।
1: ठीक।
2: उसके बाद वो कहने लगे कि कुछ भक्ति भाव का एक गाना, चूंकि वो आदमी जो कैरेक्टर है वो बहुत खुश है, बहुत सालों के बाद उसके लिए जिंदगी मुझे।
1: अच्छा।
2: उस वक्त मैं उनसे कहा कि

0: Así que प्रेजेंट है रघुवर, तुमको मेरी लाज
1: जी।
0: वो भी उन्होंने एक्सेप्ट किया,
1: दो हो गए।
0: उसके बाद एक खुशी गाना था, लड़की जब जो मैंने लिए शादी लड़की है मतलब जिसने बाप से गाना सीखा हुआ है तो वो जब गाती खुशी में तो बाल कभी बगा दीजिए मुझे एक गाना दे गया था।
1: अच्छा,
0: मुझको भी राधा बना ले नंदलाल,
1: वाह।
0: तो वो भी उन्होंने मैंने उसको जो दोनों बनाई थी दोनों एक्सेप्ट की
1: जी।
0: फिर एक गाना जब क्लाइमेक्स का जो सॉन्ग है, देशभाषा के बहुत मशहूर कवि हुए हैं करीम बख्श साहब
1: जी,
0: ठुमक ठुमक पग कुमक कुंज मग चपल चरण हरि आए,
1: ये भजन है,
0: भजन है कृष्ण के बालपन के ऊपर
1: जी। और भीमसेन जोशी जी की आवाज में।
0: हाँ, जब ये गाने का फैसला हो गया तो अब सिंगर का सवाल था
1: जी। मैं यही आपसे पूछना चाहता था कि भीमसेन जोशी साहब को इतने बड़े क्लासिकल आर्टिस्ट हैं, आप फिल्म में कैसे ले आए?
0: जैसे इस फिल्म के गानों की बात तो कंप्लीट हुई, उसके बाद जब सिंगर का सवाल आया तो मैंने उनसे कहा कि जैसा कैरेक्टर आपका इसमें हमारी फिल्म बैंड की वॉइस तो चलेंगी नहीं
1: जी।
0: मैंने एक दो नाम सजेस्ट किए, वो कहने लगे भीमसेन जी को ट्राई करें
1: जी।
0: मैंने कहा वो इतने बड़े गायक हैं, मानेंगे इस बात को? कहने लगे कोशिश करने में क्या हर्ज है। तो जब उनको फोन किया गया, पंडित जी का पहला क्वेश्चन ये था कि इस फिल्म को संगीत कौन दे रहे हैं?
1: अच्छा,
0: उन्होंने कहा कि जयदेव, तो कहा मैं जरूर गाऊंगा।
1: वाह।
0: और पंडित जी का जितना मुझे सहयोग मिला है, जितना कोऑपरेशन उनका मिला है, उसके लिए मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। ऐसा तो फिल्म लाइन के लोग बहुत कम करते हैं, उन्होंने बहुत रिहर्सल की और गाने आपके सामने
1: बताऊन आपको पूरा पूरा दिया। और उससे ये भी देखिए साबित होता है कि जो क्लासिकी मौसीकी के फनकार हैं बहुत बुलंद पाया, उनकी आपके बारे में क्या राय है और आपके फन के बारे में? तो बहुत सहूलत आपको मिली भीमसेन जोशी साहब से और
0: पंडित जी की तरफ से? मुझे पूरा तावन मिला, और बल्कि वो तो सुबह उनकी रिकॉर्डिंग दोपहर शुरू होने वाली थी, दोपहर को, तो सुबह 9 बजे से आए थे रिकॉर्डिंग रूम में।
1: वाह। असल में जाहिर है कि उनका ताल्लुक उन फनकारों से है जो रियाज में यकीन।
0: और बाद मुझे उनके मिसेज ने बताया कि पंडित जी को आपके भजन बहुत पसंद है, वो हमेशा सुनते रहते।
1: वाह, मुबारक हो आपको। तो ये अनकवी फिल्म की बात थी। एक और फिल्म आपकी आने वाली है और एक गाना एक प्राइवेट नशिश में मैंने सुना, जुम्बिश फिल्म है।
0: हाँ, जुम्बिश।
1: और उसमें नज़में हैं कि एक नज़म मैंने सुनी थी भूपेंद्र की आवाज में, सिमट के बाहों में फूलों का आसमां है।
0: एक मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरे अजीज दोस्त सलाहुद्दीन परवेज साहब के दिमाग में कहानी थी, तो उन्होंने मुझे गाने जब दिए, उनकी पोएट्री में एक खूबी क्या है कि सलाहुद्दीन परवेज इमेजिनेशन बड़ा उनका वास्ट है, बहुत बड़ा ज्यादा है, और लफ्जों की जो उनकी सिलेक्शन है बड़ी म्यूजिकल।
1: तो आपको बड़ी आसानी रही होगी?
0: बड़ी आसानी रही। और वही बात अनमोल वाली कि जब जब मैंने जो ट्यून सुनाई उनको, चूंकि वो खुद पोएट है
1: जी,
0: और वो मैं उनके उनकी बात को एक्सप्रेस कर रहा हूँ, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, बल्कि बहुत इजीली बहुत आसानी से काम हो गया।
1: अच्छा, ये इसमें कुछ नई आवाजें भी मैंने सुनने में आया है कि आपने दी हैं?
0: हाँ, ये मेरी एक और खुशकिस्मती, मुझे मेरा शौक है कि इतने बड़े मुल्क में नई आवाजें आए, तो मुझे सलाहुद्दीन साहब ने भी इस बात के लिए पूरी छुट्टी दी कि आप जिसको चाहे गवाएं। लता जी से भी गवाया हमने, लोरी गवाई उनसे बहुत अच्छी।
1: अच्छा।
0: और उसके अलावा भूपेंद्र से गाने गवाए और कुछ नई आवाजों से पिनाज मसानी, शैला गुलवाड़ी, फैयाज, महाराष्ट्र स्टेज की आर्टिस्ट है, उससे गवाए गाने
1: जी।
0: तो ऐसे कितने गीत हैं
1: उसमें?
0: फिलहाल 6 गाने के रिकॉर्ड किए हम लोगों ने।
1: तो अभी और प्रोग्राम है,
0: एक एक एक उसने नसे रिकॉर्ड करनी है बट विद बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: वैसे गमन में भी बहुत खूबसूरत आपने धुने बनाई और ट्रेडिशनल
0: जब आसर के मुझे मखदूम साहब की गजल मिली
1: जी, हाँ,
0: शहर की गजल मिली
1: जी,
0: तो जब अच्छा कलाम मिलता है तो उनको कंपोज करने में मजा आता है।
1: उसमें गमन में एक ठुमरी, जयदेव जी आजा सजनवा तो है गरवा
0: भरे,
1: तो इसमें आपको कोई खास कोशिश करनी पड़ी कंपोज करने में? किस तरह आप
0: इसमें जब ऐसा क्या,
1: क्योंकि बड़ी भरपूर तासुर है इसमें और बहुत ही लुत्फ आता है इसमें।
0: वो कहें कि हीरा देवी
1: जी,
0: वो फिल्म प्लेबैक सिंगर नहीं थी।

0: abbiamo avuto classico
1: film playback single con playback single banana della muscolata con
0: io ho tecnico
1: che voce che minet che uno mi sa verca तो गाना पे मेरे ख्याल में पहली टेक होके थी
0: आपने ज्यादा मेहनत की है उन्होंने
1: उन्होंने भी की मैंने भी की तो जब मैं किसी नए आर्टिस्ट को चांस देता हूँ तो रिस्पॉन्स भी की वजह

0: दूसरा, अब ये गमन की बात आई तो याद आती है उनकी जानिसार अख्तर साहब मरहूम की फिल्म प्रेम पर्वत में, बेहद आपका वो गीत मकबूल हुआ ये दिल और उनकी निगाहों के साए, और बहुत अरसे के बाद एक बड़ी ही खूबसूरत मेलोडी सुनने को मिली थी, बहुत ही पसंद किया गया और आगे बड़ा अच्छा लगता है। इस गीत के बारे में बताइए, ये गीत पहले लिखा गया था या धुन पहले बनाई थी?
1: जबर साहब, मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मेरे सामने गीत या गजल या नज्म जो भी पहले आए उसको उसके मूड को समझ कर मैं ट्यून बनाऊं। मगर ये गाना मैं ऐसे बैठे गुनगुना रहा था एक धुन
0: जी,
1: तो जानसर भाई बैठे हुए थे, उन्होंने कहा यदि इस पर ऐसे बोले तो कैसे चलेगा।
0: अच्छा।
1: और वो जानसर भाई तो कमाल के शायर थे,
0: इसमें कोई शक नहीं।
1: और वो मैं फिल्मी गानों में, जैसे मैं अक्सर कहा करता हूँ कि तुकबंदी होती है, उनके फिल्मी गानों में भी
0: नहीं, कुछ शायर तो ऐसे यकीन है,
1: शायर साहब थे,
0: शायर साहब है, कैफी आदमी है,
1: कैफी साहब है,
0: मजरू सुल्तानपुरी है, तो ये धुन उन्होंने उसकी आपकी
1: मेरी धुन को उन्होंने बराबर समझा और
0: खूबसूरत गीत,
1: खूबसूरत आपके सामने गीत है वो,
0: तो जरा सुन लें इसका एक हिस्सा आकर और अपने सुनने वालों को भी सुनवा दें।

0: अच्छा जयदेव जी, एक फिल्म थी सुनील साहब की, रेशमा और शेरा, जिसके बारे में अभी आपने कहा भी था। उसमें एक गीत आम रविश से बिल्कुल हटकर है, और बहुत अरसा दराज के बाद इस तरह का एक गीत सुनने को मिला था हमें। एक तो ये मजबूर जवानी ऊपर, उस पर ये तन्हाई मेरी तौबा, आशा भोसले की आवाज़ में। इससे बहुत अरसे पहले एक फिल्म किस्मत बनी थी, जिसका म्यूजिक दिया था अनिल विश्वास जी ने, खुदा उन्हें खुश रखे। उसमें गाना था दुनिया बता हमने बिगाड़ा है क्या तेरा। तो दोनों गीतों में एक चीज मुझे मुश्तरक ये महसूस हुई कि उसमें वेरिएशंस दिए हैं धुन को अनिल विश्वास जी ने, तो यही कुछ कार्रवाई आपने इसमें की है। कम से कम तीन मोड़ तो मैंने महसूस किए इस गीत में।
1: इसमें भी जरूर पर यही हुआ था कि जब फिल्म बन चुकी थी तो चूंकि बहुत ग्रीन फिल्म थी तो ये डिसाइड हुआ कि इसमें कुछ लाइट गाने रखे जाए।
0: जी
1: तो इस गाने का जिक्र हुआ कि तौबा तौबा रे मेरी तौबा, एक तो ये भरपूर जवानी उस पर ये तन्हाई
0: मेरी तौबा,
1: और उसमें फिर राजेंद्र कृष्ण जी को मैंने कहा जी कि मुखड़ा तो हो गया
0: जी,
1: अब आप अपनी मर्जी से जो जो भी चाहे लिखिए
0: जी।
1: और मैंने उस मूड को समझ कर जो भी उन्होंने लिखा था उसको कंपोज मैंने किया।
0: वहाँ उसको आपको चेंज ओवर करना पड़ा
1: बहुत, उसमें
0: कई अंतर बहुत खूबसूरत लंबा गीत है। और बड़ी हैरत भी हुई कि आप जैसे मौसीकार ने एक ऐसी, मैं कहूँगा कि हॉट धुन बनाई कि अच्छे अच्छे नयों को आपने पीछे छोड़ दिया इस धुन में।
1: मैं हॉट गाने बहुत ज्यादा हॉट बनाता हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि जैसी फिल्म हो।
0: जी हाँ, थोड़ा मिजाज से, थोड़ा फन का ताल्लुक मिजाज से बहुत कुछ होता है, इसीलिए थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन बेहद खूबसूरत है। और हम लीजिए, हम अपने सुनने वालों के लिए इस गीत को अब इस वक्त पेश कर रहे हैं।

0: जयदेव जी, साहिर साहब के साथ आपका काफी लंबा एसोसिएशन रहा है और कई फिल्में आपने उनके साथ की हैं।
1: फिल्में तो मैंने ज्यादा नहीं की उनके साथ, मगर वो मेरे पुराने साथी थे, हम एक ही शहर के रहने वाले हैं
0: जी, लुधियाना
1: और बहुत करीबी रिश्ता था हमारा,
0: जी।
1: बिल्कुल भाई थे हम। और
0: उनके साथ काम
1: हम दोनों मैंने फिल्म की उनके साथ
0: जी।
1: मुझे
0: मुझे जी ने
1: चार गाने लिखे, मेरी पहली फिल्म वीरू को भाई में उन्होंने गजल लिखी थी,
0: अच्छा,
1: सुरमई रात है सितारे हैं
0: जी, जी।
1: आज दोनों जहां हमारे हैं, सुबह का इंतजार कौन करे
0: जी।
1: बाद में उनके मरने से कुछ एक दो साल पहले दो फिल्में मैं उनके साथ कर रहा था, बदकिस्मती से उनको हार्ट अटैक आने शुरू हुए, वो दो फिल्में
0: मुकम्मल ना हो सकी।
1: वो नक्श साहब ने मेरे साथ की
0: फिल्म, हम दोनों के तमाम ही गीत उन्होंने लिखे और आपने धुने बनाई, बड़े मकबूल हुए, बहुत ही खूबसूरत हैं। इनमें एक खास कैफियत का हामिल एक गीत लगता है जो मोहम्मद रफी की आवाज में है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया,
1: तो इस जिक्र को
0: धुएं में उड़ाता चला गया। जरा इसके बारे में कुछ आप हमें बताइए कि इसका कैसे ये
1: इंटरेस्टिंग किस्सा ये कि सहर, चूंकि हम लोग बहुत करीब थे, तो सहर साहब मुझे अक्सर अच्छे अच्छे शोरा का कलाम सुनाया करते थे।
0: अच्छा,
1: अदम उनके बहुत फेवरेट,
0: अब्दुल हमीद अदम।
1: तो अदम साहब की बोल थी कि मैं गर्दिशों से जाम लड़ाता चला गया,
0: अच्छा,
1: मैं गर्दिशों से जाम लड़ाता चला गया, कुछ ऐसे था, वो रफ्तार रफ्तार जहां पिलाते चले गए, मैं रफ्तार रफ्तार होश में आता चला गया।
0: अच्छा,
1: तो इसको मैंने कंपोज किया था
0: जी।
1: और जब देव साहब ने इस ट्यून को सुना, तो उन्होंने पहली पिक्चर मैंने हम दोनों के साथ की थी
0: जी,
1: तो उन्होंने कहा मैं सहर साहब इसी पर कुछ लिखिए। अब सहर बहुत मुझ पर परेशान होते थे कि तुम ऐसी चीजें सुनाते हो जिनके ऊपर लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है
0: जी।
1: फिर भी वो बहुत इंटेलिजेंट राइटर था, तो उसने उस फिल्म के कहानी के हिसाब से मैं गर्दिशों से जान लाता चला गया वो लिखी है, जिंदगी मैं जिंदगी के साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धूल में
0: उड़ाता चला,
1: क्योंकि उसमें एक सिविल लाइटर का
0: सीक्वेंस
1: डाल दिया था,
0: उसमें म्यूजिक है खास, धुन आपने छोटी सी बनाई, म्यूजिकल लाइटर है वो, तो इस तरह ये गीत लिखा गया। साहिर साहब से आपने जैसे फरमाया कि आपका एसोसिएशन बहुत पुराना था, गीत निगार की हैसियत से आपकी क्या राय उनके बारे में?
1: सर सर वैसे तो शायर थे और नज़में लिखते थे
0: जी,
1: और जो
0: गज़लें भी लिखी हैं,
1: मगर वो बहुत काबिल आदमी था वो,
0: इसमें दो राय नहीं है।
1: मुझ पर उनका एहसान है कि उर्दू में उनसे बहुत सीखा, और उस आदमी की एक एक फोटोजेनिक मेमोरी थी, वो किसी भी किसी कलाम को पढ़ते थे उसमें जो भी बेस्ट हुआ करता था उनको हमेशा के लिए याद रहे,
0: वो रजिस्टर हो गया। जयदेव साहब, कई गीतों के बारे में गुफ्तगू हुई और जी तो चाहता था कि ये गुफ्तगू जारी रहे, मगर वक्त की कमी ने मजबूर किया है इस बात पर कि इस प्रोग्राम को हम ख़त्म करें, लिहाजा इससे पहले मैं एक बार आपको अपने तमाम सुनने वालों की जानिब से इस एजाज के लिए आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ एक बार फिर, जो फिल्म अनकही के लिए आपको मिला, और आपका यहाँ आपकी यहाँ आमद पर आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ उर्दू सर्विस की जानिब से और अपने तमाम सुनने
1: आप सबको मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, और सलाम प्यार दुआ नमस्ते जो भी समझिए,
0: खुदा हाफिज।
2: सभी ने भी आप सुन रहे थे मारूफ मौसीकार जयदेव के साथ की गई गुफ्तगू की एक रिकॉर्डिंग, आपसे गुफ्तगू की थी ए

अखबार ने। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमी। प्रोग्राम की पहली पेशकश अजान फिल्म का नगमा कैलाश खेर की आवाज में, नगमा निगार इरफान सिद्दीकी, मौसीकार सालिम सुलेमान।

और शामिल जब सुनी ए आर रहमान, जावेद अली और मोहित चौहान की आवाजों में रॉक स्टार फिल्म का नगमा, नगमा निगार जावेद अख्तर, मौसीकार ए आर रहमान।

ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद कौनैन हैदर से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। आज कोलकाता में मगरबी बंगाल की बीजेपी कानून साज पार्टी अपना रहनुमा मुंतखब करने के लिए मीटिंग कर रही है। डीआरडीओ और भारतीय फजाइया ने मुल्क में ही तैयार किए गए तारा ग्लाइड हथियार की पहली आजमाइशी परवाज कामयाबी के साथ मुकम्मल की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत के इस्तेहकाम, इत्तेहाद और तहजीबी ताकत की एक लाजवाल अलामत करार दिया है। बैनुल अक्वामी तिजारत की अमरीकी अदालत ने ट्रंप इंतजामिया की तरफ से भारत से लेकर दीगर मुल्कों तक आयद किए गए 10% महसूल को गैर कानूनी करार दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका और यूरोपीय यूनियन इस बात की यकीन दहानी में मुत्तहिद हैं कि ईरान कभी न्यूक्लियाई हथियारों का हामिल न हो। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल बीजेपी कानून साज पार्टी आज अपना लीडर मुंतखब करने के लिए कोलकाता में मीटिंग कर रही है। पार्टी के मरकजी मुशाहिद और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। बीजेपी ने रियासत के हालिया असेंबली इंतखाबात में तारीखी जीत दर्ज की है, जिसके बाद रियासत में टीएमसी का 15 साल दौरे हुकूमत खत्म हो गया। मगरबी बंगाल की पहली बीजेपी हुकूमत की हलफबरदारी तकरीब कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनाकिद होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी सदर नितिन नवीन और बीजेपी के जेर इक्तदार तमाम रियासतों के वजराए आला हलफबरदारी की इस तकरीब में शिरकत करेंगे। आकाशवाणी ने आज अपने कयाम को 90 साल मुकम्मल होने के मौके पर कौमी राजधानी में एक मैराथन का एहतमाम किया। तकरीबन 3.5 किलोमीटर की यह मैराथन आकाशवाणी भवन से शुरू हुई और कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक की इमारत के रास्ते से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर इख्तिताम पजीर हुई। इसमें आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती के मुलाजमीन के साथ साथ उनके अरकान खानदान ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जैन भी मौजूद थे। दिफाई तहकीक तरक्की की तंजीम डीआरडीओ और भारतीय फजाइया ने मजीद फासले तक मार करने वाले छोटे हथियार तारा की पहली आजमाइशी परवाज कामयाबी के साथ मुकम्मल की। ये तजुर्बा कल ओडिशा के साहिल से कुछ दूर किया गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस पहली आजमाइशी परवाज पर डीआरडीओ, भारतीय फजाइया, डीसीपीपी और सनत को मुबारकबाद दी है। उन्होंने इस कामयाबी को मुल्क में ही तैयार किए गए दिफाई हथियारों की तरक्की के मैदान में एक अहम पेशरफ्त करार दिया है। वजारत दिफा ने एक बयान में कहा कि मार करने की दूरी में इजाफे वाला यह हथियार तारा मुल्क में तैयार किया गया ऐसा पहला ग्लाइड हथियार निजाम है जो बगैर रहनुमाई वाले हथियार को बारीक निशाने वाले हथियार में बदल देता है। वजारत ने बताया कि तारा को हैदराबाद के तहकीकी मरकज इमारत प्लस और डीआरडीओ की दीगर लेबोरेटरीज ने मिलकर तैयार किया है। इसका मकसद कम कीमत वाले हथियार की बिल्कुल सही निशाने पर पहुंचकर दुश्मन को हलाक करने की सलाहियत में इजाफा करना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 11 मई को गुजरात में सोमनाथ मंदिर जाएंगे। 1951 में मंदिर का अहया किए जाने के बाद भारत के पहले सदर जमहूरिया राजेंद्र प्रसाद के हाथों इफ्तिताह किए जाने के बाद से 75 साल पूरे होने के मौके पर जनाब मोदी वहां जाएंगे। वजीर आजम ने आज एक कौमी रोजनामे में एक मजमून तहरीर किया है और इसमें ये जानकारी दी गई है। अपने मजमून में जनाब मोदी ने कहा कि उन्हें चंद माह के अंदर ही सोमनाथ से वाबस्ता दो अहम तकरीबात में शिरकत करने का शरफ हासिल हो रहा है। इससे कबल इस साल के शुरू में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शिरकत की थी, जिसका एहतमाम मंदिर पर पहले हमले को 1000 साल मुकम्मल होने के सिलसिले में किया गया था। वजीर आजम ने सोमनाथ को भारत की तहजीबी कुव्वत और मजबूती की अलामत करार दिया। जनाब मोदी ने कहा कि मंदिर के सफर से तबाही से लेकर तखलीक तक की एक तहरीक की अक्कासी होती है और ये इससे ये जाहिर होता है कि बार बार के हमलों और मुश्किलात के बाद भी किस तरह अकीदा और सकाफत बरकरार रह सकते हैं। वजीर आजम ने आजादी के बाद मंदिर की तामीर नौ में भारत के मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल के रोल को याद किया। जनाब मोदी ने कहा कि सरदार पटेल का यह मानना था कि सोमनाथ की तामीर नौ एक कौमी फर्ज है। वजीर आजम ने

सोमनाथ की दास्तान को सरकार के विकास भी विरासत भी नजरिए के साथ मुंसलिक किया, जिसमें विरासत को महफूज रखते हुए तरक्की पर तवज्जो मरकूज की जाती है। जनाब मोदी ने कहा कि मंदिर की तारीख से वाबस्ता दलेरी और कुर्बानी के एजाज के सिलसिले में अगले 1000 दिन के लिए सोमनाथ में खसूसी पूजा अर्चना की जाएगी। जनाब मोदी ने हमवतनों पर भी जोर दिया कि वो सोमनाथ जाएं और बकौल उनके मुल्क की तहजीब के अटूट जज्बे को महसूस करें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।

0: में बैन अल-अक्वामी तिजारत से मुतालिक अदालत के तीन जजों के पैनल ने यह फैसला सुनाया कि सदर ट्रंप ने तिजारत से मुतालिक कानून के तहत सदर को दिए गए कांग्रेस के इख्तियारात से तजावुज करके इकदामात किए हैं। छोटे कारोबारी घरानों की जानिब से अदालत ने इन महसूलात को चैलेंज किए जाने के बाद ये फैसला सामने आया है। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पिछले साल नाफिज किए गए वसी तर आलमी महसूलात पर रोक लगाए जाने के बाद ये नए महसूल लगाए गए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका और यूरोपीय यूनियन इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुत्तहिद हैं कि ईरान कभी भी न्यूक्लियाई हथियार हासिल न कर पाए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फोन डेर लीन के साथ टेलीफोन पर उनकी बातचीत बहुत अच्छी रही और उन्होंने मगरबी एशिया की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। सदर ट्रंप ने कहा कि तरफेन के दरमियान इस बात पर इत्तफाक है कि एक ऐसे निजाम को लाखों लोगों की जानों को खतरे में डालने वाला हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती जो अपने ही लोगों की जान लेता हो। इस बातचीत में अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तजारती ताल्लुकात पर भी तवज्जो दी गई। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फोन डेर लीन ने भी अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस बातचीत की तस्दीक की है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जय शंकर ने आलमी इक्तिसादी इस्तेहकाम के एक सुतून के तौर पर भारत के बढ़ते हुए रोल की अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने बैन अल-अक़वामी खुशहाली के तई मुल्क की काबिल जिक्र खदमात को उजागर किया। वजीर मौसूफ ने सूरीनाम में समाज के मुख्तलिफ तबकों के नुमाइंदों से खिताब में यह तबसरा किया। खारजी उमूर के वजीर ममलकत कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि माइग्रेशन से मुतालिक भारत के नजरिए की रहनुमाई माइग्रेंट्स के तहफ्फुज़ माइग्रेशन करने वालों से मुतालिक जामे हुक्मरानी और मजबूत बैन अल-अक़वामी तआवुन के उसूलों से होती है। वजीर मौसूफ ने न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तक़िल मिशन में माइग्रेशन के जायजे से मुतालिक दूसरे बैन अल-अक़वामी फोरम के मंदूबीन के सरबराहान से खिताब कर रहे थे। सऊदी अरब ने अपने फौजी अड्डों और फजाई हदूद तक अमरीकी फौज की रसाई को मुअत्तल कर दिया है। इसकी वजह से सदर डोनाल्ड ट्रंप को आबनाई हुरमुज़ से बहरी जहाजों को बहिफाजत निकालने के अपने मंसूबे को बीच में ही तर्क करना पड़ा। अमरीका के दो अहदेदारों ने इस बात की तस्दीक की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात लखनऊ के एकाना स्टेडियम में बारिश से मुतासर मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। आज कोलकाता में मगरबी बंगाल की बीजेपी कानून साज पार्टी अपना रहनुमा मुंतखब करने के लिए मीटिंग कर रही है। डीआरडीओ और भारतीय फजाइया ने मुल्क में ही तैयार किए गए तारा ग्लाइड हथियार की पहली आजमाइशी परवाज कामयाबी के साथ मुकम्मल की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत के इस्तेहकाम इत्तेहाद और तहजीबी ताकत की एक लाजवाल अलामत करार दिया है। बैन अल-अक़वामी तिजारत की अमरीकी अदालत ने ट्रंप इंतजामिया की तरफ से भारत से लेकर दीगर मुल्कों तक आयद किए गए 10% महसूल को गैर कानूनी करार दिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन शाम के 5 बजे चाहते हैं या हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पज़ीर होती हैं।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। संध्या के 5 बज चुके हैं। अब युवा साथी अपना दैनिक कार्यक्रम सुनें।

आपसे आपसी बातचीत भी करेंगे, गीत भी सुनवाएंगे, और दोस्तों हम बात करें तो मेक इन इंडिया की। और इसका दोस्तों अर्थ अगर हम बात करें, इसकी अर्थ की जानने की कि मेक इन इंडिया क्या है, कि इसमें भारत में बनाओ अभियान, भारत सरकार की ये पहल एक बहुआयामी अभियान है जिसमें भारत को बनाने का अर्थ निहित है। मेक इन इंडिया अभियान की सफलता से मेड इन इंडिया अर्थात भारत में निर्मित का स्वर्णिम स्वपर पूर्ण होगा। युवा साथियों, इस अभियान का उद्देश्य भारत को विनिर्माण के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करने का है। यह संकल्प औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाकर आर्थिक समृद्धि लाने की धारणा पर आधारित है। इस अभियान का सीधा सा अर्थ है कि उत्पादन बढ़ाओ, रोजगार के अवसर उत्पन्न करो, क्रय शक्ति भी बढ़ाओ, विकास प्रक्रिया में सबको लाभ दो। इस अभियान से संपूर्ण विश्व की लगभग 300 प्रमुख कंपनियों को जोड़ने की योजना भी थी, और इसके लिए मुख्य 25 क्षेत्रों की पहचान कर ली गई थी जिनमें भारत अग्रणी स्थान बन सकता था। मेक इन इंडिया पहल इसकी प्राचीनता को संरक्षित और प्रोत्साहित कर रही है, साथ ही इसकी नवीनता और आधुनिकता को भी मजबूत करता है। श्रोताओ, अगर हम बात करें कि इस मेक इन इंडिया के जो लाभ थे योजना के, वो भारत को एक विनिर्माण हब के रूप में विकसित करना था, क्योंकि विभिन्न देशों में कंपनियों को भारत में कर छूट देकर अपने उद्योगों में भारत में लगाने के लिए प्रोत्साहित करना था, जिसकी भारत को अपने आयात बिल कम हो सके। और अगर हम लाभ की बात करें तो भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना भी था, रोजगार के अधिक अवसर भी हम इस मेक इन इंडिया के माध्यम से दे सकते हैं। रोजगार के अधिक अवसर के साथ साथ दोस्तों उनकी जो प्रति व्यक्ति आय है उसके अंदर भी सुधार होता है, और अगर हम बात करें तो अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने का मौका मिलता है। भारत में जब हमारा ये फंड बढ़ेगा, जब हमारी ये मेक इन इंडिया पर हम सभी एकाग्र रूप से सोचने के लिए मजबूर होंगे, और जब हम प्रति व्यक्ति आय की हम बात करते हैं या उसकी आय की बढ़ाने की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से भारत का वो जो एक हिस्सा है, जो एक खजाना है या वो एक कोष है, उसमें भी बढ़ोतरी होती है। और भारत में बढ़ता निवेश की वजह से हम रक्षा के अंदर उस रक्षा के उन खोशों को भी बढ़ा सकते हैं। खैर दोस्तों, हम ये भी कर सकते हैं कि हम आपको गीत सुनवा दें, और गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं, आइए आप सुने आजकल फिल्म। ये गीत राहत फतेह अली खां का, गीत इरशाद कमली का और संगीत प्रीतम का। सुने लव आजकल फिल्म से ये गीत।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा साथियों की सेवा में आज नमस्कार जसवीर सिंह की तरफ से। युवा साथियों, कार्यक्रम लेकर हम उपस्थित हैं और आज के इस कार्यक्रम में हम

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: जी हाँ युवा साथियों, इस संदेश से पहले हमने आपको सुनवाया गीत, आवाज थी राहत फतेह अली खां की, फिल्म का नाम था लव आज कल। और दोस्तों, बात हम मेक इन इंडिया से कर रहे थे और बात पहुंचते हैं दोस्तों एक इंसान की, एक आदमी की, एक प्राणी की, कि अहिंसा जो है वो हमारा परमो धर्म होना चाहिए। हमारा सबसे पहले कर्तव्य ये होना चाहिए कि हम किसी भी प्राणी के साथ तन मन कर्म वचन या वाणी से कोई भी किसी तरह से उसको नुकसान न पहुंचाएं। और युवा साथियों, ये तभी हो सकता है कि जब हम अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी सोच को अपने नियंत्रण में रखें।

दोस्तों, हमारा मन और हमारे जो वचन है, यह हम जिससे बातचीत करते हैं, जब तक यह हमारे कंट्रोल में नहीं होंगे, हमारे नियंत्रण में नहीं होंगे, तो निश्चित रूप से हम किसी न किसी तरह से किसी को कटु वचन कह सकते हैं। और दोस्तों, ये भी एक प्रकार की हिंसा है। अहिंसा का जो महत्व अगर हम बात करें हमारे ज़िंदगी के अंदर, तो एक ज़िंदगी को सुव्यवस्थित ढंग से और एक डिसिप्लिन में, एक अनुशासन में चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे जो विचार, हमारी जो सोच हमें हमारी ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। यदि हमारी सोच नकारात्मक होगी, तो निश्चित रूप से हम कोई भी काम करेंगे उसके पहले नकारात्मक पहलू को देखते हुए हम उस काम को कर पाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे और उसको वहीं छोड़ देंगे। अगर यदि हम सकारात्मक सोचेंगे किसी भी पहलू को करने से पहले, किसी भी काम को करने से पहले, तो निश्चित रूप से हम उसको सफल रूप से उसको काम कर पाएंगे। और युवा साथियों, जब हम अहिंसा परमो धर्म की बात करते हैं, तो ये सबसे बड़ा अहिंसा, जिसकी हमने जैसे पहले भी बताया कि तन मन और कर्म वचन और प्राणी से, वाणी से किसी भी प्राणी को जब हम नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो ये सबसे बड़ा धर्म कहा जाता है, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम कहा जाता है। आधुनिक काल में अगर हम महात्मा गांधी जी ने भारत की आज़ादी के लिए जो आंदोलन चलाया था, वह काफ़ी सीमा तक अहिंसात्मक था और उनकी इन आंदोलनों की वजह से अंग्रेज सरकार हिल चुकी थी। और दोस्तों, ये सब बातें जब हम करते हैं, जबकि हमारे शास्त्रों में भी लिखी हुई है, इन सभी बातों को जब हम अपने मन में दोहराते हैं या सोचते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी वो जो कमियां हैं हमें महसूस होती हैं, और उन कमियों को दूर करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य हो जाता है। और जब हम उन कमियों को दूर करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जो मन, वचन, वाणी, कर्म से हम किसी के साथ भी हिंसा नहीं कर सकते या कटु वचन नहीं बोल सकते। क्योंकि दोस्तों, अगर यदि आप अपनी बात करें, तो अगर आप में कोई कमियां हैं, तो वो आप सबसे अच्छे एक डॉक्टर के रूप में अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं, उस बीमारी को दूर कर सकते हैं जो आपके अंदर है। और आप बेखूबी से जानते हैं कि आप में क्या क्या कमियां हैं। अगर यदि आप आंखें बंद करके अगर थोड़ी देर के लिए अपने आप को एकांत में, एक शून्य में ले जाकर सोचें, तो निश्चित रूप से आपको महसूस होगा कि आप में क्या कमियां हैं। उन कमियों को दूर करना और उन कमियों पर कार्य करना, ये हमारा कर्तव्य बन जाता है। और अहिंसा है वो हमारा परम धर्म हो। जब हम इस तरह से सकारात्मक सोच के साथ ज़िंदगी को आगे ले जाएंगे, तो निश्चित रूप से युवा साथियों, ये जो सब काम हैं, ये सब सारे जो हम जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं, जो सकारात्मक सोच की हम बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये हमें अपने आगे तरफ धकेलता जाएगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे। खैर, हम आगे बढ़ रहे हैं प्रोग्राम के अंदर भी, और गीत जो है हम आपको सुनवा देते हैं। तब तक यमला पगला दीवाना फिल्म से आवाज़ अली परवेज मेहदी की, श्वेता की पंडित की और राहुल बी सेठ महालक्ष्मी की। और ये गीत इस को लिखा है हमारे राहुल बी सेठ और नोमन जावेद ने, संगीत नोमन जावेद का। तो आइए सुने पगला दीवाना फिल्म का ये गीत।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: युवा साथियों, बात सकारात्मक सोच की और इन सभी सोचों के साथ, जैसे कि हमने अहिंसा परमो धर्म के बारे में बात की, तो युवा साथियों, इन सभी के लिए एक नियत स्थान, नियत समय होता है। अपने 24 घंटे जो हमारे पास हैं, उन 24 घंटों के अंदर हम अपने आप को किस तरह से व्यवस्थित करते हैं, किस तरह से हम अपने उस समय की सारणी को बांटते हैं कि सुबह उठेंगे, इतने बजे हमें उठना है, उठते हमें नहाना धोना है, जो पूजा पाठ करनी उस करने के बाद हमें अपने पढ़ने के लिए इतना समय चाहिए, उसके बाद हम थोड़ी देर खाना खाएंगे या हम चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे। तो ये सब जो समय का जो प्रबंधन करना है, ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हम किसी भी कार्य को अगर हम करना चाहते हैं और उसकी अंदर सफलता लेना चाहते हैं और अच्छे ढंग से सुनियोजित ढंग से हम उस काम को करना चाहते हैं, उसमें पूरी तरह से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका सही समय सारणी प्रबंधन, समय का प्रबंधन करना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, अगर यदि समय प्रबंधन हमारा सही होगा और उसका जो हम महत्व समझेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी वो जो कोशिशें हैं, जो हमारी जो प्रयास हैं, जिसमें हम शुरू कर रहे हैं और प्रबंधन कर रहे हैं समय का, उसमें हमें

निश्चित रूप से सफलता मिलती है। क्योंकि युवा साथियों, आप भी जानते हो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में या हम आपके जो जो शैक्षणिक परीक्षाएं हैं जो चलती हैं, तो आप निश्चित रूप से उस परीक्षाओं को करने के लिए, उनको अटैम्प्ट करने के लिए, पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए आप एक निश्चित समय सारणी बनाते हैं, और जिसमें आप ये तय करते हैं कि आपको कितने समय तक पढ़ना है और उसके बाद कितने समय तक आपको रेस्ट करना है, या अपने दिनचर्या के लिए जो समय जरूरी कार्य हैं उनको करना है, तो उनके लिए आपने अलग अलग से प्रबंध बनाए होते हैं, कब आपको सोना है, कब आपको उठना है। तो ये एक समय सारणी, जब आप समय का प्रबंधन कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से उस कार्य को प्राप्त करने के लिए या उस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए जो आपकी कोशिश है वो आधी रह जाती है। क्योंकि निश्चित रूप से जब आप 100% देंगे, तो जब समय प्रबंधन के साथ 100% देंगे, तो वो निश्चित रूप से वो 100% 200% के रूप में जाके कन्वर्ट हो जाएगा, और निश्चित रूप से फिर उसमें सफलता मिले ये बिल्कुल निश्चित हो जाती है, मोहर लग जाती है। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए समय को ठीक से व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। जब आपके पास कोई योजना है, तो युवा साथियों, आपको बस इसे सही तरीके से लागू करना है कि कैसे कैसे आपको समय को बांटना है। आपको केवल अपने काम पर ध्यान देने की जरूरत है जिसमें आपके परिणाम की गुणवत्ता में बढ़ोतरी हो। सही समय प्रबंधन आपका कम तनाव, कम समय और कम प्रयासों के साथ अपने कार्यों को पूरा करने में मदद करता है। इस प्रकार यह तनाव से निपटने के लिए एक शानदार तरीका है, और निश्चित रूप से उसमें जो सफलता का जो रेशियो होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। और इससे, समय प्रबंधन से, हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि हमने सभी कार्य कर लिए हैं। अब निश्चित रूप से जब एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम से ठीक एक दिन पहले आप उन पॉइंट्स, उन चैप्टर्स को, उन मुख्य बिंदुओं को दोहराते हैं और अपने मन में एक विश्वास पैदा करते हैं कि आपने उस परीक्षा के लिए आपने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। आपको इतने जो चैप्टर्स हैं, जितना सिलेबस है, आपने उसको बिल्कुल अच्छे ढंग से उसको पढ़ लिया है, मुख्य बिंदुओं को दोहरा लिया है। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, तो हम उसको पूरी तरह से अटेम्प्ट करके उसमें अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और हम अगर इसकी बात, हम निष्कर्ष की बात करें युवा साथियों, तो हम सभी को समय की कीमत को समझना चाहिए और इसके प्रबंधन का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि हमें जो काम करना है वो किस किस तरह से, किस समय में, किस में उचित रहेगा, हमें वो समय का प्रबंधन करना चाहिए। युवा साथियों, हमें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए कड़ी मेहनत करें, ताकि आप अपने आप को साबित कर सकें। आप अपने काम की योजना बनाते समय सभी तरह की अच्छाई और बुराई का मूल्यांकन करें, जिससे आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद मिल सके। और बिल्कुल सही बात है युवा साथियों, क्योंकि जब हम कोई भी कार्य करते हैं, तो उसमें सफलता, असफलता कुछ हद तक ये तय कर देती है कि आपने उसे कितना प्रबंधन, समय का प्रबंधन किया है। क्योंकि दोस्तों, जब हम क्रिकेट खेलते हैं, तो जो क्रिकेट में बल्लेबाज जब शॉट खेलता है, जब उस शॉट को मारता है, बल्ले से गेंद को मारता है, तो उसकी एक टाइमिंग है, उसको देखा जाता है कि जब वो टाइमिंग भी इतनी सीधी और सरल होती है कि वो निश्चित रूप से उस गैप में खेल के 4 रन या 6 रन प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है रन लग के 2, 1, 2, 3 बंदे भी कन्वर्ट कर सकता है। इसलिए दोस्तों, समय का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। तो युवा साथियों, ये भी ज़रूरी है कि हम आपको गीत भी सुनवाते चलें, बातचीत भी करते चलें आपके साथ, और गीतों के साथ आपका मनोरंजन भी करते चलें। बिल्कुल हमें ध्यान है, और हम अगला गीत आपको फुकरे फिल्म से सुना देते हैं, सोना महापात्रा की आवाज़ में, और जो गीत है मुन्ना धीमन का और संगीत राम संपत का। तो आइए सुने फुकरे फिल्म से ये गीत।

जी हाँ युवा साथियों, अभी आप सुन रहे हैं फुकरे फिल्म से ये गीत, और आवाज़ थी सोना मोहपात्रा का। और दोस्तों, युववाणी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से, और आपने ट्यून किया हुआ है मीडियम वेव पर 918 किलो हर्ट्स पर, DRM चैनल 909 किलो हर्ट्स पर, FM 100.1 मेगा हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। और आज का युववाणी अंक लेकर उपस्थित है आपका दोस्त जसवीर सिंह। क्या दोस्तों, बात कार्यक्रम की अगले विषय की, और हम जैसे कि हम पिछले लगभग टॉपिकों से ये बातचीत करते आ रहे हैं कि सकारात्मक सोच आदमी की जो कार्य क्षमता है उसके अंदर लगभग आधे से ज़्यादा प्रतिशत उसके अंदर बढ़ोतरी कर देती है। यदि आपकी सकारात्मक सोच, समय प्रबंधन और अच्छी सोच के साथ है, जब आप किसी भी कार्य को करते हैं तो निश्चित रूप से आपका वो कार्य सफल रहता है। और जैसे कि हम अक्सर एक उदाहरण दिया जाता है कि एक गिलास में आधा पानी भर कर रख दीजिए, तो अगर उसमें यदि हम ये कहें कि ये आधा गिलास खाली है, ये उसकी सोच है, क्योंकि वो नकारात्मक सोच रहा है। अगर यदि वो ये कहे कि आधा गिलास पानी से भरा हुआ है, तो निश्चित रूप से वो सकारात्मक सोच है जिससे हम कहते हैं। और अक्सर ये युवा साथियों, एक रिसर्च भी किया गया है कि एक दो गमले लिए गए और दोनों गमलों के अंदर पानी डालकर पौधे लगाए गए, पानी के अंदर वो पौधे रखे गए और दोनों को अलग अलग कमरों में रखा गया। अब दोस्तों, एक कमरे के अंदर एक व्यक्ति को एक सप्ताह की उसकी ड्यूटी लगाएगी कि आपको प्रत्येक दिन आपको जाकर एक कमरे के अंदर जो एक पौधा है वो सेम पौधे हैं और उसके अंदर उसको आप अच्छी अच्छी बातें करेंगे, दूसरे पौधे में जाकर उससे आप एक कटु वचन बोलेंगे। तो 7 दिन का ये रिसर्च चला और जब 7वें दिन इसका अनुसंधान या इसका परिणाम जानने के लिए वहाँ पर जो पहुँचे वैज्ञानिक पहुँचे या विद्वान लोग पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि जिस रूम के अंदर जिस पौधे को कटु वचन के रूप में कहा गया, वो पौधा

सूख गया या वो मर गया। और जिस पौधे को अच्छी अच्छी बातें या सकारात्मक बातें कही गई तो वो पौधा फल फूल गया और अपने ग्रो करता रहा, अपने आगे बढ़ता रहा, विकसित होता रहा। और दोस्तों निश्चित इस रूप से इस बात से हमें ये बात बिल्कुल समझ में आ जाती है कि सकारात्मक सोच एक जिंदगी का पहलू है, मुख्य अंग है। इसके बगैर जिंदगी को जीना एक आप अंधेरे में एक प्रकार से घूमते रहना है। अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जब सकारात्मक सोच इतनी ज़रूरी है तो निश्चित रूप से जो समय प्रबंधन की बात हम बात कर रहे थे कि सकारात्मक सोच जरूरी है, तो ये सकारात्मक सोच के साथ आपकी कार्यक्षमता भी बढ़ जाती है। आपका परिणाम जो आपने 50% का समझ रखा है निश्चित रूप से वो 80% तक भी जा सकता है। और इस तरह से आपकी सकारात्मक सोच आपके काम की कार्यक्षमता बढ़ा देता है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ला देता है जिससे कि आप उस काम को बहुत अच्छे ढंग से कर लेते हैं। और दोस्तों ये सोच इसलिए भी ज़रूरी है, कभी भी आपके मन में अगर कोई बुरे ख्याल या गलत विचार आने लग जाएं तो निश्चित रूप से आप उसके सकारात्मक पहलू को देखें, क्योंकि पहलू सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक नकारात्मक सकारात्मक। तो दोनों पहलुओं के बजाय हम ये देखें कि वो आधा गिलास पानी से भरा हुआ है, तो निश्चित रूप से जो आपको करना है, जो काम करना, वो आपको कभी भी कठिन नहीं लगेगा और ना आपकी पहुँच के बाहर लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये काम मैं कर सकता हूँ और आप कर भी जाएंगे और इतने बढ़िया ढंग से कर लेंगे। तो वहाँ पर अगर हम फिर कहें कि अगर हम सकारात्मक सोच के बारे में और हम उसके बाद फिर ये कहें कि ये नहीं नहीं ये हम कर नहीं पाएंगे, तो निश्चित रूप से पहले अगर आपने ये सोचना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से वो काम भी नहीं हो पाएगा। खैर इतना काम तो ज़रूर होगा कि दोस्तों हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से गीत भी सुनवाएंगे और गीत सुनवाते रहेंगे। और ये गीत हम आपको सुनवा देते हैं जिसे हमने लिया है फिल्म तन्नू वैट्स मन्नू से, और सुनते हैं ये गीत।

युवा साथियों, बात सकारात्मक सोच की और इन सभी बातों के साथ हम अपनी ज़िंदगी को नया आयाम दे सकते हैं, नई सोच, नई दिशा दे सकते हैं। जब ज़िंदगी हम पर बोझिल होने लगे दोस्तों, कभी कभी आपको ऐसा लगे कि ज़िंदगी थोड़ी सी हम पर बोझ महसूस हो रही है, तब आप सकारात्मक सोच की बिंदुओं को सोचना शुरू कर दीजिए तो निश्चित रूप से जो आपके दिमाग में जो बोझिल शब्द आप पर आएगा वो तो निश्चित रूप से आपसे धीरे धीरे दूर होता चला जाएगा। और दोस्तों, बात रेडियो की है तो 90 वर्ष रेडियो ने पूरे कर लिए और इन 90 वर्षों की लंबी यात्रा के अंदर रेडियो आपके साथ हमेशा रहा है, आपके मनोरंजन में, आपके ज्ञान की वृद्धि में, आपकी उन सभी कार्यों के अंदर जब आप अकेले हैं। क्योंकि दोस्तों, जब ये सोशल मीडिया, ये नेट, ये नहीं होते थे तो निश्चित रूप से एक माध्यम टीवी और ये कुछ भी नहीं होता था, तो एकमात्र साधन था वो रेडियो। तो रेडियो बहुत ऐसे समय थे जब सुबह रेडियो की आवाज़ सुनकर लोग उठते थे और वो एक मीठी मीठी सी आवाज़ वो पहुंचती थी कानों में, मंगल ध्वनि रूप में हम तक पहुंचती थी, वंदे मातरम पहुंचती थी। तो ये सब बातें जब हम रेडियो पर सुनते हैं, जैसे कि आज भी अब युववाणी कार्यक्रम इस रेडियो के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है, आज की इस टेक्नोलॉजी के अंदर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वो धीरे धीरे आकाशवाणी ने भी उसको अपने स्तर पर सुधारा है और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और आपको चाहे मीडियम वेव की बात करें, चाहे DRM चैनल की बात करें, FM की बात करें, मोबाइल ऐप की बात करें, इन सभी बातों को लेकर आकाशवाणी ने आपसे बहुत दूर दराज तक आपसे एक रिश्ता बनाया है। और ये जो रिश्ता है निश्चित रूप से युवा साथियों, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा रिश्ता है। और युववाणी की हम बात करते हैं तो युववाणी के इस अंक की हम बात करें तो गीत हम आपको सुनवा देते हैं। और ये गीत हमने लिया है फिल्म नागमणि से और आवाज़ें अनुराधा पौडवाल की और गीत देव कोहली का, संगीत अनु मलिक का। पहले गीत सुनते हैं और बातचीत और भी करेंगे।

जी हाँ युवा साथियों, अभी आपने नागमनी फिल्म से ये गीत सुना। आवाज़ थी अनुराधा पौडवाल की, गीत देव कोहली का, संगीत अनु मलिक का। खैर दोस्तों, बात इस अंक की, युवानी की इस अंक की, और हम बात करते हैं 8 मई की, आज के दिन की, आज के इतिहास की। तो हम आपको बता दें दोस्तों कि 8 मई 1901 को ऑस्ट्रेलियाई लेबर पार्टी की स्थापना की गई, और 8 मई 1933 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ 21 दिन का उपवास शुरू किया, और 8 मई 1980 को WHO ने चेचक स्मॉल फॉक्स के उन्मूलन की घोषणा की गई, और 8 मई 1884 को हैरी एस ट्रूमन अमेरिका की 33वीं राष्ट्रपति बने, और 8 मई 1895 को गोपबंधु चौधरी उड़ीसा की क्रांतिकारी थी। और इस तरह से दोस्तों, ध्रुपद गायक जिया फेराडोन डागर, जो 8 मई 2013 को उन्होंने ये जो डिग्री प्राप्त की, और

पद्म विभूषण से सम्मानित नेता सत्यव्रती मुखर्जी 8 मई 1932 को उनको प्राप्त हुआ। और ये कुछ एक आज की घटनाएं थी जिस पर हमने आपसे बातचीत की। खैर दोस्तों, बातचीत हम आपको और भी सुनवाते रहेंगे, बात करते रहेंगे। और हम अगर हम कल के युववाणी अंक की हम बात कर लें तो दोस्तों, कल के युववाणी अंक में आज की बात का विषय रहेगा ऑनलाइन लर्निंग का बढ़ता प्रभाव, नई शिक्षा नीति और युवा, राजस्थान के लोक नृत्य, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज का इतिहास। और इसके अलावा हम आपको सुनवाएंगे भेंट वार्ता, आरएस भर्ती 2024 में चयनित अभ्यर्थी, वार्ताकार महेंद्र गुदारा व साहिल चुरासिया से नवीन सिसोदिया की बातचीत, समय कल शाम 5 बजे युववाणी कार्यक्रम में। और दोस्तों, आज की इस युववाणी अंक की हम बात करें तो गीत बिल्कुल तैयार है, हम ये गीत सुन लेते हैं। और जो कि फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ से, आवाज़ उदित नारायण, अलका याग्निक, अमित कुमार की।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में सुनिए बुलंदी फिल्म से जजे बी कुमार के नेकी आवाजों में ये गीत, गीत आनंद बख्शी का, संगीत विजू शाह का। और युवा साथियों, ये है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश।

युवा साथियों, आज का युवाणी अंक आपके रेडियो सेट तक पहुंचा है और ये हमारे इंजीनियर टीम आपके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर इस प्रोग्राम को आपके रेडियो सेट तक पहुंचा रहे थे। और कंट्रोल रूम पर हैं जगदीश चंद्र करोड़ीवाल चेत्राम और ट्रांसमीटर पर हमारे साथी इंजीनियर हैं ओम प्रकाश रोलन, सुभाष टाक, देवेंद्र रोकना। अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने अपने दोस्त जसवीर सिंह को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम चला 909 किलो हर्ट्स पर, एफएम 100.1 मेगा हर्ट्स पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। संध्या के 6 बज चुके हैं, आइए सुने कार्यक्रम विवरण। पहले सुनिए इस सभा के शेष प्रसारणों की जानकारी और उनका प्रसारण समय। अब से थोड़ी देर बाद संध्या 6:05 पर आप सुनेंगे सैराइकी की कड़ी संख्या 29। चौपाल कार्यक्रम होगा संध्या 7 बजे। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे राजस्थानी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीतारो गजरो। उपलब्ध रही तो मौसम संबंधी जानकारी और बाजार भाव भी बताए जाएंगे। संध्या 7:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से जानकारी और गीत, और आज की फिल्म होगी जंगली। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। रात्रि 9:30 पर हमारा पंजाबी साप्ताहिक कार्यक्रम मिट्टी दी खुशबू सुनेगा। समय एक बार फिर से नोट

कीजिए आज रात्रि 9:30 पर। फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे। अभी आप सुन रहे थे इस कार्यक्रमों की जानकारी का विवरण और उनका प्रसारण समय। आइए अब सुने कल प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। आप भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुनेंगे प्रातः 6:10 पर। चिंतन सवेरे 6:45 पर। विषय रहेगा ओमकार साधना और स्वर रहेंगे चैतन्य गुरु के। कार्यक्रम विवरण सवेरे 6:50 पर। खेतिया रवस्थ्य कार्यक्रम में सवेरे 7:10 पर जानकारी दी जाएगी सब्जियों की फसल में सामयिक कार्य। मानस गान की कड़ी संख्या 238 सुनवाई जाएगी सवेरे 7:20 पर। सुप्रभात कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर जानकारी के विषय होंगे पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र, आत्म सम्मान, प्रकृति से प्रेम और इसके अलावा आप सुनेंगे हिंदी काव्य पाठ कवि सुरेंद्र सिंह बेनीवाल का। सुगम संगीत में चंद भजन सुनेंगे सवेरे 8:45 पर। राजस्थान लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल होगा सवेरे 9:10 पर। इसमें कलाकार होंगे पूर्ण राम मेहरड़ा। फिल्म संगीत डुएट सॉन्ग आप सुनेंगे सवेरे 9:30 पर। फिल्म संगीत सवेरे 10 बजे, 11 बजे और कार्यक्रम विवरण आप सुनेंगे दोपहर 12 बजे। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत आप सुनेंगे दोपहर 12:05 पर। चंद गजलें सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत में दोपहर 12:30 पर। खेत खलिहान कार्यक्रम में दोपहर 12:50 पर जानकारी का विषय होगा कृषि यंत्रों की देखभाल। दिन में 1:05 पर महिला जगत कार्यक्रम में जानकारी दी जाएगी बुजुर्गों की याददाश्त बढ़ाने वाले मेमोरी गेम्स, गर्भावस्था में हाइड्रेशन से कैसे बचें, गर्मी के मौसम में जल की बचत और खिचड़ी के विभिन्न प्रकार। रजनी बोधी ये कार्यक्रम पेश करेंगी। उर्दू सर्विस आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित होगा संध्या 3 बजे। फिल्म संगीत दिन में 2:30 पर। संध्या 5 बजे युववाणी कार्यक्रम आप सुनेंगे इसमें भेंटवार्ता सुनवाई जाएगी आरएस भर्ती 2024 में चयनित अभ्यर्थी महेंद्र गुदारा फे साहिल जुरासिया से नवीन सिसोदिया की बातचीत। कार्यक्रम विवरण संध्या 6 बजे आप सुनेंगे। चौपाल कार्यक्रम में संध्या 7 बजे राजन मुदगल जानकारी देंगे आपसी बातचीत विषय पर मित्र कीटों का बचाव कैसे करें, बीज खरीददारी करते समय सावधानियां, हरी खाद के लिए ढेंचा की खेती, बाजार भाव, मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध रही तो ये भी आपको दी जाएगी। फिल्म संगीत संध्या 7:45 पर। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम में की फिल्म से जानकारी और गीत और रात्रि 9:15 पर सुगम संगीत। आकाशवाणी दिल्ली से रात्रि 9 बजे 9:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका संस्कृति भारती। आकाशवाणी दिल्ली से रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। श्रोताओं भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण और कार्यक्रम विवरण समाप्त करने से पहले हम आपको याद दिला दें आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे पंजाबी साप्ताहिक कार्यक्रम मिट्टी दी खुशबू प्रस्तुतकर्ता जसवीर सिंह। मीडियम वेव 326.79 अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर। डीआरएम चैनल 909 किलो हर्ट्स पर। एफएम 100.1 मेगा हर्ट्स पर। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं और संध्या की 6:05 हो चुके हैं। अब सुनिए सराय की कड़ी संख्या 29वीं।

एक गीत तुसा सुना है, पसंद आया हो सी? भैनों भिरावो, आजकल खाना बेकार केड़ा थींदा है। घरा विच खाना बहु बनवेंदा है, ता खावन आले घट ते खाना सुटना पैसी। हुन शादियां विच तुसा डेदे हो, खाना बहु बर्बाद होंदा है। बहु तरह दे खाने होंदे ते लोग हिक शै घिनदे हिन, थोड़ा जिन्ना खांदे ते बाकी सुट देंदे हिन। इस तरह दावता विच 15-20% खावन आली शै बर्बाद थींदियां हिन। दूजे पासे डेदो ता लखा लोगां को दुई वेले दी रोटी नसीब कहनी होंदी। अंकड़े दसेंदे हिन कि दुनिया भर विच हर साल तकरीबन 1.3 बिलियन टन खाना बर्बाद थींदा है। अमरीका विच 30% खाना कूड़ेदान विच सुटेंदे हिन। सोचण दी गल है। ते दुए पासे दुनिया दे 7 लोगां विचों हिक नूं भुखे सोवना पौंदा ते 5 साल तों छोटे हजारां बाल भुख कारण मर वेंदे। केड़ी अफसोस दी गल है ना। वड्डे ते अमीर घरां विच, रेस्तरां विच, सुपर बाजारां विच खाना ते खाना बनावण दी शै दी बर्बादी आम थी गई है। इस नाल वातावरण भी खराब थींदा है, क्योंकि इकट्ठे होवण वाले कूड़े विचों बो आवदी है। वला किसानां दा पैसा, खाद, कीड़ा मारन वालियां दवाइयां, पानी जिन्हां विच फसलां तैयार थींदियां हन, सारा कुछ बर्बाद थी वेंदा। इस नाल बहु भुख्यां दा ढिड भरिया जा सकदा है। इस कीते खाने को कदहां भी बर्बाद ना करे सा। घर विच खाना उतना ही बनावन जो जितना खादा वेंदा। बचण ते किसी गरीब को दे देवो। दावत विच प्लेट विच उन्हां ही घिनो जितनी भूख थी वे। घर विच दालां सब्जियां

गीत तुसा सुना है अखीर च गल करें दे हां डिप्रेशन जाने निराशा दी उदासी दी। लगातार इंसान मेहनत करेंदा, संघर्ष करेंदा, जी जान नाल काम करेंदा, जिंदगी विच कई उतार चढ़ाव आवेंदे हिन, वला कदहां हार भी वेंदा, जिस नाल इंसान निराश थी वेंदा है। ए उदासी कुछ दिना दी थी वे ता कोई गल नहीं, पर जे ए निराशा लंबे समय तीकण घेर घिन्ने ता मायूसी च रहंदा इंसान मन तू ता बीमार थींदा ही है, नाल ही शारीरिक तौर ते भी बीमार थी वेंदा है। सेहत डिग वेंदी है, भूख नहीं लगेंदी, नींद नहीं आवदी, कमजोरी महसूस होवन लगेंदी है, ता काम करेण दी ताकत भी घट वेंदी। डिप्रेशन किसे भी उम्र च थी सकता है। इंदे वास्ते बहु कारण जिम्मेवार होंदे, जिवें पैसे धेले दी तंगी, काम कार ना थीवना, जिंदगी विच किसी हादसे विचों लंघना, किसी नजदीकी रिश्तेदार दी मौत थीवना, प्रेम भरा रिश्ता खत्म थीना, नशियां दा असर, शरीर विच बीमारी लग वंजे, दफ्तर च माहौल चंगा ना थीवना, कारण कोई भी थीवे डिप्रेशन तो निकलना लाजमी है। इस किते खुश रहना बहुत जरूरी है, उदास ना थीवना। इंदे वास्ते परिवार, समाज, संस्थावां हर एक नूं अगू वध के उदासी नाल घिरे इंसान को उभारण दी कोशिश करनी चाहिदी है। साडी भी दुआ है कि कोई भी उदास ना थीवे, हर कोई खुश थीवे। प्रोग्राम दे आखिर विच सुनदे हां इक सुफियाना कलाम।

0: ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਾਈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੁਝ ਬਾਤਾਂ ਕੁਝ ਗੀਤ ਤੁਹਾਕੂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਵਾਲਾ ਸਾਕੂ ਖਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਭੇਜੋ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਕੋ ਦੇਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ।
1: श्रोताओ अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम सराय की, आज आप इसमें सुने कड़ी संख्या 29। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब राजस्थानी में हिंदी में प्रादेशिक आप समाचार सुनेंगे। पहले आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार किसानों को नई कृषि तकनीकों और नवाचारों से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। आरपीएससी की ओर से एसआई भर्ती परीक्षा 2021 फिर से आयोजित की जाएगी। इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत कल प्रदेश की सभी अदालतों, उपभोक्ता मंचों और राजस्व न्यायालयों में राजीनामा योग्य मामलों का निपटारा किया जाएगा और पश्चिमी राजस्थान में गर्मी के प्रकोप से एक ओर जनजीवन प्रभावित, वहीं कुछ जिलों में आंधी के साथ हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना।

0: समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार कृषि और उससे जुड़े विभिन्न विभागों का एक क्लस्टर बनाकर काम कर रही है ताकि किसानों को तकनीक और निवेश का पूरा लाभ मिल सके। वे आज हैदराबाद में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के तहत आयोजित इन्वेस्टर मीट को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रोन तकनीक, फूड प्रोसेसिंग और टिकाऊ खेती के मॉडल राजस्थान की कृषि भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। श्री शर्मा ने हैदराबाद को आईटी और एग्रीटेक नवाचारों का बड़ा केंद्र बताते हुए वहां के निवेशकों और उद्यमियों को 23 से 25 मई तक जयपुर में होने वाले ग्राम में शामिल होने का निमंत्रण दिया।
1: हम एग्रीटेक स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहे हैं, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन और किसानों को मार्केट से सीधे जोड़ने की पहल भी हम कर रहे हैं। राजस्थान में हम बीज उत्पादन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्री प्रोसेसिंग के बड़े हब विकसित करना चाहते हैं। अगर आपकी एक दो यूनिट यहाँ लग रही हैं, तो एक राजस्थान में भी लगाएं। इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि आप नई तकनीकी के आधार पर, नए विचारों के आधार पर पधारो हमारे देश।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने आज जयपुर में महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लिया। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर ब्लॉक में सावित्रीबाई फुले ई लाइब्रेरी खोली जाएंगी। श्री शर्मा ने कहा कि सभी जिलों में महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श विद्यालय और 16 नए छात्रावास बनाए जाएंगे। साथ ही बूंदी के हिंडोली में महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की जीवनी पर आधारित पैनोरमा और पुस्तकालय भी बनाया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2021 को निरस्त कर दिया है। अब ये परीक्षा नए सिरे से आयोजित की जाएगी। आयोग के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने बताया कि परीक्षा इस वर्ष सितंबर में होना संभावित है। इस परीक्षा में केवल वे ही 3,83,097 अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जो पूर्व में आयोजित दोनों प्रश्न पत्रों की लिखित परीक्षा में बैठे थे। नए आवेदकों को इसमें मौका नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके आवेदन पत्रों में सुधार के लिए 16 मई से 30 मई तक का समय दिया गया है। इस दौरान मोबाइल नंबर, ईमेल और पत्राचार का पता अपडेट किया जा सकेगा। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसूताओं की मृत्यु के मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। इस बीच अस्पताल प्रशासन ने आज 4 महिलाओं की किडनी फेल होने की पुष्टि की है जिनका डायलिसिस किया जा रहा है। वहीं आज राज्य के ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने अस्पताल का दौरा कर वार्डों और ऑपरेशन थिएटर में स्टेरिलाइजेशन व्यवस्था का निरीक्षण किया। औषधि नियंत्रण विभाग की ओर से दवाओं और फ्लूइड के 23 नमूने लिए गए हैं। एहतियात के तौर पर संबंधित दवाओं के इस्तेमाल पर पूरे प्रदेश में तत्काल रोक लगा दी गई है। गौरतलब है कि इस घटना में अब तक 2 प्रसूताओं की मृत्यु हो चुकी है। उपमुख्यमंत्री और महिला तथा बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि सरकार प्रदेश में बच्चों और मातृशक्ति के बेहतर स्वास्थ्य, पोषण तथा सर्वांगीण विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। वे आज जयपुर में विभाग के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों पर निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक आहार समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री ने पोषाहार वितरण में पारदर्शिता और स्वच्छता सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि इससे स्वस्थ और सशक्त राजस्थान का संकल्प साकार होगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना नहीं करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। सचिव ने बताया कि मार्च से अब तक 6 लाख से अधिक पीएनजी कनेक्शन चालू किए जा चुके हैं।
2: अभी तक 6.5 लाख से अधिक पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया, ये मार्च से अब तक के आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा 2,66,000 से अधिक नए कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है।

0: सात लाख से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने अपने आप को पीएनजी कनेक्शन के लिए रजिस्टर किया है।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश भर में कल इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सभी अदालतों, उपभोक्ता मंचों और राजस्व न्यायालयों में राजीनामा योग्य मामलों का निपटारा किया जाएगा। इसमें आपसी सहमति से ट्रैफिक चालान, चेक बाउंस, बैंक ऋण और पारिवारिक विवादों को सुलझाया जाएगा। सवाईमाधोपुर जिले में लोक अदालत के लिए कुल 10 बेंचों का गठन किया गया है। झुंझुनू जिले में करीब 15,000 मामलों को राजीनामा के लिए चिन्हित किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डॉक्टर महेंद्र के सिंह सोलंकी ने बताया कि लोक अदालत में मामलों का निस्तारण आपसी समझ और सहमति से किया जाता है।
2: पार्टीज के मध्य समझौता कराने का प्रयास किया जाता है। समझौते के आधार पर दोनों पक्षों में जब राजीनामा हो जाता है, अंतिम रूप से प्रकरण का निस्तारण हो जाता है। इसके लिए पूरे जिले में 11 बेंचों का गठन किया गया है। मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोक अदालत में पधारें और अपने जो समझौते वाले जो प्रकरण हैं उनका राजीनामा के द्वारा अधिक से अधिक निस्तारण करवाएं। समाधान नाम से एक पोर्टल है जिससे ऑनलाइन के माध्यम से भी इनका निस्तारण करवाया जा सकता है।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में भाजपा विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया। नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में इन दिनों प्रदेश भर में काउंटडाउन योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज सवाईमाधोपुर में आयुर्वेद विभाग की ओर से दशहरा मैदान में योग शिविर लगाया गया। इसमें पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया और करो योग रहो निरोग का संदेश दिया। कोटपुतली बहरोड के पावटा और पाली के कोलीवाड़ा में भी स्कूली विद्यार्थियों के लिए योग शिविर आयोजित किए गए। और अब मौसम। प्रदेश में आज ज्यादातर स्थानों पर मौसम शुष्क बना हुआ है। पश्चिमी राजस्थान में तेज गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित है। बाड़मेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां चिलचिलाती धूप से लोगों की दिनचर्या पर असर हुआ है। अस्पतालों में लू और तापघात के मरीजों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे बाड़मेर संवाददाता।
3: जिले में चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों के चलते लोग बेहाल हैं। गर्मी और लू की गंभीरता को देखते हुए तापघात और अन्य ताप जनित बीमारियों के मरीजों के इलाज के लिए विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। जिला अस्पताल में 18 बेड आरक्षित रखने के अलावा 2 विशेष टीमों का गठन किया गया है। भामाशाहों के सहयोग से अस्पताल परिसर में प्याऊ और वाटर कूलर स्थापित किए गए हैं। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
1: पाली में भी तेज गर्मी को देखते हुए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को कड़ी धूप में नहीं निकलने और सूती कपड़े पहनने का परामर्श दिया है। मौसम विभाग ने जोधपुर और बीकानेर संभाग में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना व्यक्त की है। वहीं आज नागौर, ब्यावर, अजमेर, जयपुर तथा टोंक जिलों में धूल भरी तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना है। इन स्थानों पर कहीं कहीं ओले भी गिर सकते हैं। वहीं सवाईमाधोपुर और बूंदी में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात का येलो अलर्ट दिया गया है। सवाईमाधोपुर जिले में टीबी मुक्त भारत 100 दिवसीय अभियान के तहत विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। आज बामनवास के भांवरा और खंडार के बलवन खुर्द में शिविर लगाए गए। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर अमित कुमार गोयल ने बताया कि यह अभियान 12 मई तक जिले के विभिन्न गांवों में जारी रहेगा। इन शिविरों में टीबी से जुड़ी विभिन्न जांचें निःशुल्क की जा रही हैं। पाली के व्हीलचेयर क्रिकेट खिलाड़ी भरत पवार का चयन भारतीय टीम में हुआ है। वे श्रीलंका में 25 से 28 मई तक आयोजित होने वाली इंटरनेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट T20 सीरीज में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। भरत पवार ने साल 2019 में इस खेल की शुरुआत की थी और वे साल 2022 में राजस्थान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे।

0: क्रिकेट के साथ साथ उन्होंने पैरा स्विमिंग में स्वर्ण और राष्ट्रीय स्तर पर व्हीलचेयर रग्बी में रजत पदक हासिल किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। ये भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर कल ओडिशा तट पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार किसानों को नई कृषि तकनीकों और नवाचारों से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। आरपीएससी की ओर से एसआई भर्ती परीक्षा 2021 फिर से आयोजित की जाएगी। इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत कल प्रदेश की सभी अदालतों, उपभोक्ता मंचों और राजस्व न्यायालयों में राजीनामा योग्य मामलों का निपटारा किया जाएगा। और पश्चिमी राजस्थान में गर्मी के प्रकोप से एक ओर जनजीवन प्रभावित, वहीं कुछ जिलों में आंधी के साथ हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से उदयपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख हरीश पालीवाल ने तैयार किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले दिनों उदयपुर का दौरा किया। उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सड़क, पानी, बिजली और सरकारी योजनाओं की धरातल पर प्रगति पर चर्चा की गई। उन्होंने उदयपुर में पर्यटन को विकसित करने संबंधी दिशा निर्देश भी दिए। विशेष रूप से उदयपुर के मैरिज डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री इसके बाद प्रतापगढ़ के भंभोरी गांव के लिए रवाना हुए। इससे पहले डबोक हवाई अड्डे पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। उदयपुर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई हालिया कार्रवाई में गड़बड़ियों के कारण दो निजी IVF सेंटरों का पंजीयन निलंबित किया गया। राज्य सरकार ने प्रदेश में चलाए जा रहे IVF सेंटर्स में पारदर्शिता, वैधानिक अनुपालन और नैतिक मानकों को सुनिश्चित करने के लिए कड़ा रवैया अपनाया है। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले दो सेंटरों का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि इन सेंटर्स में बड़ी गड़बड़ियां पाई गईं। राज्य स्तर पर जांच के लिए सरोगेसी के नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में टीम का गठन किया गया है। साथ ही जिले में पंजीकृत सभी IVF सेंटर्स की सघन जांच के लिए अलग अलग टीमें बनाकर औचक निरीक्षण किया गया। इन्होंने 28 केंद्रों का निरीक्षण किया। प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि ARTV नियमन अधिनियम 2021 के प्रावधानों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उदयपुर के RNT मेडिकल कॉलेज के अधीन चलाए जा रहे महाराणा भोपाल राजकीय चिकित्सालय के ENT विभाग ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर नवनीत माथुर ने बताया कि विशेषज्ञ चिकित्सकों ने क्षेत्र में पहली बार बिना किसी बाहरी चीरे के मुंह के रास्ते से थायराइड ग्रंथि का ऑपरेशन करने में सफलता हासिल की है। ऑपरेशन में अत्याधुनिक अल्ट्रासोनिक डिवाइस का प्रयोग किया गया और एंडोस्कोपी की मदद से स्क्रीन पर देखते हुए ये ऑपरेशन हुआ। इससे मरीज को दर्द भी कम होता है और रक्तस्राव भी कम होता है। जिले में इन दिनों ग्राम रथ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत उदयपुर ग्रामीण, मावली, वल्लभनगर, गोगुंदा और खेरवाड़ा क्षेत्र के गांवों में ये रथ पहुंचा। इस दौरान कला जत्थों की ओर से आकर्षक प्रस्तुतियों के माध्यम से सरकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। जगह जगह ग्रामीणों ने रथ का पूजन कर स्वागत किया। गौरतलब है कि इस अभियान के तहत 13 विभागों की जानकारी घर घर पहुंचाई जा रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पिछले दिनों उदयपुर प्रवास पर रहे। उन्होंने बड़गांव की वाटी ग्राम पंचायत में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नए भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा और शिक्षा विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री ने बेदला में भी राजकीय विद्यालयों के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया। वाटी में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने विद्यार्थियों से मेवाड़ के महापुरुषों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से जर्जर

0: विद्यालय भवनों को ध्वस्त कर नए विद्यालय भवन बनाने की कार्रवाई तेजी से की जा रही है। श्री दिलावर ने गांवों में नियमित साफ सफाई के भी निर्देश जारी किए। वहीं बेदला में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ने शौर्य चक्र विजेता मेजर मुस्तफा और प्रकाश खटीक की माताओं का सम्मान किया। राज्य सरकार की ओर से उदयपुर, बांसवाड़ा और सिरोही में चंदन वन विकसित करने को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। वन मंत्री संजय शर्मा उदयपुर पहुंचे। उन्होंने पिछोला झील के पास कालका माता वन क्षेत्र का जायजा लिया। वन मंत्री ने अधिकारियों से चंदन वन विकसित करने की योजना पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि चंदन के पेड़ आर्थिक, औषधीय और पर्यावरण की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से कल से होने वाली प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा के लिए जिले में व्यापक तैयारियां की गई हैं। ये परीक्षा जिले में 189 केंद्रों पर होगी, जिसमें करीब 59,300 से ज्यादा अभ्यर्थी हिस्सा लेंगी। ये परीक्षा 2 दिनों में अलग अलग विषयों के लिए होंगी। प्रशासन की ओर से सुचारू और पारदर्शी परीक्षा के आयोजन के लिए पूरी तैयारी की गई है। इसके साथ ही उदयपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो, राज्य सरकार किसानों ने नवी तकनीक और नवाचाराओं जोड़वो तय कीनो। राजस्थान लोक सेवा आयोग री ओर एसआई भर्ती परीक्षा 2021 उजू ली जावेला। प्रदेश में ई साल री दूजी राष्ट्रीय लोक अदालत काल लगाई जावेला। और राज्य रा तुणी हलका में जबरदस्त गर्मी, दूजा हलका में कठे कठे बरसात रा आसार। समाचारां सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। किसानों ने तकनीक और निवेश रो पूरो फायदो दिरावन सारू राजस्थान सरकार खेतीबाड़ी और वाऊ जुड़िया महकमा रो एक जोड़ बनार काम कर रही है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 रा सिलसिला में आज हैदराबाद में राखी जिया निवेशक सम्मेलन में आ जानकारी दीनी। वह हैदराबाद ने आईटी और एग्रीटेक नवाचारा रो मोटो केंद्र बताता था का कहो के ड्रोन तकनीक, फूड प्रोसेसिंग और टिकाऊ खेती रा मॉडल राजस्थान रा कृषि भविष्य सारू खास है। वह राज्य में चल रही ईआरसीपी और यमुना जल समझौता सरीखी मोटी परियोजनाओं रो जिक्र करता था का कहो के सरकार किसानों ने जरूरी तादाद में पानी और साधन मुहैया कराने तय कीनो है। श्री शर्मा निवेशक और उद्यमियों ने 23-25 मई ताई जयपुर माई फेवन वाला खास ग्राम सम्मेलन में शामिल फेवन रो न्योतो दिनो।
2: हम एग्रीटेक स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहे हैं, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन और किसानों को मार्केट से सीधे जोड़ने की पहल भी हम कर रहे हैं। राजस्थान में हम बीज उत्पादन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्री प्रोसेसिंग के बड़े हब विकसित करना चाहते हैं। अगर आपकी 1-2 यूनिट यहाँ लग रही है तो एक राजस्थान में भी लगाएं। इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि आप नई तकनीकी के आधार पर, नए विचारों के आधार पर पधारो हमारे देश।
1: इनु पहली मुख्यमंत्री महात्मा ज्योतिबा फुलेरी 200वीं जयंती रा सिलसिला माए जयपुर माए राखी जिया कार्यक्रम माए शामिल फिया। श्री शर्मा कहो कि प्रदेश रा हर ब्लॉक माए सावित्री बाई फुले ई लाइब्रेरी खोली जावेला और सगला जिला माए महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श विद्यालय खोलिया जावेला और 16 नुआ छात्रावास बनाया जावेला। श्री शर्मा कहो कि बूंदी जिला रा हिंडौली माए महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले री जिंदगी रो दर्शाव करण वालो पैनोरमा और लाइब्रेरी ई बनाया जावेला। राजस्थान लोक सेवा आयोग पुलिस उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2021 निरस्त करती नी है। राज्य सरकार री सिफारिश पाछे निरस्त करी जी आ परीक्षा अब नुआ सिराओं पाछी ली जावेला। आयोग रा अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि सितंबर 2026 माय संभावित ई परीक्षा माय पहली लेरी जी लिखित परीक्षा रा दोनों पेपर देवन वाला 383,097 उम्मीदवार ही शामिल फै सकेला। नुआ उम्मीदवार आ परीक्षा नहीं दे सकेला। उम्मीदवारा ने अर्जियां माए सुधार सारू 16-30 मई ताई रो टेम दियो चियो है।

0: इन माय मोबाइल नंबर ईमेल चिट्ठी पत्री रूप तो अपडेट करियो जा सकेला। बदलाव हूँ पहली वन टाइम रजिस्ट्रेशन राते केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनो जरूरी वेला। कोई बदलाव नहीं करण री सूरत में आई पोर्टल माथा जार फोटो और दस्तखत काम लेवन सारू सहमति देवणु और अर्जी फाइनल सबमिट करनो जरूरी वेला। कोटारा न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जापावाली लुगाइया री मौत रा मामला री जांच सारू समिति बनाती रिची है। संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल आ जानकारी दीनी। इन बीच अस्पताल प्रशासन जापावाली चार महिलाओं री किडनी फेल वे जावण री आज पुष्टि कर दीनी। आरो डायलिसिस करियो चाहियो है। राज्य रा ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक अस्पताल रो दौरो कर वार्डा और ऑपरेशन थिएटर में साफ सफाई री व्यवस्था रो जायजो लीनो। औषधि नियंत्रण विभाग री ओरू दवाइयां और फ्लूइड रा 23 नमूना लिया चिया है। इन बीच जयपुर बुलाई चिया डॉक्टरों री टीम ही मरीजों रा इलाज रा काम माथा नजर रख रही है। एहतियातन सरकार संबंधित दवाइयां काम लेवन पर पूरा राज्य में तुरंत रोक लगातीनी है। ध्यान जोग है कई घटना माए हाल ताई जापा वाली दो लुगाइया री मौत वे की है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कहो है कि राज्य सरकार बच्चा और मायड़ा रा बेहतर स्वास्थ्य पोषण और पूरा विकास सारू पूरा मनु काम कर रही है। वे आज जयपुर माए महिला और बाल विकास विभाग रा एहलकारा सागर राखी जी मीटिंग माए बोल रही ही। दिया कुमारी पोषाहार वितरण माए साफ गोई और साफ सफाई तय करण माथे जोर देता थका कहो कि इनु स्वस्थ और मजबूत राजस्थान रो सपनो साचो वेला। देश में घरेलू रसोई गैस रिपूर्ति आसानियों करी जा रही है और कठे हुई पूर्ति में कमी रा कोई समाचार नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय री सचिव सुजाता शर्मा आज नई दिल्ली में कहो कि सरकार ग्राहकों ने गैस री कमियों बचावण और इनरा मूल में थरता राखण सारू सगला जरूरी जतन कर रही है। वे बतायो कि मार्च महीना हाल ताई 6 लाख बत्ता PNG कनेक्शन चालू कर दिया चिया है।
1: अभी तक 6.5 लाख से अधिक PNG कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया, ये मार्च से अब तक के आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा 2,66,000 से अधिक नए कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। 7 लाख से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने अपने आप को PNG कनेक्शन के लिए रजिस्टर किया है।
0: ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रदेश में आए काल इन साल री दूजी राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जावेला। इन तेत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण री ओरों सगली अदालतां उपभोक्ता मंचां और राजस्व अदालतां में गाड़ियां रा चालान चेक बाउंस वेवन बैंकों लिया जिया कर्ज रा चुकारा और घरेलू झगड़ा सरीखा राजीनामाओं निपटाया जावन वाला मामला रो निपटारो करियो जावेला। सवाई माधोपुर जिला में लोक अदालत सारू 10 बेंच बनाई ची है। जिला मुख्यालय माथा 4 और गंगापुर सिटी में 2 बेंच सुनवाई करेला। इनके अलावा बौनली खंडार बामनवास और चौथ का बरवाड़ा में आई 1-1 बेंच लगार मामला निपटाया जावेला। झुंझुनू जिला में लोक अदालत निपटारा सारू ले जाया जावन वाला करीब 15,000 मामला ने पिछाण करी ची है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रा सचिव डॉक्टर महेंद्र के सिंह सोलंकी बतायो के लोक अदालत में मामला रो निपटारो समझाइश और आपसी सहमतियों करियो चावे है।
2: पार्टीज के मध्य समझौता कराने का प्रयास किया जाता है। समझौते के आधार पर दोनों पक्षों में जब राजीनामा हो जाता है अंतिम रूप से प्रकरण का निस्तारण हो जाता है। इसके लिए पूरे जिले में 11 बेंचों का गठन किया गया है। मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोक अदालत में पधारें और अपने जो समझौते वाले जो प्रकरण हैं उनका राजीनामा के द्वारा अधिक से अधिक निस्तारण करवाएं। समाधान नाम से एक पोर्टल है जिससे ऑनलाइन के माध्यम से भी इनका निस्तारण करवाया जा सकता है।
0: भारतीय जनता पार्टी रा आला नेता सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल रा नुआ मुख्यमंत्री बनेला। आज कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह री मौजूदगी में भी भाजपा विधायक दल री मीटिंग में वाना दल रा नेता चुनी चिया। श्री अधिकारी बंगाल में भाजपा री पहली सरकार रा मुखिया फैला। पश्चिम बंगाल में पहली दफा भाजपा रा राज में मंत्रिमंडल में शामिल करया जावन वाला ने काल कोलकाता रा ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ दिराई जावेला। 21 जून ने मनाया जावन वाला 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रा सिलसिला में राज्य में आई जागरूकता कार्यक्रम रा

व्याख्या चार रहा है। सवाई माधोपुर में आयुर्वेद विभाग री ओरों 50 दिन रो काउंटडाउन योगा अभ्यास कार्यक्रम चलायो जा रो है। वठे पहलीवाड़ा सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया दशहरा मैदान में लोगों सागे योग रो अभ्यास कीनो और करो योग रहो निरोग रो संदेश दीनो। कोटपुतली बहरोड जिला रा पावटा और पाली जिला रा कोलीवाड़ा में ही स्कूली विद्यार्थियों सारू योग शिविर लगाया। टीबी मुक्त भारत बनावन रा 100 दिन रा अभियान माए सवाई माधोपुर जिला माए खास स्वास्थ्य शिविर लगाया जा रहा है। आज बामनवास कने भावरा और खंडार कने बलवन खुर्द माए शिविर लगाया गया। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर अमित कुमार गोयल बतायो कि शिविर माए चलती फिरती मशीनाओं छाती रा एक्सरे खून माए शुगर और ब्लड प्रेशर री जाँच करी जी। वो अभियान जिला रा न्यारा न्यारा गाँव माए 12 मई ताई चलेला। प्रदेश में आज घनखर ठोणा मौसम सूखो रहो। राज्य रा आतुणी हलका में जबरदस्त गर्मी और लू जिंदगी माथे असर पड़ियो है। माना बाड़मेर खबर नवीस बतायो कि जिला में पड़ रही

0: खून माई शुगर और ब्लड प्रेशर री जांच करी जी। वो अभियान जिला रा न्यारा न्यारा गांव माए 12 मई ताई चालेला। रब मौसम प्रदेश माए आज घन खरठोणा मौसम सूखो रहो। राज्य रा आतुणी हल्का माए जबरदस्त गर्मी और लू जिंदगी माथे असर पड़ियो है। माना बाड़मेर खबर नवीस बतायो कि जिला माए पड़ रही जोरदार गर्मी रा कारण जिंदगी माथे असर पड़ियो है और अस्पताल माए लू रा मरीजा रा इलाज सारू खास व्यवस्था करीची है।
1: जिले में चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों के चलते लोग बेहाल हैं। गर्मी और लू की गंभीरता को देखते हुए तापघात और अन्य ताप जनित बीमारियों के मरीजों के इलाज के लिए विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। जिला अस्पताल में 18 बेड आरक्षित रखने के अलावा 2 विशेष टीमों का गठन किया गया है। भामाशाहों के सहयोग से अस्पताल परिसर में प्याऊ और वाटर कूलर स्थापित किए गए हैं। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: बालोतरा जिला माए जसोल री लड़कियां री सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल माए आज मतदाता जागरूकता कार्यक्रम राखी चियो। इन तेज टाबरियां जागरूकता रैली निकाली। रैली माए नारा लगार वोट देवन रा महत्व री जानकारी दी री ची। ये मौके विद्यार्थियों ने वोट देवन री प्रक्रिया और लोकतांत्रिक अधिकारा माथे आधारित नानी फिल्म बताई ची। शिक्षा मंत्रालय री ओरू एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल रा तेत छठो युवा संगम राख्यो चार्यो है। इनरो मकसद न्यारा न्यारा राज्यां और केंद्र रा राज वाला प्रदेशां रा नौजवाना माए सांस्कृतिक एको बधावन सागे लोगां बीच संपर्क मजबूत बनावनु है। इन कार्यक्रम रा तेत देश भर उं चुनी जा युवा प्रतिभागी काम करन रा बेहतर तरीका रा न्यारा न्यारा पहलुआं री समझ हासिल करन सारू सहयोगी राज्यां और केंद्र रा राज वाला प्रदेशां रो दौरो कर रिया है। पाली रा दिव्यांग व्हीलचेयर क्रिकेट खिलाड़ी भरत पवार इंटरनेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट T20 सीरीज सारू भारत री टीम माए चुनी चिया है। आहोर श्रीलंका माए 25-28 मई ताई राखी चावेला। भरत पवार साल 2022 माए राजस्थान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम रा कप्तानी रह्या। आखिर माए खास समाचार एक कर फेरू सुन ले रहो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो राज्य सरकार किसाना ने नवी तकनीक और नवाचाराओं जोड़ वो तहकीनो। राजस्थान लोक सेवा आयोग री ओरू SI भर्ती परीक्षा 2021 पाछी ली जावेला। प्रदेश माए ई साल री दूजी राष्ट्रीय लोक अदालत का लगाई जावेला। और राज्य रा तुणी हल्का माए जबरदस्त गर्मी दूजा हल्का माए कठे कठे बरसात रा आसार। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो चावेला। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 326.7 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर, DRM चैनल 909 किलो हर्ट्स पर, FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। संध्या की 7 बज चुके हैं। अब ग्रामीण परिवार अपना दैनिक कार्यक्रम सुने चौपाल।

पिन कोड नंबर है 335804। इं पर थे अपने आने वाला जेका गीतारो गुजरो कार्यक्रम है बिगमा कागज लिक्स को अपना आज आपां शुरुआत कर दें एक गीत चू पछा थारा फरमाइश का जेका नाम है भी बंचांगा सा।

राम राम सा कार्यक्रम सुनिए सगळ्या परिवाराने. आज भाई रामेश्वर का घणा घणा राम राम, मोकळा मोकळा राम राम. भाई लोगो, आज शुक्रवार को दिन है और शुक्रवार का दिन आपा ले रहे करा गीतारो गजरो. तो इंग माथारा फरमाइश जी का संदेश है और बिंग हिसाब से आज थाने गीत भजन ज कहे भी सुना सियाँ. तो आज जक्का भी गीत भजन सुनाओ और बिंग हिसाब से थारी जी की फरमाइश अब मारते हैं पुग्गी है. और जका कागज़ भाई लोग अपना आने वाला कार्यक्रम में भेजना चाहे तो भी एक बार पतो नोट कर लियो. गीतारो गजरो कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सूरतगढ़.

0: एलर्जी, अस्थमा, बांझपन और पेट संबंधी बीमारियों के आयुर्वेदिक इलाज हेतु मिले सेवानिवृत्त आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर लीलाधर शर्मा BAMS। आप आयुर्वेदिक चिकित्सा में 55 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। संपर्क करें कीर्ति मेडिकल क्लिनिक, मैन बाजार, बीज बायला, तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर। मोबाइल नंबर 94-144-67-186।
1: बिल्कुल सर, थाने गीत सुनायो और आपने दी फरमाइश पुगी है गांव जोगीवाड़ा श्री गंगानगर शू प्रेम सहारण मोनिका और मनीष सहारण। ये गीत की ही फरमाइश आपने ती ग्राम पिपरलोड सर गांव छत्तीसगढ़ शू दीपेश वर्मा, पुनु वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। बक्सर बिहार शू सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अक्रम अंसारी और अल्ताफ अंसारी। और अंग सागे है डुमराव बिहार शू डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और वसीम अंसारी। सरीमपुर बक्सर शू राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी, अफ्ताब अंसारी, महताब अंसारी, महराज अंसारी और कल्लू और मल्लू अंसारी। गांव बहलोल नगर शू हरीश हेरी, जगतार जेरी, सुशील डेलू और राकेश चाहर। फरमाइश पुगिया गांव घोंडिया सूरतगढ़ शू जगदीश ढूकिया, परमिला ढूकिया, ज्योति श्रीता, तमन्ना सचिन, विष्णु, शिवम ढूकिया और अंगे अलावा लिखे है माने इंदुबाला नाथ की आवाज में गीत सुनाई। बिल्कुल साथ ने कार्यक्रम सुनता रहो सुनासिया। वड़िंगखेड़ा पंजाब शू मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा भी आपने दी फरमाइश भेजी है और आ फरमाइश पुगी है रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर शू लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षिता, खुशी गोस्वामी। गांव नथाणा पंजाब शू हरजिंदर, छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। फरमाइश मांडी आपने ती डोंगर गांव छत्तीसगढ़ शू राष्ट्रपाल गज भीए, राधिका गज भीए, बेबी अनिष्का और तन्मय गज भीए। बागपत उत्तर प्रदेश शू संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया भी फरमाइश मांडी। और आप फरमाइश पुगी है भोपालगढ़ जिला जोधपुर शू घनश्याम सिंह चौधरी और अंकित सिंह चौधरी। गांव बांडीवाड़ा फाजिलका पंजाब शू ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, रजत बेबी ग्रीमा बगड़िया भी आपने दी फरमाइश मांडी ऐसा। और आ फरमाइश पुगी है हनुमानगढ़ टाउन शू सुल्तान सिंह तर्ड, कृष्णा तर्ड, मुकेश रामचंद्र, कांता चौधरी, कपिल देव तर्ड। बहरवाला खुर्द सिरसा शू बलवंत जाखड़, ममता जाखड़, प्रिया नैना जाखड़, हिमानी जाखड़, शिवम जाखड़। पदमपुर जिला श्री गंगानगर शू फरमाइश भेजी है साहब ने ती मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा। और आ फरमाइश पुगी अपने ती अगली लिखने वाला है 82 RB रायसनगर शू चेतनराम सारसवा, नौरंगराम सारसवा, बांसुरी वादकांगा पुत्र है प्रदीप सारसवा, ज्योति सारसवा, नानू देवी सारसवा, ममता सारसवा, सोहनलाल जंगीड़ अंगसागे है। और अंगसागे है शिवप्रकाश खाती, धनराज भांबू, नरसी शिवर, सुनील डाल, कुलदीप सिंह, सरजीत सिंह जोशन, राम कुमार रिवाड़, नरेंद्र सुथार। रल मिल के फरमाइश मांडी ऐसा। और आ फरमाइश पुगी है अपना ती दुर्गा कॉलोनी हांसी शू राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष, योगी, डब्बू और बब्बू। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा शू रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल। और भोपालगढ़ राजस्थान शू धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा।

थाने सीमा मिश्रा और बंग साथी का वाजगमा गीत सुनायो। आपने ती फरमाइश पुगी है चहल कला पंजाब शुआ अमरजीत सिंह बंगा अंबा चहल परमिंदर राजा, और आ फरमाइश पुगी है मंडी गोलवाला शू बिरजलाल चौहान और नीरज कुमार चौहान, लुधियाना पंजाब शू अमरजीत सोनम कौर परमजीत अदिबा कौर, बिहारी कॉलोनी महासमुंद शू वलीउल्ला फकीर डबलूल्ला फकीर परवीन असमा फकीर, बुलंदशहर शू बद्रुवली अंसारी फर्जुवली अंसारी और फर्जीवली अंसारी। आ रल मिलगी फरमाइश मंडी ऐसा, और आ फरमाइश पुगी है अलीका डबवाली शू बसंत सिंह चंद राजकुमार सुनीता और कुलदीप गांधी, सादुल शहर शू फरमाइश मंडी है अपने ती ओम प्रकाश चौहान मनु प्रकाश शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान, और अरायण शू बनवारी लाल जयपाल बिमला जयपाल सोनू जयपाल ममता जयपाल मोक्ष दिशा सुशांत और विक्रम जयपाल। अगली फरमाइश आपने ती पूर्ति करी है गांव दौलतपुरा श्री गंगानगर सिंह सोलाल जी बेनीवाल शांति बेनीवाल मंजू मोहित और हेमंत, और आ फरमाइश पुगी आपने गांव राजपुरा तहसील अबोर जिला फाजिलका सिंह हरदीप सिंह जगवीर सिंह ज्वाला सिंह डॉक्टर धर्मवीर झोरड़ और जग राज सिंह, रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन सिंह जगमाल सिंह डागला हैप्पी डागला जी एस नायक और शोभा नायक भी आपने दी फरमाइश मांड दी, और आ फरमाइश पुगी है चंडीगढ़ सिटी सिंह सतीश अनेजा बिमला अनेजा, सन्नी मंदिर चौक खंडवा सिंह दुर्गा प्रसाद सैनी अनिता सैनी गौरव सैनी ईशान सैनी कार्तिक सैनी, और फवारा चौक वार्ड नंबर 6 सिरसला जिला चूरू राजस्थान सिंह आपने दी फरमाइश लिखकर भेजी ऐसा, और लिखने वाला है संदीप सिंह सोनगरा प्राची सोनगरा सोमल सोनगरा कार्तिक सोनगरा। आ फरमाइश आपने ती मंडी है ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश शू रामशरण विश्वकर्मा साहिल विश्वकर्मा मंजू रंजना वंदना प्रियल और दिवांशी विश्वकर्मा। अगली फरमाइश पुगी है राज पिलेस मऊनाथ भजन उत्तर प्रदेश शू, और लिखने वाला है राजेश कुमार वर्मा प्रीति वर्मा और कार्तिक आर्य आर्यन वर्मा, और शिव मंदिर हकीकत पूरा मऊ सू मुन्ना भाई स्वर्णकार पिंकी स्वर्णकार आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, ताज मोहम्मद अंसारी गुलाब शाही राही मेहराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार सू भी आपने दी फरमाइश मांड दी, और आप फरमाइश पुगिया गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ सू विक्रम कड़वासरा सचिन सतीश योगेश यदु कड़वासरा कुंदन जाखड़ लीलाधर स्वामी कृष्ण मायल कीड़ू राम जोया और हनुमान सहारण और सुनील पाईवाल शर्मा, सीतामऊ रोड नाटा राम जिला मंदो मंदसौर मध्य प्रदेश में अपना ती फरमाइश लिखकर भेजी ऐसा, दशरथ सेन श्रीमती रानू सेन सुनीता सेन और आगा छोटा मोटा टावरिया सरदा गुरमीत और शांची सेन, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हूँ पी एस नुहाकर निर्मला नुहाकर विशाल नुहाकर भी आपने दी फरमाइश मांड दी, और आप फरमाइश पुगी है आपने ते गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से और भेजी है सैयद मसरूर साइना हसन अक्षा नाजिया आफिया इब्राहिम सदाम अदीब हसन, विरम गांव गुजरात से अजीत भावसागर और प्रमिला भावसागर भी आपने दी फरमाइश मांड दी, और सादुल शहर से राम कुमार रिवाड़ और चंद्रकला रिवाड़ भी आप गए मेल चिखी है अपने ती मंडी ऐसा, और आ मेल ओ संदेश आपने ती पुगिया गांव खारिया जिला सिरसा हरियाणा से प्रताप जनागल इंदिरा मुकेश दिनेश अंशु बलदेव कटारिया बार बार मेल को जिक्र ज्यादा हो ला रही है, और आ कुलदीप सिंह 14 पीएसबी से अपने ती लिखकर भेजी है अंग सागे है राजविंदर कौर संदीप सिंह जसकरण सिंह हरदीप सिंह मनराज विक्रम विरक और रोर करनाल सिंह ज्ञान भूषण शर्मा सोमनाथ कालिया आ भी रल मिल के फरमाइश मांड दी, और जनकपुरी सहारनपुर सिंह जॉन डेक्स्ट्रो रोजी डेक्स्ट्रो और पर्ल डेक्स्ट्रो विलिस डेक्स्ट्रो भी आपने दी फरमाइश मांड दी ऐसा, तो सगला ने एक गीत सुना दिया बनारसी बाबू की आवाज़ गमा लो सुनो सा।

लियो जी, बनारसी बाबू की आवाज़ गवा थाने गी सुना दियो। और अपने की फरमाइश पुगी है जैसलमेर से हूँ विकास जाखड़, तेज प्रताप जाखड़, कमल बावल, अमित शर्मा। आ फरमाइश पुगी है अपने ते, लिखने वाला है सोन बिल कुंडाली आसाम से हूँ। और आ नाम लिखियो आपको हितेंद्र दास, ए अपना नुआ स्रोता है। अगली फरमाइश आपने ती पुगी है गांधी मार्ग न्यू नई दिल्ली मोती नगर शू। और लिखने वाला है अनिल कविता गौरव मानसी अरोड़ा। नाभा जिला पटियाला पंजाब शू। सोमदत्त केरव ज्योति रानी गुरमत कौर मनु भी आपने ती फरमाइश मान दी। और आ फरमाइश पुगी है बिल्लू सूद, सुनीता सूद, आशीष सूद, विश्वजीत मंडी केसरी सिंहपुर शू। हनुमानगढ़ टाउन से अपने तई फरमाइश लिखी है रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान। और गांव नाई वाला जिला हनुमानगढ़ से वेद मिड्डा और अलका मिड्डा भी आपको सिर अड़ा दियो सही कार्यक्रम में। आ फरमाइश पुगी है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका शू शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टू बजाज भी अंक सागे है। और आ फरमाइश पुगी है अपना तई नाम आपको जुको है वो लिखियो को निशा है ना, नंद किशोर घटे जी थे। थारो एड्रेस जुको है वो अगली बार जरूर मांडियो थे। बीड़ शहर महाराष्ट्र से अपना तई हाँ दो बार संदेश भेजो है नंद किशोर।

घटे संगीता घटे साक्षी घटे जयश्री महेत्रे अंजलि करवा बाला साहेब करवा रामनिवास अग्रवाल धनंजय ट्यूल और पीबी कुलथे रल मिल के फरमाइश मांडी है और आ फरमाइश पुगी अपने लिखन वाला है गांव सादे वाला सिरसा हरियाणा से रामेश्वर माहर आ फरमाइश पुगी जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा पूनम गगनेजा विशाल पीरिया दिशानी और निमित आहूजा कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय श्रीमती उषा राय अमित कुमार राय हैप्पी राय दुबीहा निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय रोशनी राय प्रांजल राय अबू धाबी यूएयू से अपने ती फरमाइश मांडी है शेख जियाउर रहमान और मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से शेख अताउर रहमान और शेख हबीबुर रहमान आरल मिल के फरमाइश मांडी है गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा भी फरमाइश मांडी सा फरमाइश पुगी है संबलपुर कांकेर से फग्गूराम यादव ज्योति यादव ओजस्वी यादव और मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर सरिता गवाणकर प्रणीता सिद्धांत गवाणकर लाडला टुक गवाणकर और प्रिंस एकाश गवाणकर आ फरमाइश पुगी है गांव बिरकाली नोहर से राम कुमार सुथार दिलीप कामड़ बेगराज श्या कालू खान नजाकत अली गुट्टे खां छगन सिंह तवर कालू मिस्त्री और अगली फरमाइश पदमा टोकी जनेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह पलवी शाह प्रखर शाह कुशल शाह नीति शाह सुरभि शाह अश्विनी शाह मंगलाबेन शाह राजेंद्र शाह है और अगली फरमाइश अलिका तहसील डबवाली से रूप सिंह लखोत्रा करमजीत लखोत्रा सरबजीत लखोत्रा रानी सोनू रजनी जसपुर उत्तराखंड से अपने तई फरमाइश मांडी है रियासत हुसैन सिद्दकी नजमा बेगम सिद्दकी रियाज रिफाकत मोहम्मद रिहान समरीन परवीन और माहिरा नूर आ फरमाइश अपने ती पूर्ति करी है बाटापारा छत्तीसगढ़ से मोहन जोशी हरविंदर सिंह चावला शिव कुमार शर्मा लोकेश जोशी बेबी वेधी और जोश बेबी हनी इश्का और सागा आप गए नाम लिखे अंकिता जोशी को गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा बिमला गोदारा इंदु पार्वती हिमांशु गोदारा सरवण रिणवा हंसराज भाटिया मनीराम रणजीत राम किरोड़ीवाल आ रल मिल गए फरमाइश मांड दिशा और आ फरमाइश पुगी अपना ती लिखने वाला है फाजिलका पंजाब से खेड़ा परिवार भूषण खेड़ा विशु खेड़ा विशाल खेड़ा लाडी खेड़ा सालनी खेड़ा टिवासी खेड़ा वाणी खेड़ा आरबी खेड़ा जीवन सिंह बुक और सगड़ो परिवार चक 15 पीएस से सरबजीत सिंह जोसन सरबजीत कौर जोसन और गुरमन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आदर्शपाल सिंह जोसन और वैंकूवर कनाडा से रोबिन सिंह जोसन भी अपने ती फरमाइश मांड दी और आ फरमाइश पुगी है अपने ती गांव निमनाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा जतेंद्र कौर गुरप्रीत सिंह लवप्रीत कौर करमजीत कौर नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी गोस्वामी योगेश जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी अगली फरमाइश आपने ती लिखकर भेजी है पायला कला जिला बालोतरा राजस्थान से मोहनलाल प्रजापत माणक उषा बाला देवी प्रजापत और अंक सागे है रेहाना मिर्जा आवाज़ गवा गीत सुनना चाहवा रेहाना मिर्जा की आवाज़ गवा पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया गीतारानी जाजोरिया गगनदीप जाजोरिया आरजू जाजोरिया और गुड्डू अंगसागे है आम भी फरमाइश मांडी है संग्रिया से श्याम मिड्डा और सुमन मिड्डा भी अपने ती फरमाइश मांड दी और आ फरमाइश पुगी है दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा पार्शमणि मरमा पुष्पेंद्र मणि वर्मा नोखेलाल वर्मा और आ फरमाइश पुगी है गंज डूंडवाड़ा से शमशूल कमर राही शाहीन फातिमा अदनान खान फिजान खान अन्नू खान कलीम अंसारी उस्मान अंसारी और मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गोड़ भी आपने ती फरमाइश मांड दी और आप फरमाइश आपने ती पुगी है अगली लिखने वाला है 14 पीएसबी से चक अपना दोबारा कुलदीप मांड दी से है ना कुलदीप सिंह जी दोबारा फरमाइश मांडी थे खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू लक्ष्य मल्होत्रा लाडो कोयल मल्होत्रा और आंका पिताजी है नानक चंद मल्होत्रा शिवाजी कलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का कोयल सिक्का डुगू सिक्का हयात कलोनी अररिया बिहार से फैसल

इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा परवीन। उमरकोट मोहल्ला चौखुटी बुलंदशहर से हूँ। मोहम्मद सईद अबासी, निगत परवीन अबासी, शहनवाज अबासी, सरफराज अबासी, फरदीन अबासी, सुहाना अबासी, अरजान अबासी, अबान अबासी और सगलो परिवार। गांव फ्रांसी जिला हिसार से हूँ। राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी भी आपने दी फरमाइश मान दी। और आप फरमाइश पुगी है बोडसरा नेला छत्तीसगढ़ से हूँ। प्रमोद कुमार शाहू, बीमा वे भी और विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रिया साहू। गांव खोकरावाड़ी श्री गंगानगर से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास बारासा, रोशनी बारासा, सगुन बारासा भी आपने ती फरमाइश मान दी। और चक सात डीबियन से भादेवाड़े से आपने ती फरमाइश मान दिया। टेकचंद चारण, संतोष देवी, सत्यप्रिय चारण, जय सिंह चारण, बिटिया अंगी है योगेश्री, रणजीत सिंह सुथार, गुरुदेव सिंह भगानिया, हरनेक सिंह भगानिया, कृष्ण लाल राठ 63 LNP से। और अगली फरमाइश राजा राम जवर बिश्नोई आपने ती जैसला फलोदी से फरमाइश मान दी ऐसा। और आप फरमाइश पुग्गी है अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा। अंग सागे है भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी जयपाल। जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश हूँ। मनोज नामदेव, मयंक नामदेव, खुशबू नामदेव, ममता नामदेव, शिव नामदेव, संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगवाड़ा चौक गुरैया जलंधर से अपने ती फरमाइश मंडी। और आप फरमाइश पुगे गांव खिंदा सर तहसील खुलायत जिला बीकानेर से काना राम, सुखराम, श्याम सुंदर, तपस्या, धर्मेंद्र चौहान। और सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर से हूँ। रमेश चंद्र चौहान, मोहनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बेबी बॉय हिमाक्स। हाँ रल मिल के फरमाइश मंडी ऐसा। आप फरमाइश पुगी है बठिंडा रोड मंडी डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग भी आपने ती फरमाइश मान दी। और अगली फरमाइश आपनी पुगी है गांव होंडू जिला बालोत्रा से हूँ। उम्मेदाराम, दिनेश कुमार, राजेश कुमार रल मिल गए फरमाइश मांडी है। विजय पाटिल महाराष्ट्र जालना से आपने ती फरमाइश मान दी सा। और नाम लिखे प्रेम धवन, शायद कोई थोड़ा सो जो को संदेश है वो समझ में कम आयो, थोड़ा सो बिरुओ से ही मांडी करो सा ना। लखवाड़ी हेड सो मास्टर भंवर लाल, कृष्णा, विशाल, सौरभ, ममता, राजबाला, नव्या, लक्षिता, मोहम्मद रफीक, संग्रिया मुकना, संग्रिया से मुकना राम, महावीर लोरा भी फरमाइश मांड दी। और आ फरमाइश पुगी है बन्ने बुजुर्ग पलेरा टिकमगढ़ मध्य प्रदेश से। ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष और बाबा कुटी रायगढ़ से। शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष चौहान भी आपने दी फरमाइश मान दी सा। थाने एक गीत सुना दिया सा, लो सुनो सा।

बिल्कुल सा थाने गीत सुनायो और आपने दी फरमाइश पुगी है श्री गंगानगर से बजरंग लाल शर्मा जगमोहन सिंह अरनेजा दिनेश कुमार शर्मा नरेश कुमार शर्मा आप फरमाइश पुगिया गांव खेरका सिरसा से इंद्रजीत कमलजीत मीनाक्षी सागर सरगुन हनी लोट मसीता डब्वाली से दर्शन लोट मूर्ति रानी आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा मीना शर्मा योगेश शर्मा मेंडी शर्मा सौरव शर्मा साइना शर्मा और निवान शर्मा नई आबादी अबोर पंजाब से डिंपल सोनी संतोष सोनी राखी सोनी कोमल सोनी सीधी सोनी और आंगा परिवार का सगला सदस्य ब्लॉट के पंजाब से सतीश मिगलानी सीमा साइना विशाल मिगलानी सुप्रिया अनमोल और धर्मपाल विवान रमेश मिगलानी मलोट पंजाब से राजकुमार इंदौरा बिमला इंदौरा गेरी इंदौरा विकास इंदौरा प्रियंका इंदौरा रमन इंदौरा रितु इंदौरा भविष्य खन्ना मिशेल खन्ना किंसुक खन्ना बेबी दीपांशी इंदौरा आ रल मिल गए फरमाइश मांडिया सा और चक 58 NP राजनगर से सुल्तान राम मलखट सरस्वती देवी मीनाक्षी हरबंश बनवारी लाल गोपी राम नरेंद्र ललित सुखराम और सगलो परिवार थाने चालता चालता आखिरी एक गीत सुना दिया सा लो सुनो सा।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हमारा ग्रामीण दैनिक कार्यक्रम चौपाल। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्स पर, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्स पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। संध्या के 7:45 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए अंदाज फिल्म से ये गीत, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी, आशा भोंसले और साथियों की, गीत हसरत जयपुरी का, संगीत शंकर जयकिशन का। लीजिए सुनिए अंदाज फिल्म का ये गीत।

श्रोता, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में सुनिए आशा भोंसले और मन्नाडे की आवाजों में ये गीत। फिल्म का नाम सीता और गीता, गीत आनंद बख्शी का, संगीत राहुल देव बर्मन का।

श्रोताभी, आपने सीता और गीता फिल्म से आशा मन्नाडे और आनंद बख्शी की आवाज़ों में सुना ये गीत। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया था राहुल देव बर्मन ने। अब सुनते हैं फिल्म यादों की बारात फिल्म से आशा भोसले, किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत, शब्द रचना मजरू की, धुन राहुल देव बर्मन की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर, DRM चैनल 909 किलो हर्ट्स पर, FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से जानकारी और गीत। एक ही फिल्म से जानकारी और गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आज जसवीर सिंह की तरफ से नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम एक ही फिल्म से गीत और जानकारी के अंदर आज हम लेकर आए हैं फिल्म जंगली की चंद फिल्मी गीत और उसकी पटकथा। और दोस्तों, आज इस मनपसंदता कार्यक्रम में हम बातें करते हैं सुनहरी यादों की, फिल्मों की। और आज हम बात करेंगे 1961 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म जंगली की, जिसने दर्शकों के दिल में रोमांस, संगीत और भावनाओं की नई लहर पैदा कर दी। इस फिल्म के निर्देशक थे सुबोध मुखर्जी और मुख्य भूमिकाओं में नजर आए शमी कपूर और सायरा बानो। दोस्तों, ये वही फिल्म है जिसने हिंदी सिनेमा को मशहूर गीत याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे दिया, और साथ ही सायरा बानो की फिल्मी दुनिया में एक बड़ी पहचान दिलाई। श्रोताओं, कहानी शुरू होती है कि एक बहुत अमीर परिवार से, जहां एक माहौल सख्त नियमों और अनुशासन से भरा हुआ है। परिवार की मुखिया है एक कठोर स्वभाव वाली माँ, जो मानती है कि हंसना, खुलकर जीना और भावनाएं दिखाना कमजोरी की निशानी है। उनका बेटा शेखर, चंद्रशेखर यानी शमी कपूर,

बचपन से ही इन नींवों के बीच खड़ा होता है। वह पढ़ा लिखा और सभ्य और आज्ञाकारी होता है, लेकिन उनके जीवन में खुशी और आजादी की काफी कमी दिखाई देती है।

श्वेता शेखर की माँ यानी ललिता पवार चाहती है कि उसका विवाह एक अमीर परिवार की लड़की से हो ताकि परिवार की प्रतिष्ठा बनी रहे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। शेखर छुट्टियां बिताने कश्मीर जाता है। बर्फ से ढकी वादियां, खूबसूरत नज़ारे और खुला आसमान उसके अंदर छिपे इंसान को धीरे धीरे बदलने लगते हैं। यहीं उसकी मुलाकात होती है राजकुमारी से, यानी सायरा बानो से, जिसका किरदार निभाया सायरा बानो ने। राजकुमारी एक चुलबुली, हंसमुख और आज़ाद ख्यालों वाली लड़की है। उसकी हंसी और मासूमियत शेखर को दिल को छू जाती है। पहली बार शेखर को एहसास होता है कि जिंदगी सिर्फ नियमों और जिम्मेदारियों का नाम नहीं, बल्कि खुशी और प्यार भी जरूरी है।

0: कहे कोई परवाना कहे जलने को बेपरार, चाहत का मुझ पे असर मैं दुनिया से बेखबर, चलता हूँ अपनी डगर मंजिल है मेरी प्यार।
1: अय्या सुकु सुकु
0: अय्या करूँ मैं क्या सुकु सुकु, खो गया दिल मेरा सुकु सुकु।

0: हाथों में जो हाथ है जीवन भर का साथ है, सीधी सच्ची बात है, कहानी ना समझो।
1: अय्या सुकू सुकू
0: अय्या करूँ मैं क्या, सुकू सुकू खो गया दिल मेरा, सुकू सुकू

श्रोताओ, धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। कश्मीर की वादियों में फिल्माए गए गीत और रोमांटिक दृश्य दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। और फिर आता है वह ऐतिहासिक पल जब शेखर अपने दिल की खुशी को लेकर खुलकर जाहिर करता है, बर्फीली पहाड़ियों में याहू चलाता है। यही वो क्षण था जिसने शमी कपूर को हिंदी सिनेमा का सबसे अनोखा और ऊर्जा से भरपूर हीरो बना दिया।

0: रहता रहे। हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे।
1: श्रोताओ, लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब शेखर की माँ यानी ललिता पवार को इस रिश्ते के बारे में पता चलता है। उन्हें यह रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि राजकुमारी यानी सायरा बानो अमीर परिवार से नहीं होती। माँ अपने बेटे को समझाने की कोशिश करती है कि परिवार की इज्जत सबसे बड़ी होती है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर शम्मी कपूर पहली बार अपने दिल की आवाज सुनता है। फिल्म में भावनात्मक मोड़ तब आता है जब शेखर अपनी माँ के सामने खड़ा होकर अपने प्यार के लिए लड़ने का फैसला करता है। वह बताता है कि इंसान की खुशी पैसे और रुतबे से नहीं बल्कि प्यार और अपनापन से मिलती है। माँ धीरे धीरे अपने बेटे के बदले हुए स्वभाव को समझने लगती है। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपने बेटे को हमेशा कठोरता में रखा और उसकी खुशियों को कभी महत्व नहीं दिया।

श्रोताओ, जब माँ का कठोर रवैया उसको अपने मन में एहसास कराता है कि कभी उसने खुशियों को समझा ही नहीं और कभी उसने खुशियों को महत्व नहीं दिया, तब उसको याद आता है शेखर की बचपन के वो दिन।

श्रोतो, अंत में माँ यानी ललिता पवार को अपने बेटे की खुशी के आगे झुक जाती है और शेखर यानी शम्मी कपूर और राजकुमारी यानी सायरा बानो का मिलन हो जाता है। फिल्म का अंत बेहद खुशहाल माहौल में होता है जहां परिवार में प्यार और मुस्कान लौट आती है। श्रोताओ, जंगली सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी बल्कि ये जिंदगी को खुलकर जीने का संदेश भी देती है। फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन ने तैयार किया था और इसके गीत आज भी लोगों की जुबान पर है। एहसान तेरा होगा मुझ पर और दिन सारा गुजारा तेरे अंगना और याहू जैसे गीतों ने इस फिल्म को अमर बना दिया।

श्रोताओं, इस फिल्म के निर्देशक और निर्माता सुबोध मुखर्जी, इस फिल्म के मुख्य कलाकार शम्मी कपूर, सायरा बानू, ललिता पवार, संगीतकार शंकर जयकिशन, और इस फिल्म को भारत में रिलीज करने की जो तारीख तय की गई थी वो थी 31 अक्टूबर 1961। श्रोताओं, ये फिल्म हमें सिखाती है कि जिंदगी को किस तरह से जीना चाहिए। खैर, अब हम ये गीत आपको सुनवा रहे हैं, गीत सुनते रहिए है।

श्रोताओं, आज का कार्यक्रम एक ही फिल्म से जानकारी और गीत समाप्त करने की आज्ञा दीजिए जसवीर सिंह को। नमस्कार।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से जानकारी और गीत, और आज की फिल्म थी जंगली। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्स पर, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्स पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन।

0: नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में शाम के 8:30 बज चुके हैं और हम ठीक अपने वादे के अनुसार एक बार फिर हाजिर हैं आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्कैन में। तो श्रोताओं, आज के अंक में तमाम खेल खबरों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती, और इन खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी खेल विशेषज्ञ उत्तरा गणेशन। उत्तरा जी, आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: तो आज का दिन बेहद अच्छा है भारत के लिए, और अच्छा ही रहता है अगर स्पोर्ट्स खेल जगत में हम अगर देखें तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे और सबसे पहले नज़र डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। तो आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी। कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 विकेट से हराया। रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव अपने अपने व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंचे। भारत की महिला फुटबॉल टीम ने AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, और आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में मैराथन का आयोजन किया। तो शुरुआत करते हैं हम आईपीएल क्रिकेट से, जो कि दिल्ली में ही चल रहा है, और दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अभी मुकाबला जारी है। अगर ताज़ा हालात देखें तो 13 ओवर चल रहा है, 5 विकेट गिर चुके हैं, दिल्ली 91 रन बनाई हुई अभी तक, और अंक तालिका में देखें तो दिल्ली 7वें और कोलकाता 8वें पायदान पर है। दोनों ही टीम के पास हार की कोई गुंजाइश नहीं है।
1: मुझे लगता है कि जीतना भी जो है वो प्लेइंग फॉर प्राइड वाला मामला है एक तरह से, क्योंकि प्लेऑफ मैथमेटिकली आप किसी टीम को बाहर नहीं बोल सकते हैं, पर प्लेऑफ की दौड़ से एक तरह से बाहर ही हैं दोनों ही टीमें। पर डीसी के लिए शायद थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि घर पे खेल रही हैं और चाहेंगी कि घर पे कम से कम एक जीत दर्ज करें, पर जिस तरह से इस साल का पूरा IPL गया है दोनों ही टीमों के लिए, मुझे लगता है कि जीतना जो है, जैसा मैंने कहा, वो प्लेइंग फॉर प्राइड वाली चीज़ है और उसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ एट स्टेक नहीं।

0: हाँ, हमारे चीफ कोच साहब जरूर मैच देख रहे हैं, तो उनको इम्प्रेस करने की जरूर एक कोशिश हो सकती है कुछ भारतीय खिलाड़ियों की आने
1: जी
0: वाले कुछ समय में भारत की टीम में, अपने अलग अलग फॉर्मेट्स में, स्पेशली T20 में
1: जी
0: अपनी दावेदारी पेश करने का।
1: बिल्कुल। और अगर आज कोई भी टीम हारती है तो फिर वो नॉकआउट में नहीं जा पाएगी। और कल के मुकाबले में देखिए तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 विकेट से हराया। पूरे मैच का हाल जानने के लिए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ की शुरुआत शानदार रही। बारिश से प्रभावित मुकाबला डकवर्थ लुईस के चलते 19-19 ओवर का कर दिया गया। एलएसजी ने 3 विकेट गंवाकर स्कोरबोर्ड पर 209 रन लगाए। मिचेल मार्श ने 56 गेंदों में 111 रन की शानदार पारी खेली। डीएलएस के तहत मिले 213 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी की शुरुआत अच्छी नहीं रही। जैकब बैथल और विराट कोहली दूसरे ही ओवर में आउट हो गए। बीच के ओवरों में देवदत्त पडिकल और कप्तान रजत पाटीदार ने मोर्चा संभाला। पडिकल ने 34, वहीं रजत ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 31 गेंदों में 61 रन की दमदार पारी खेली। अंतिम ओवरों में टिम डेविड ने 17 गेंदों में 40 जबकि कृणाल पांड्या ने 16 गेंदों में 28 रन बनाए पर टीम को जीत नहीं दिला सके। गेंदबाजी में एलएसजी की ओर से प्रिंस यादव ने 3 विकेट चटकाए। मिचेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
1: 9 विकेट कह दिया था हमने, माफ कीजिएगा, 9 रन से हराया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को लखनऊ सुपर जायंट्स ने। तो कल का मैच बेहद रोमांचक रहा भले ही बारिश ने खलल डाली।
0: उस खलल की वजह से मुझे लगता है एलएसजी को फायदा भी हुआ थोड़ा बहुत, क्योंकि मैच जितना देर से जाता है उतना जो स्टार्ट स्टॉप मैचेस होते हैं वो सबसे ज्यादा किसी भी खिलाड़ी के लिए, पब्लिक के लिए तो होता ही है, दर्शकों के लिए, पर खिलाड़ी के लिए भी बहुत इरिटेटिंग होता है कि आप खेलने उतर हैं, थोड़ा सा वार्म अप होते हैं, तैयार होते हैं और आधा 15-20 मिनट आप खेलते हैं, फिर बारिश आ जाती है और वो बारिश भी ऐसी होती है जो सिर्फ 15-20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए मैच रोकती है। तो आप 8 बजे खेलते हैं, फिर आपका मैच रुक जाता है, फिर 9 बजे शुरू होता है, फिर आप कुछ ओवर खेलते हैं, फिर 10 बजे शुरू होता है, मैच रुक जाता है, तो किसी भी टीम के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। और जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है जो टीम चेस कर रही है उसके लिए भी चीज़ें मुश्किल होती चली जाती हैं, बारिश की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से, कंडीशंस की वजह से, टाइम की वजह से, हर चीज़ की वजह से। उसके बावजूद जिस तरह की शुरुआत आरसीबी को मिली थी, बहुत तेज़ी से उनके पहले 2-3 विकेट निकल गए थे, तो उसके बाद आपने 203 के आसपास, 203 का टोटल खड़ा करना, वो भी मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात थी आरसीबी के लिए। और जो डीएलएस की बात अक्सर होती है कि एक फॉर्मूला ज़रूर है लेकिन आज तक किसी को समझ आया नहीं है, 209 एलएसजी ने बनाए थे लेकिन क्योंकि आधा मैच उन्होंने 20 ओवर के हिसाब से खेला था और बाकी आधा जो है वो 19 ओवर के हिसाब से हुआ था, तो जो फाइनल टारगेट था वो उनके टोटल से भी 4 रन एक्स्ट्रा था, 213 का मिला था उनको। हाँ। तो ये सारी चीज़ें आपको अफेक्ट करती हैं। फिर भी अगर, जैसे मैंने कहा, अगर ऊपर के आपके 2-3 जो बल्लेबाज हैं वो अगर 5-5, 10-10 रन भी और बना लेते या थोड़ा सा बेटर कर जाते, जिसमें सबसे बड़ा विकेट जो था वो शायद विराट कोहली का ही था क्योंकि अगर वो रहते तो इतना लंबा नहीं जाता, वो पहले मैच ख़त्म भी कर सकते हैं, उनमें इतनी है ताकत, इतनी क्षमता है उनकी। तो बहुत ही दिलचस्प मैच था लेकिन दोनों ही टीमों के लिए, हालांकि एलएसजी बहुत खुश होगी कि बिल्कुल लास्ट चल रही थी तो 2 पॉइंट जो मिले वो बहुत ज़रूरी थे उनके लिए, और वो भी घर पे खेलते हुए, कि एकाना पे उनका ट्रैक रिकॉर्ड इस साल बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है, पर टीमों के लिए फ्रस्ट्रेटिंग ज़रूर होता है जब ऐसे कंडीशंस में आपको परफॉर्म करना पड़ता
1: बिल्कुल
0: है।
1: पहली बार लखनऊ ने अपने घरेलू सरजमी पर जीत भी हासिल की है, तो अब पूरा का पूरा आईपीएल ही इस बार काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है।
0: जी,
1: अब बात करते हैं तीरंदाजी विश्व कप की। चीन के शंघाई में चल रहा है दूसरे चरण का मैच है। रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव ने भारत के लिए शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पदक की उम्मीदें बरकरार रखी है। सिमरनजीत कौर महिला रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गई है, वहीं साहिल जाधव ने पुरुषों के कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सिमरनजीत ने चीनी ताइपे के फोंग यूझू को 6-0 से हराया, जबकि साहिल ने रोमांचक शूट ऑफ में ऑस्ट्रिया के निको विनर को हराकर कंपाउंड स्पर्धा के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। तो अगर हम देखें कि पूरा का पूरा ये जो हमारा पारंपरिक रूप से भारत की ताकत मानी जाती है तीरंदाजी, और इसमें जब पुरुष महिला और मिश्रित यानी कि मिक्स्ड टीम स्पर्धाओं में भारत पोडियम पर जगह बनाने में नाकाम रहा था, तो लेकिन जब टीम

0: स्पर्धाओं में मिले इस हार के बाद जिस तरीके से व्यक्तिगत स्पर्धा में हमारे इन खिलाड़ियों ने भारत की उम्मीदें उम्मीदों को जिंदा रखा है,
1: उससे बड़ी बात ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि जो नाम हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं, जो आपके एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं, उनकी जगह जो यंगस्टर्स हैं, जो पिछले कुछ समय में ही जिन्होंने भारत के लिए खेलना शुरू किया है, जो यंगस्टर्स हैं, उन्होंने परफॉर्म किया है। और ये मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब चाहे वो तरुणदीप राय हों या धीरज भी यंग ही है लेकिन एक्सपीरियंस उनको हो चुका है, या दीपिका कुमारी हों, ये बहुत सालों से भारत के लिए खेल रहे हैं और इनके इनके टैलेंट पे कोई सवाल कोई नहीं उठा नहीं सकता, कोई शक नहीं है। पर हमें अब आगे देखना चाहिए, हम पीछे देखते हुए नहीं चल सकते हैं। और यहाँ पे भी जो सिमरनजीत है वो सिर्फ 3 पॉइंट से क्वालिफाइंग में दीपिका से पीछे रह गई थी टीम में आने से, तो इंडिविजुअल में उन्होंने प्रूव किया है कि वो भारत का भविष्य है आर्चरी के हिसाब से। और वो मुझे लगता है क्योंकि इस साल आगे अभी हमारे पास एशियन गेम्स भी है जो बहुत जो इससे कहीं ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, और जो वर्ल्ड कप फाइनल्स होते हैं या वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स होते हैं वहाँ पर इतना आसान नहीं होगा। बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है कि जस्ट कि शूटिंग या वर्ल्ड कप में ये शूटिंग या आर्चरी में साल में 4 वर्ल्ड कप होते हैं, तो हर फेज में जो बाकी के कंट्रीज भी हैं, हमारे भी जो फेडरेशन है वो आपको मिक्स एंड मैच करके ही खिलाती है, ताकि जो बड़े टूर्नामेंट है वहां के लिए आपको अपने बेस्ट खिलाड़ी मिल सके। और वो टेस्ट मुझे लगता है एशियन गेम्स में ही होगा। यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है उससे चाहे वो साहिल हो या सिमरनजीत हो, उनको कॉन्फिडेंस जरूर मिलेगा, पर ये पहली ही सीढ़ी है अभी आगे बढ़ने के लिए, अभी आगे बहुत लंबा रास्ता तय करना बाकी है इन लोगों के लिए।
0: बिल्कुल, अभी आपने जिस तरह से नाम लिया धीरज का और या फिर बाकी दीपिका का, तो इन खिलाड़ियों से हमें काफ़ी उम्मीदें थी और ये आगे नहीं बढ़ पाई, और उसके बाद हमें ये नए यंगस्टर्स देखने को मिल रहे हैं। तो कहते हैं ना कि खेल अनिश्चितताओं से भरा हुआ होता है, और ये हमें देखने को भी मिला है, भले उनसे उम्मीदें नहीं थी लेकिन ये हमारे भविष्य बनकर उभरे हैं। तो बता दें कि सिमरनजीत के सामने अब सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की विश्व नंबर 1 के खिलाड़ी कोंग चेओंग की चुनौती होगी, वहीं साहिल सेमीफाइनल में फ्रांस के निकोलस गिरार्ड का सामना करेंगे, और दोनों ही खिलाड़ियों के लिए चुनौती काफी भारी रहेगी।
1: आसान बिल्कुल नहीं होगा, खासकर कि सिमरनजीत के लिए, क्योंकि कोरिया का एक तरह से राष्ट्रीय खेल है आर्चरी, वहां पे प्राइमरी स्कूल से आप शुरू कर देते हैं और बहुत सीरियसली लिया जाता है। और टीम इवेंट में कोरिया भारत से जिस तरह से हारी है महिलाओं से, कहीं ना कहीं उनको भी ये प्रूव करना होगा कि वो जो हार थी वो एक फ्लूक हार थी, क्योंकि वो बहुत सीरियसली लेते हैं आर्चरी को, जैसा मैंने कहा, तो आसान बिल्कुल नहीं होगा। और कंपाउंड में भारत की जो भारत के तीरंदाज हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, पर फ्रांस हमें भूलना चाहिए कि कंपाउंड में अच्छी बहुत स्ट्रांग टीम है, फ्रांस को लाइटली लेना मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत होगा वहां पे।
0: बिल्कुल, दोनों ही के सामने चुनौतियां भले ही मुश्किल है लेकिन दोनों ही विश्व कप में अपना पहला पदक जीतने से सिर्फ एक जीत ही दूर हैं। और हम तीरंदाज की बात कर रहे हैं तो निशानेबाजी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के रुद्राक्ष पाटिल ने हरियाणा के रोहित कन्यान की कड़ी चुनौती को पार करते हुए भोपाल में आयोजित कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। भले ही ये हमारा घरेलू मैच हो, घरेलू टूर्नामेंट हो, फिर भी हमारे खिलाड़ी हैं लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे अपने पारंपरिक खेलों में।
1: ये घरेलू जरूर है लेकिन सुरेंद्र सिंह जो कंपटीशन है वो बहुत ही प्रेस्टिजियस माना जाता है। कुछ ऐसे डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं जो जहां पे परफॉर्म करना और जहां पे अच्छा प्रदर्शन करना एक प्रेस्टीज की बात मानी जाती है, क्योंकि वहां कंपटीशन बहुत मजबूत होता है, बहुत और नए खिलाड़ी बहुत निकल के आते हैं, जिसमें सुरेंद्र सिंह मेमोरियल है और मावलांकर टूर्नामेंट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है अपने आप को प्रूव करने के लिए। और रुद्रांश की जहां तक बात है, कहीं ना कहीं उनके अंदर पेरिस के लिए क्वालिफाई ना कर पाने की जो टीस है, जो उनको नहीं जगह मिल पाई थी, वो बहुत उनको अभी भी अंदर से चुभ रही होगी, तो वो चीज उसकी, इसीलिए अगर पिछले 2 साल में आप देखें तो उन्होंने लगातार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उम्मीद यही है कि इसी को आगे लेके चलेंगे और एशियन गेम्स में हमें उनसे और पदक की उम्मीद रखेंगे।
0: बिल्कुल। उधर भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। चीन के सूझों में आज भारतीय टीम ने ग्रुप बी के अपने आखिरी मैच में लेबनान पर 4-0 से शानदार जीत दर्ज

0: की और भारत का क्वार्टर फाइनल में पहुंचना तब पक्का हो गया जब फिलीपींस और चीनी ताइपे अपने आखिरी ग्रुप सी मैच को 12 या उससे ज्यादा गोल के अंतर से जीतने में नाकाम रहे। तो बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है भारतीय महिला टीम ने पहली बार इस टूर्नामेंट के, इस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाकर।
1: बिल्कुल, मैं लगातार ये कहती रही हूँ कि अगर हम फुटबॉल की बात करें तो भले ही जो पुरुष फुटबॉल है वो ज़्यादा पॉपुलर है और ज़्यादा उसके बारे में लोग जानते हैं, उसको फॉलो करते हैं, चाहे वो भारत में हो या विश्व लेवल पे भी हो, पर अगर हम इंडियन फुटबॉल की बात करें तो हमारा जो परफॉर्मेंस के बेसिस पे देखा जाए तो हमें अपनी महिला टीम से ज़्यादा उम्मीदें रखनी चाहिए और उनको और ज़्यादा एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन है, हर चाहे वो एज ग्रुप में हो या सीनियर लेवल पे भी हो, जिस तरह से हमारी महिला फुटबॉल टीम ने प्रदर्शन किया है, चाहे वो रिजल्ट उनके फेवर में उतना नहीं भी आया हो, पर जो उनका प्रदर्शन है मजबूत टीमों के साथ, वो कहीं ना कहीं आपको ये विश्वास दिलाता है कि अगर उनको उतनी ही सुविधाएं मिले, उतना ही एक्सपोजर मिले और उतनी ही उनको एनकरेजमेंट मिले, तो वो मैं आज भी अब भी ये मानती हूँ कि महिला टीम जो है वो पुरुषों से पहले वर्ल्ड कप में अपनी जगह बना पाएगी। हमारे देश में उतना नहीं है, पर जो खिलाड़ियों का है, अगर आपको याद हो तो जो सीनियर एशिया कप भी हुआ था कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले, उसमें मलीशा कल्याण का एक गोल था जो दुनिया भर में वायरल हुआ, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत से लोगों को उसके बारे में नहीं पता चला। अगर उस ऐसी चीज़ें और ज़्यादा पॉपुलराइज की जाएंगी तो मुझे लगता है महिला टीम को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता।
0: बिल्कुल, और अगर इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच जाती है भारतीय टीम तो 2026 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में भी भारत का स्थान पक्का हो जाएगा। और अब बहुत ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, तो हम आखिरी खबर की ओर बढ़ते हैं और बता देना चाहेंगे कि आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के एक हिस्से के रूप में आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया। और इस अवसर पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि भविष्य में भी आकाशवाणी की आवाज गूंजती रहेंगी, बिल्कुल गूंजती रहेंगी, और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ अपना ये जो सफर है वो जारी रहेगा। तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, कल इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, IUML, VCK और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की, राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
3: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
2: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
3: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही

0: पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शोभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहाँ राज्यपाल आर एन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सांविधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहां तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी।
1: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस आईयूएमएल वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
3: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल गवेत्री कड़गम टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकीय रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। TMR जैसे संस्थानों का कार्य

0: केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है, आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट एक महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
3: एक साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट था, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी, कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू LPG की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
4: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को LPG सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल LPG की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिडाद टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिडाद टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले 5 वर्षों में यह लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
5: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अड़िग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई

दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू के चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें

0: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की तेजी देखी गई। सेंसेक्स 77,328 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,176 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 24 पैसे कमजोर होकर ₹94.48 के स्तर पर बंद हुआ।
1: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरन ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू जू को और साहिल ने शूट ऑफ में ऑस्ट्रिया के निको विनर को हराया। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उधर दिल्ली में IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, VCK, IUML और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोताओ, अभी आप कार्यक्रम सुगम संगीत सुन रहे थे। मीडियम वेव 326.79 अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर, DRM चैनल 909 किलो हर्ट्स पर, FM 100.1 MHz पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। अब आप थोड़ी ही देर में हमारा पंजाबी साप्ताहिक कार्यक्रम मिट्टी की खुशबू सुनेंगी।

जी हाँ दोस्तों, श्रीमान दी आवाज़ च रब दा रेडियो दा गीत सुनिया दोस्तों। हुण असी वट्सअप ते मैसेज थोड़े सांझे कर देने जी दोस्तों नाल। ये पहला मैसेज पहुँचे जी साढ़े कोल पदमा टागिस ने भानकर मध्य प्रदेश तो, सुदर्शन शाह, पलवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभी, अश्विन ते मंगला बैन शाह ते राजेंद्र शाह ते वड़िंगखेड़ा पंजाब तो मिंटू टोमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। ते आहा मैसेज पहुँचे जी साढ़े कोल पिंड पिपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ तो, दीपेश वर्मा, पुन वर्मा, ज्योति ते रिवांश वर्मा। ते आ खत पहुँचे जी, माफ़ करना जी, वट्सअप मैसेज पहुँच गया जी साढ़े कोल। ते कहिंदे जी भी कोई बेनती है जी, सत्कार योग पेशकर्ता नूं निघा स्वागत। बिल्कुल थोड़ा निघा स्वागत स्वागत है जी थोड़ा भी इस प्रोग्राम के अंदर। कहिंदे असीं पंजाबी गीतां ते गल्लां बातां दे इस प्रोग्राम की बेसब्री नाल उड़ीक करते हैं। असीं सारे परिवार इकट्ठे होकर इहदा आनंद माणदे हां ते पंजाबी कविता बहुत वधिया ढंग नाल सुनाई जांदी है। शुक्रिया दोस्तों। ये लिखण वाले जी बहलोल नगर तो नरेंद्र झो।

जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप मैसेज थोड़े बहुत पहुँच रहे हैं जी, ते प्यार थोड़ा बेशुमार मिल रहा है सानू। ते आहा व्हाट्सएप मैसेज पहुँचे मिट्टी की खुशबू प्रोग्राम पेश करन दा। जसवीर सिंह जी नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, ते प्रोग्राम बहुत वधिया चल रहा जी। पिंड होड़ू जिला बालोत्रा तो उम्मीदा राम दिनेश कुमार राजेश कुमार लिख के भेज दे जी। शुक्रिया जी। ए नमस्ते जी, लिख के प्रोग्राम मिट्टी की खुशबू ते कोई भी सोंग सुना दो, लिख के भेजे जी। राणी झांब बिट्टू झांब राणी बाजार बीकानेर राजस्थान तो। ते कहते जी एनी सोंग पंजाबी सोंग दे नाल तुसी साडा नाम शामिल कर लो जी। बिल्कुल शामिल हो गया जी। तो प्रोग्राम च गीत असी सुनाता थी, असाम तो लिख के भेजे जी हितेंद्र दास ने। ते आहा व्हाट्सएप मैसेज पहुँचे जी गोवर्धन बिहारी कलोनी शहादरा दिल्ली तो। तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चेतने मस्कीन चंडीगढ़ तो, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना दा, ते दतरंगी भाटा भारा छत्तीसगढ़ तो, हरी हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, ते नोखे लाल वर्मा दा। आहा मैसेज पहुंचे जी मिट्टी दी खुशबू पेश कर रहे आदरणी जसवीर सिंह जी, साडा प्यार भरी सत श्री अकाल नमस्कार। बिल्कुल सत श्री अकाल नमस्कार, कहिंदा हार्दिक अभिनंदन

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हमारा पंजाबी साप्ताहिक कार्यक्रम मिट्टी दी खुशबू। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर, DRM चैनल 909 किलोहर्ट्स पर, FM 100.1 MHz पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है और रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओ, कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए जब जब फूल खिले फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और नंदा की आवाज़ हुई।

श्रोता, फिल्म संगीत कार्यक्रम की अगली पेशकश मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म का नाम उपहार, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

की सेवा में हाजिर है जसवीर सिंह। श्रोतो, कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म उपासना से, शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की और धुन कल्याण जी आनंद जी की।

श्रोता, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। आपने ट्यून किया हुआ है मीडियम वेव पर 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। आज इस कार्यक्रम को लेकर

श्रोताओं, मुकेश की आवाज़ में सुनिए सफ़र फिल्म का ये गीत। गीत इंदिवर का और सुरों से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने।

श्रोताओ, अभी आपने सफ़र फिल्म से मुकेश की आवाज़ में सुना ये गीत। गीत इंदेवरकर था और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। आइए अब सुने दोस्तों, मेरा साया फिल्म का ये गीत, आवाज़ लता मंगेशकर की।

श्रोताओं, अब सुनिए हमसाया फिल्म का ये गीत, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, शब्द रचना शिवान रजवी की और धुन ओपी नैयर की।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी की कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आप थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद है। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएम के महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जाँच करने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जाँच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव

0: The fifth anniversary of the reconstruction of Somnath Temple. The Prime Minister Narendra Modi will participate in the Somnath Amrit Parv on the 11th of this month at Prabhas Patan in Somnath. Speaking to media, Gujarat State Cabinet Minister Jitubhai Vaghani said that various events will be organized at Somnath as part of the Somnath Amrit Parv, showcasing India's rich cultural and heritage traditions. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलो हर्ट्स पर, एफएम 100.1 मेगा हर्ट्स पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। अब हमारी आज की रात्रिकालीन सभा यहीं संपन्न होती है। हमारी प्रातःकालीन सभा प्रातः 5:50 पर आरंभ होगी। तब तक हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।